0: be done, eh?
1: Yeah.
0: I'm thinking about a couple of weeks' time. If I don't do the mahi, I'm not prepped.
2: Savia will arrive in South Africa 10 days before the first test match. And in football, South Island United have parted ways with coach Rob Sherman by mutual consent.
3: Sports News.
4: Brought to you by Sona Sensar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
5: वेदर के हाल चाल 15 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा. विंडी थोड़ी आपको फील होगी. 4 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है और आज का सनसेट होगा 5:39 PM पे. ओवरऑल 10% चांस दिखा रहा है बारिश के.

क्या रहा, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, बुलाब का स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में। वेल, मेरा नाम केतन है और मैं अभी से लेके 3 बजे तक हूँ यहाँ पे। सो यस, अगर आपने ट्यून इन कर लिया है तो रहे वही, ट्यून इन करते रहिए। आई मीन जस्ट स्टे देयर। एंड यार, कभी कभी होता है यार, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सचमुच हमारी हिंदी के भी बैंड बज जाती है, हमारी अंग्रेजी के भी बैंड बज जाती है। आप भी उस सिचुएशन में फंसते हो कहीं, फिर उस चीज को मैनेज कैसे करते हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं 555 9। मैं एक चीज मैंने सीखी है दैट कहीं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में उतने फ्लुएंट नहीं है बट स्टिल यू फील लाइक यू नो यू वांट टू स्पीक एंड अदर पर्सन माइट गोना जज इट। सो व्हाट यू डू इज आप उसी इंग्लिश को, टूटी फूटी इंग्लिश को बरकरार रखते हैं, इवन दो हमें कुछ प्रोनंसिएशन प्रॉपर नहीं हो पाते फिर भी हम उसे कंटिन्यू करते हैं। और फिर ऑब्वियसली यू नो सम पीपल डू यू नो जज अस बेस्ड ऑन हमने जो एक दो शब्द जो एक उल्टा फुल्टा बोला है। सो अभी एक चीज मैंने सीखी है दैट यार, ये तो आपको पता ही है दैट इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, राइट? बट मैंने एक चीज ये सीखी है दैट कभी अगर आप फंबल होते हो, सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट होल्ड अप, टेक अ ब्रेथ एंड देन रीस्टार्ट अगेन वहां से। मैंने ये चीज नोटिस करी है, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की जो कम्युनिकेशन होती है वहां पे ऐसा ही होता है दैट यू नो वो भी फंबल करते हैं बोलते बोलते और फिर वो उसको ना उस तरीके से कन्वर्ट कर देते दैट इट साउंड्स लाइक वेरी फनी। ऑफ कोर्स हम उन्हें जज नहीं करते बिकॉज उनकी पहली लैंग्वेज है, ये चीज हम करते ही हैं। हाँ भाई, इसका हो गया हो तो मैं बोलता हूँ। सो यस, माय थिंग वाज कि ये चीज होती है, तो अगर कभी आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो यू जस्ट ट्राई टू होल्ड अप, आप थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा यू नो जस्ट टेक अ ब्रेक, मे बी 1 or 2 seconds एंड देन यू रीस्टार्ट। स्लोली स्लोली कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा और सामने वाला भी यू नो इट विल बी वेरी इंप्रेसिव। ऑनेस्टली ये ट्राई करके देखियो। बट ये सभी जो गाना है वो मैं चलाने वाला हूँ तोड़ तड़ैया नीरज श्रीधर और नीति मोहन की आवाज में। ये गाना सुनिए, फिर मैं लेके आऊंगा मस्त वाला एकदम पार्टी वाला सॉन्ग। लेट्स सी कौन सा लिस्ट में आता है।

0: Ooh, what a song, yeah. What a song. Oh, my darling. Sonuniga Malisha Chinoy ki awaaz mein aapne ye suna hai. Amazing. Amazing. Amazing gaana hai. Amazing gaana hai. वैसे कौन सी फिल्म का है? Any guesses? बताइए मुझे आप 5599 पे. वैसे कल एक चीज बतानी थी मुझे आपको जो मैं बता नहीं पाया, ऑफकोर्स वो थी ओवर द वीकेंड मैंने एक मूवी देखी है जो एक्चुअली रिलीज हुई है प्राइम वीडियो में, अप्रैल में रिलीज हुई थी. और मैं इसलिए भी थोड़ा पॉज करके बता रहा हूँ बिकॉज एक वो फिल्म पता है काफी रिवील कर रही है अबाउट एरिया 51. Well, I don't know if you know about Area 51 or not, but I'm pretty sure आपको पता होगा. So basically, Area 51 is the place जो काफी, you know, एक छुपा हुआ एरिया है जो USA खुद उनके लोगों से भी छुपाते हैं. In fact, आपको Google Maps में भी पता नहीं पड़ेगा कि exactly है क्या. कहने को तो ये obviously military base है जो जहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे जो भी practices होती हैं जैसे कि एटॉमिक यू नो बॉम्ब ट्रायल करना हो या फिर गन्स का करना हो, ऐसा कुछ करना है, ऐसा उन्होंने कहा है. बड़ी जो फिल्म मैं बात कर रहा हूँ उसमें इस बंदे ने रिवील किया है, ही जस्ट वेंट आउट बिकॉज उसकी पोस्टिंग थी एरिया 51 में, और एरिया 51 से जॉब छोड़ने के बाद उसने हर एक चीज़ बताई है अबाउट जो भी यू नो रूमर्स होते हैं या फिर जो भी आपको लगता है कि एरिया 51 बेसिकली काफ़ी पॉपुलर बिकॉज ऑफ एलियन, यूएसए ने एलियंस रखे हुए हैं वहाँ पे, ऐसा कहा गया है. तो इस मूवी में बेसिकली यही बताया गया है कि यूएसए ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करीबन 9 डिफरेंट यूएफओज पकड़े हुए हैं और वो कैप्चर किए हुए हैं वहाँ पे. ऑफ कोर्स एलियंस तो अभी तक मैं देख नहीं पाया, जितना मैंने पूरा ख़त्म नहीं किया है, मैंने आई थिंक 10-20% और बची हुई, तो अगर उसमें दिख जाए तो पता नहीं, बट दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग कि वहाँ पे और अलग अलग सारे अलग अलग शेप्स में. इनफैक्ट उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए वहाँ पे रखा हुआ, यानी कि क्या यूज़ कर सकते हैं तब जाके, यू नो मैनी पीपल ऑल्सो से कि ये बात सही भी है बिकॉज USA एंड रशिया आज के टाइम पे बहुत आगे क्यों है, इनफैक्ट चाइना भी इतना आगे क्यों है, बिकॉज उनके पास सीक्रेटिवली UFOs जो हैं वो कैप्चर्ड हो चुके हैं और उस UFOs के थ्रू वो रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए हमारे मतलब यू नो उनके खुद के फ़ायदे के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो सचमुच आपके लिए एकदम सरप्राइजिंग होगा कि यार ये क्या था. सो यस, दिस इज ट्रू. अगर और भी जानना है मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ, अभी के लिए एंजॉय करिए. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.
2: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
3: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
4: Join our tribe!
3: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
4: join our tribe!
5: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday, 22nd August, 7 p.m. Vedic Center, Papatoy. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge. Providing free heart surgeries. Powered by Events Oakland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoy. Or Shiv Prasad, Kelston.
2: Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
3: Lunchbox with Ketan.
6: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
3: Office shout out.
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. और ये रही मेरा जो सेगमेंट अभी का है वो है लंच टाइम, सॉरी ऑफिस शाउट आउट. सो बेसिकली आप मुझे मैसेज करिए अभी हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे

0: एक गाना चला था ओ माई डार्लिंग जो सोनू निगम और आयशा शिनॉय ने गाया था ओ माई डार्लिंग आगे वो जो भी है सो यस वो उस सॉन्ग के लिए बताया कि वो मूवी कौन सी है क्या यार एनीवेज सो यस वो जो फिल्म में जब बात कर रहा था बेसिकली आप प्राइम वीडियो पे जाके S4 द बॉब लेजर ये नाम है S4 बोलते ऑफ कोर्स इनिशियल है S4 S4 शिमला एंड 4 नंबर 4 एंड देन द बॉब लेजर सो ये उस फिल्म का नाम है जिन्होंने एक तरह से डॉक्यूमेंट्री है कोई प्रॉपर नहीं है लेकिन उन्होंने काफी रिक्रिएट किए हैं इमेजेस AI यूज करके विच इज अमेजिंग ऑनेस्टली आपको जरूर देखना चाहिए ऑब्वियसली AI से बनाया है या कैसे बनाया है बट इट एक्चुअली लुक सो रियल आपको देखना चाहिए और उन्होंने वो हर एक चीज बताई कि अंदर क्या है सबसे खास बात पता है क्या उस स्पेसशिप में 3 ही चेयर है पूरा खाली है सिर्फ 3 ही चेयर है वो तीनों चेयर की साइज जो है ना मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ इतना ज्यादा आप शॉक हो जाओगे इतनी ज्यादा छोटी है वो जो हमें मूवी में देखते ना कोई मिल गया अगर आपने देखी है तो उसमें जादू की जो हाइट होती है ना बेसिकली वो मेरे को लग रहा है वो वही हाइट का चेयर था मतलब वही हाइट की चेयर थी तो मतलब ये हाइट बताई गई है एलियंस की ऑब्वियसली यार वहां पे बच्चे तो बैठ के नहीं करेंगे बट यस दिस इज वेरी फैसिनेटिंग मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है आप भी जाइए और देख के आइए और अगर एरिया 51 के टॉपिक पे अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो ये फिल्म डेफिनेटली आपके लिए है मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ आप भी जाइए S4 द बॉब लेजर अभी नहीं रात में आराम से या फिर वीकेंड पे देखना अभी तो आप मेरा शो सुनिए वैसे अभी एक मैसेज आया है सुशील्स मसल शेफ कैफे ईटिंग वेलिंगटन ऑन अ प्लेट बर्गर प्लांट बेस्ड चिकन वाओ एश वेलिंगटन नाइस ब्रो इज इट रियली यमी बताना प्लीज यार कभी भी वेलिंगटन अगर आएंगे तो डेफिनेटली वी गोना ट्राई बट डू दे हैव ब्रांच ओवर हियर इन ऑकलैंड एज वेल अगर हाँ तो बताइए यार आई वुड लव टू ट्राई बट प्लांट बेस्ड से पता नहीं क्यों मैं थोड़ा दूर रहता हूँ क्योंकि मैं तो खा ही लेता हूँ नॉनवेज तो मतलब हाँ पता नहीं मेरा जहन में कुछ और ही आता दिमाग में प्लांट बेस्ड का क्या है और टेस्ट में वो पता नहीं मज़ा है नहीं है सो यस पता ही अगर यहाँ ऑकलैंड में भी है तो वी वुड लव टू गो एंड ट्राई इट आउट
1: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है। वैसे यस, कुछ पॉडकास्ट की बात कर लेते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपको पता है अभी आपको क्या डाउनलोड करना है। वेल यस, एक और नया पॉडकास्ट हम लेके आ चुके हैं, अभय कोहली। इस पॉडकास्ट में बेसिकली ही इज प्रिंसिपल एडवाइजर इन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम गाइडेंस एंड एंगेजमेंट एट एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड, MBIE। और उन्होंने पूरी बात, एक्चुअली बहुत ही बड़ी बात रिवील की है अबाउट द रूल्स दैट गवर्न द कीवी वर्कप्लेस एंड व्हाट हैपेंस जब बिजनेस जो है वो रॉन्ग होता है। वेल, ऑफ कोर्स इन्होंने काफ़ी कुछ कवर भी किया है। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट एंड लीव्स के बारे में बात की है, जहां पे फंडामेंटल राइट्स हर एक एम्प्लॉयज को मिलते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। ये चीज़ उन्होंने बताई है दैट यू नो इट हैज़ टू बी इन रिटर्न एज वेल। जो भी आपके क्लॉज हैं ये सब होते हैं इन्फॉर्मेशन, तो यू नीड टू हैव those things in writing. Second is high profile burst, real world cases में non-compliance, और उसके बाद जो staggering fines dishes out to rug employers, साथ में rights at work और free support and service, ये सारी चीजें इन्होंने cover की है इसमें। तो yes, आपको definitely ये चीज सुननी चाहिए। आप अभी जाइए अपने phone पे टेक्स्ट जो मैसेज वाला जो ऑप्शन होता है उसको ऑन कीजिए और हमें 5599 पे ड्राइव लिख के भेज दीजिए। आई एम प्रीटी श्योर यू माइट बी स्ट्रगलिंग, होपफुली नॉट, बट अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इन योर वर्क एरिया, तो आई थिंक ये पॉडकास्ट एक बार सुनिए, हो सकता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें आपको मिल जाए एंड यू मे फाइंड अ वे टू फाइंड द सोल्यूशन। सो जल्दी से मुझे ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए। साथ में ऑफकोर्स ब्रेकफास्ट विद विजय एंड पूजा के बारे में अगर बिट्स एंड कन्वर्सेशन अगर सुननी है तो आप मुझे BF लिख के 5599 पे भेज सकते हैं। एंड ऑफकोर्स मेरा गाना जो है सफायर 2.0, इट्स एक्चुअली गोइंग सो वेल। आप जा सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफकोर्स व्यूज जो है इट इज़ ऑलरेडी हैज़ क्रॉस्ड 100K और अभी भी चल रहा है, अभी भी थोड़ी बहुत मार्केटिंग चल रही है। एंड ऑफकोर्स आप उसे सपोर्ट करिए, फिर से देखिए अगर देख लिया है तो, और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को ताकि ये जल्दी से 500K तक पहुँच जाए। सो येस, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पर येस, आप बस बने रहिए सुनते रहिए, अभी और भी बातें लेके आए, हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड के बारे में लेके आऊँगा, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आज के दिन हुई थी। Have you like do you know anything about कि आज के दिन क्या हुआ होगा? Well, आज हम बात करेंगे Cook Islands achieves self government। जी हाँ, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में।

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
3: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
0: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
2: Say no to windows crying condensation. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without DVS home ventilation. Call 0800 DVS DVS.
3: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Medical and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
4: Lunchbox with Ketan.
5: Aisa bajaunga na ki tere kaano mein roz meri aawaz goonjegi.
6: Chutney Shots.
7: चटनी शॉट के सेगमेंट में स्वागत है। सबसे पहले रोड सेफ्टी से खबर है। डबल ए की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कई न्यूजीलैंड ड्राइवर्स को नए रोड रूल्स, अनकॉमन रोड साइन और कॉम्प्लेक्स ड्राइविंग सिचुएशन को लेकर कंफ्यूजन है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेगुलर रिफ्रेशर लर्निंग से रोड सेफ्टी और भी बेहतर हो सकती है। पॉलिटिक्स से अपडेट एक है। एक नेशनल पार्टी मिनिस्टर ने माना कि प्राइम मिनिस्टर के स्मॉल बिजनेस वाले रीसेंट रिमार्क से कई बिजनेस ओनर्स को तकलीफ पहुंची है। गवर्नमेंट का कहना है कि उनका फोकस अब भी स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करना है। वेदर अपडेट्स भी इंपॉर्टेंट है। फोरकास्टर डैन कॉर्बेट का कहना है कि न्यूजीलैंड में चल रहे कोल्ड स्नैप अभी खत्म नहीं हुई है। साउथ आइलैंड और कुछ नॉर्थ आइलैंड एरियाज में अगले कुछ दिनों तक फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रॉस्ट और स्नो की कंडीशंस देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल न्यूज में अमेरिका ने एक डायरिया कॉजिंग पैरासाइट से लिंक्ड पहली डेथ रिपोर्ट की है। हेल्थ ऑफिशियल्स लोगों से हाइजीन का खास ध्यान रखने और सिम्टम्स होने का डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी है। स्पोर्ट्स अपडेट है। ऑल ब्लैक्स को साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले बड़ा झटका मिला है। ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड हुआ एक हुकर स्क्वाड से बाहर गया है और उसकी जगह रिप्लेसमेंट प्लेयर्स को तुरंत टीम के साथ जोड़ा जा रहा है। एंटरटेनमेंट से दुनिया के लिए ऑफ कोर्स गुड न्यूज है। न्यूजीलैंड के पॉपुलर टीवी ड्रामा शॉर्टलैंड स्ट्रीट 2027 में और भी ज्यादा एपिसोड्स के साथ वापस आने वाला है। फैंस के लिए ये एक नया और काफी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट माना जा रहा है।
4: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: champion.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Yes, से कॉफी पीने का टाइम आ चुका है. लंच मेरा हो चुका है. आज मैंने खाया है राजमा और आलू की सब्जी. बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी. तीनों का मतलब एक ही है, बट ऑब्वियसली यू कैन फील माय व्हाट आई एम सेइंग कि बिकी कितना टेस्टी होगा. राइस के साथ मैंने खाया, तो अब लग रहा है मुझे खाना तो हो चुका है एडजस्ट पेट में. अभी आई थिंक इट्स गुड टाइम फॉर हैविंग अ टू हैव अ कॉफी. पर यस, एक रिक्वेस्ट भी है ये गाने की, उसे भी हम देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द मैसेज. जुनून मैं सुनता हूँ यार, मैंने भी नहीं सुना अभी तक, बट पहले मैं सुनता हूँ एंड देन आई ट्राई माई बेस्ट टू प्ले इन द नेक्स्ट आवर. पर यस, अभी एक सवाल पता मेरा क्या है आपसे, सवाल मेरा ये है, आप अभी तक कितनी ज़्यादा कंट्रीज में घूम चुके हैं और या फिर विजिट भी किया हो तो बताएं मुझे 5599 पे. आई वुड लव टू नो. लेट्स सी कौन यहाँ पे मेरा लिसनर है जिसने सबसे ज़्यादा कंट्री घूमी है, तो आप मुझे बता सकते हैं. और कौन कौन सी कंट्रीज में आप घूमने गए हैं वो भी मुझे बताइए, मैं भी अपना बताऊंगा. इतना ज्यादा नंबर नहीं है, बट आई विल डू माय वे एज वेल. सो यस, 5599 इज द नंबर.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: Gully gang, gully gang. Water, water.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हालचाल, 15 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 4 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10% चांस है बारिश के, विंड भी आपको देखने को मिल सकती है, महसूस हो सकती है 65 किलोमीटर पर आर के हिसाब से, बट सनसेट होगा आज 5:39 39 मिनट्स पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे।
1: नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स, मेरा नाम केतन है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन अगेन, अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है तो, बट यस थैंक यू सो मच फॉर कीप लिसनिंग टू मी सिंस आई थिंक, बट मैं 12:02 में आ चुका था, नहीं एक्चुअली पहले ही आ गया था। यहाँ पे पता नहीं क्यों होता है कि एक मिनट पहले शुरू होता है, बट टाइम जो है आपको थोड़ा सा लेट सुनाई देता है, फ्रीक्वेंसी का ऑफकोर्स इट कैनॉट बी सो एक्यूरेट विद द लाइव, बट थैंक यू सो मच, आप बस बने रहिए, मैं 3 बजे तक यहाँ पे हूँ और बहुत सारी बातें करनी है। सो यस, इस आर में भी बॉलीवुड से लेके कुछ स्पोर्ट्स की अगर कुछ नई लेटेस्ट खबर आती तो उसको भी बताऊंगा मैं, बट साथ में लेटेस्ट खबर के साथ साथ आपको वो भी बताना है। वैसे अभी खास मैसेज आई नहीं है, सो आई एम जस्ट गोना रिपीट इट अगेन, आप मुझे बताइए कि आप अभी तक कितनी कंट्रीज में घूम चुके हैं। 5599 से नंबर जहाँ पर आप मुझे मैसेज भेज के बताएंगे, लेट्स फाइंड आउट यार कि आप कौन कौन सी कंट्री गए हैं, फिर मैं अपना भी बताऊंगा डेफिनेटली।
0: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं अभी वो मैसेजेस की जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि कौन कौन सी कंट्रीज में आप घूम चुके हो। तो यस, ये रहे मैसेज रवि भाई का। ये मैसेज आया है, वो उन्होंने लिखा है, आई हैव बीन टू 4 कंट्रीज, इंडिया, फिजी, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर। नाइस नाइस। प्रिया कहती है, आई हैव ट्रैवल टू 6 कंट्रीज, न्यूजीलैंड, इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। दैट्स सो कूल यार। देव भाई कहते हैं, ओनली 2 कंट्रीज सो फार, इंडिया, न्यूजीलैंड, होप टू एड मोर सून। अरे भाई, बीच में भी तो कहीं आए होंगे, डायरेक्ट थोड़ी ना फ्लाइट है वहाँ से। बीच में भी आई थिंक यू मस्ट हैव मिस्ड आउट। अगर घूमे नहीं हो ऐसे टच भी क्या हो, वो भी आप बता सकते हैं। अंजलि कहती हैं, 5 कंट्रीज, फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड कैनेडा। ओ नाइस। करण कहते हैं, 3 कंट्रीज, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड नेपाल। नेहा का मैसेज आया है, 7 कंट्रीज, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड दुबई। वेल, नेहा इज ऑन टॉप। आखिरी और मैसेज पढ़ते हैं, रितेश, वो कहते हैं हॉबिक से, 8 कंट्रीज। अरे वाह, इनका तो सबसे ऊपर यार, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, वियतनाम एंड बाली, इंडोनेशिया। दैट्स सो कूल यार। वेल, मेरा इतना नंबर तो नहीं है, मेरा होगा इंडिया, देन ऑफकोर्स इंडिया में तो पैदा हुआ तो वहाँ का तो होना ही है, उसके बाद सिंगापुर, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी के बाद और कौन सी कंट्री आती है, चाइना भी गया हूँ मैं, हाँ चाइना गया हूँ, दुबई गया हूँ, यूएई, सॉरी दुबई तो गया, और हाँ और कौन सी कंट्री है, मतलब 7 है मेरी कंट्रीज। अरे वाया, 7 है यार, सो कूल है। पता नहीं स्टूअर्ट आयलैंड को अलग कंट्री मानते नहीं मानते। जस्ट ओके, बट ये अगर आपके नंबर 8 से भी ज्यादा है तो मुझे बताइए 5599 पे। लंच
1: बॉक्स विद केतन। इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे हम।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
2: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
2: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे, बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
8: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cash back or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
9: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड, माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
10: MediaWorks complaints. How can I help?
11: My kids won't shut up.
10: I'm not sure that's our problem.
11: They keep reciting lines from one of your radio ads.
10: Aw, cute.
11: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
12: What do you want, son?
13: I want me some of that real southern chicken.
11: 28 times.
10: So where are you now?
11: Eating chicken.
14: Advertise with
15: MediaWorks.
14: New Zealand listens to us.
16: Hello. NZHL helps you get ahead on your mortgage without living off office snacks, Christmas shopping on Boxing Day, buying handbags on the dark web.
17: It's a very Stassi.
16: Selling your organs, DIY Botox, ignoring expiry dates. Knitting, pickling, homebrewing, live camming, dine and dashing, or borrowing toilet paper from work.
17: Ah, you keep it.
16: Nope, there's a better way to have a mortgage and a life with NZHL.
18: NZHL.
2: लंच बॉक्स विद केतन।
6: मुझे पसंद है लड़का।
2: हम लंच टाइम रेंट लाइन।
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। ये लंच टाइम रेंट लाइन में काफी इंटरेस्टिंग मुझे टॉपिक मिल चुका है। वैसे मेरे पास था ऑलरेडी, बट आई थिंक दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो ये रहा मेरा सवाल। मैं एक्चुअली इनको कॉल करना, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे कॉल करिए, या फिर इफ यू वॉन्ट मी टू कॉल यू आई कैन ऑल्सो डू इट। मैंने जो सवाल किया था कि आप कौन सी कंट्रीज में गए हैं, कहाँ कहाँ, तो इनका रिकॉर्ड इज स्टिल ऑन टॉप। ये इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, बट कहते हैं इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑब्वियसली वो उसमें नहीं आता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेरू, चिली, चिले, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, श्रीलंका, एंटार्क्टिका। अच्छा, पारस नाम लिखा हुआ तो है भाई, चश्मा नहीं पहना ना आज। एंटार्क्टिका क्वाइट इंटरेस्टिंग यार। या प्लीज़ मुझे कॉल करो यार, मुझे जानना है एंटार्क्टिका क्या सिनेरियो, कैसे वहाँ पे पहुँचे आप, क्या तरीका है वहाँ जाने का। सुना है काफ़ी मतलब गड़बर बेचना पड़ता है वहाँ जाने के लिए, तो बताइए मुझे कॉल करके 0800-004-866। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए, मैं बहुत ही मतलब बात करनी है आपसे यार, मतलब इतना इंटरेस्टिंग। और ऐसे यूजुअली लोग गए हैं एंटार्क्टिका, आई नो, बट नॉट समवन हु इज स्टेइंग इन न्यूजीलैंड। मैंने तो नहीं सुना पर्सनली, बट इफ पारस भाई अगर आप सुन रहे हैं प्लीज़ कॉल करिए मुझे 0800-004-866 पे। सेकेंड, अनु ने भी मैसेज भेजा है, 7 कंट्रीज ये गई हैं, वियतनाम, फीजी, थाईलैंड, बाली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड PNG। ये PNG वो फोटो का फॉर्मेट नहीं है ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, पापुआ न्यू गिनी, बहुत ही यू नो शांत, और काफ़ी 800 इंडिजीनियस वहाँ पे लैंग्वेज पाई जाती है। सो यस, इफ यू डोंट नो। वैसे एक कोई कंट्री है ना जिसको एक शिप पे ही है, लाइक क्रूज भी है, उसको भी किसी ने कंट्री नाम दे रखा है, ऐसा कुछ है, आई थिंक सो। चलिए बात करते हैं। हेलो
12: हेलो हेलो,
0: क्या हाल है पारस भाई?
12: बस ऑल गुड, आप बताओ कैसे हो?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ, बताइए।
12: आपने पहचान लिया एकदम?
0: अरे हाँ, क्योंकि नंबर चेक
12: किया, नेम आ रहा है मेरा,
0: मैंने चश्मा पहन लिया ना, नंबर चेक किया मैंने वहां से बताइए,
12: आपकी बात सुन रहा था। हाँ, मुझे लगा आपसे कॉल पे वेलकम बात करी है।
0: थैंक यू सो मच यार। आपने जो नाम लिखे हैं कंट्रीज के, उसमें एक मुझे काफी फैसिनेट कर रहा है, वो है एंटार्क्टिका। उसके बारे में कुछ बताओ, कैसे पॉसिबल हुआ, क्या स्टोरी रही, वुड लव टू नो यार।
12: एक्चुअली तो उसमें से मेरी काफी बार इस बारे में बात हो चुकी है, और जब मैं एंटार्क्टिका जाने भी वाला था 2024 में,
0: राइट,
12: तो रुजबे से मेरी बात हुई थी एक दो बार, और रुजबे मुझे मिला भी थे एक इवेंट में, तो मैंने उनको बताया था, लेकिन फिर आपको दोबारा शेयर करता हूं।
0: प्लीज प्लीज, क्योंकि मेरे लिसनर्स अलग है, मेरे व्यूअर वो सब अलग है, और मैं खुद भी अलग हूं, सो आई नीड टू लिसन फ्रॉम यू।
12: कैसा, अंटार्कटिका जाने के लिए मतलब वैसे न्यूजीलैंड से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं गया था अर्जेंटीना से, तो अर्जेंटीना से डिस्टेंस इज क्लोजर, तो अर्जेंटीना की जैसे सदर्न मोर टिप है, जैसे न्यूजीलैंड में ब्लफ है, वैसे ही अर्जेंटीना की जो सदर्न मोर टिप है, उसका नाम, सिटी का नाम है उशुआया।
0: उफवाया,
12: उशुआया, USH,
0: राइट,
12: उशुआया,
0: राइट,
12: ठीक है। तो वहां से क्रूज जाता है, तो इट टेक्स 2 days 1 day 1 way,
0: राइट,
12: और वहां से क्रूज लेके जस्ट लाइक 10-12 डेज का ट्रिप था, क्रूज था, और 2 दिन जाने के और 2 दिन आने के, बाकी वहां पे बहुत सारे आइलैंड्स में हम लोग घूमे थे, तो 2 दिन जाने के बाद वो एक आइलैंड पे रुकेंगे, देन यू नो यू डू साइट स्कीइंग, बेसिकली नीचे जाके अंटार्कटिका की लैंड पे आइलैंड पे घूमेंगे। 1 day आई डिड कयाकिंग, यू नो, और वहाँ पे ओवरनाइट रहने का भी प्लान था, जो कैंपिंग का प्लान था, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्नो थी वहाँ पे, तो वो कैंसिल हो गया, लेकिन वी डिड कयाकिंग देयर और हाइकिंग और वो सब हम रोज करते थे। तो जैसे 2 days जाने में लगे, फिर एक आइलैंड पे रुके 1 दिन के लिए, फिर वहाँ हाइकिंग करी, है ना, और साइट सीइंग करी, एंड देन वी वो ओवरनाइट कहीं और ट्रैवल करके दूसरे आइलैंड पे जाता था, फिर ओवरनाइट ट्रैवल करके ऐसे जाता था,
0: राइट,
12: ठीक है। तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज लाइन अप होती थी, जैसे आज हमें ये माउंटेन हाइक करना है, या बर्ड वॉचिंग का डे है, या फिर आज कयाकिंग का डे है,
0: राइट,
12: या फिर रेस्ट डे है, या यू नो आपको नहीं भी जाना है तो यू कैन जस्ट रिलैक्स ऑन द क्रूज, यू नो।
0: कूल यार, मतलब तो कितने दिन के लिए गए थे आप?
12: मतलब एक्चुअली मैं उशुआया से स्टार्ट होके 12 डेज थे, 12 या 13 डेज थे,
0: nice,
12: जो टोटल थे, ठीक है, तो उसमें दो दिन आने के दो दिन जाने के और एक या दो दिन वो दे प्रेफर वहाँ पे होटल में रहो पहले करो. तो वो बुकिंग में इंक्लूडेड था, रेस्ट करो आके, बिकॉज पीपल हैव लॉन्ग फ्लाइट ना, कि यूएस से भी आए लोग और न्यूजीलैंड से भी और बहुत जगह से, तो

0: चलिए काम की बात,
1: तो वो इसलिए
0: हाँ जी नहीं नहीं नहीं आप क्या बोले थे सॉरी,
1: इसलिए वो दो दिन होटल में पहले रेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा यूज्ड टू हो जाओ वेदर का और जेट लैग वेट लैग वो सब खत्म हो जाए आपका, एंड देन दे बेसिकली स्टार्ट।
0: परफेक्ट,
1: तो मेरा एक ड्रीम था जाने का। हाँ जी,
0: दिन का काम था, राइट। मेरा एक्चुअली मेन सवाल यहाँ पे ये है कितने घर बिकते हैं एंटार्क्टिका जाने में?
1: ज्यादा नहीं बिकेंगे। सो द क्रूज का जो खर्चा था वो था न्यूजीलैंड डॉलर्स $10,000, ज्यादा नहीं था।
0: ओके, 10,000
1: और 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स दैट इज फॉर द क्रूज। एक्चुअली में कॉस्ट अराउंड $20,000 है एक्चुअल प्राइस पे,
0: राइट,
1: लेकिन मैं थोड़ा अर्ली सीजन था तो दे वर ऑफरिंग 50% ऑफ, तो मेरे को अराउंड 10,000 पे पड़ा है, मतलब 6,000-7,000 USD, तो मैं कन्वर्ट करके न्यूजीलैंड में बोल रहा हूँ, इट्स अराउंड अप्रॉक्सिमेटली 10,000। बट अगर आप मिड सीजन में भी जाओगे तो इट विल कॉस्ट यू 14,000-15,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स में हो जाएगा, क्योंकि वहां पे चलता रहता है ये सब डील्स वगैरह, ऑफर चलता रहता है। बट आई वाज अर्ली सीजन, हमारा फर्स्ट क्रूज ही गया था सीजन का 2024 में,
0: राइट,
1: तो आई गॉट 50% विच इज $10,000, तो उसके ऊपर से फ्लाइट भी लगाओगे तो 5,000 फ्लाइट का लग जाएगा, मतलब ज्यादा कॉस्ट भी लगाओगे फ्लाइट की,
0: right.
1: और रहना करना वो सब रहेगा, लेकिन क्रूज में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, फूड एंड एवरीथिंग वो रहता ही है जैसे।
0: परफेक्ट, बहुत बहुत सही है यार, मतलब मैं तो अब लग रहा है मेरे को भी एक बार थोड़ा राउंड तो मारना पड़ेगा।
1: आई विश आई कुड गो विद माय वाइफ एक्चुअली।
0: अच्छा,
1: आई विश आई कैन गो विद माय वाइफ, बट मेरे दो डॉटर्स हैं और वो अभी 10 और 12 की हैं, तो वो लोग नहीं जा सकते, दे वर ट्रैवलिंग टू इंडिया एंड आई हैड द ड्रीम, आई डोंट वांट टू लीव देम और आई कांट टेक देम ईदर, तो वो इंडिया जा रहे थे और मैंने सोचा कि दिस इज द राइट मोमेंट एंड द क्रूज एंड एवरीथिंग गॉट लाइंड अप यू नो इन अ वे, तो वो सब हो गया,
0: ठीक है,
1: तो वो सब लाइन अप हो गया, तो जब लिखा होता तो जाना होता था, जाना होता।
0: ट्रू, बट सो थैंक यू यार पारस भाई आपकी कॉल के लिए, आई विश कि मैं आपको जल्दी मिलूं, और बहुत सारे सवाल है जहन में, ऑब्वियसली यहाँ टाइम को चलते हम ज्यादा तो पूछ नहीं सकते, बट डेफिनेटली जब भी मुलाकात होगी आपसे, प्लीज अगर आप कभी भी आते किसी इवेंट में, अगर आपको पता पड़ता मैं आ रहा हूँ या मुझे पता पड़ता आप हो,
1: मुझे आपका नाम नहीं पता, सॉरी
0: केतन, शो में इतना नाम
1: चेतन को मैं जानता हूँ, लेकिन आई जस्ट केम टू पैक एंड सेव और मैंने सोचा कि कोई ऐसी रैंडम शो चल रहा है, सो आई डू नॉट नो,
0: रैंडम नहीं, मैं दो साल से लंच बॉक्स शो कर रहा, ऐसे तो मत बोलो यार।
1: नहीं नहीं देखो, आई डोंट फॉलो एक्चुअली, मेरे कार में हम एफएम ही रहता है, लेकिन आई डोंट फॉलो कि कौन सा शो है और कौन सा पर्सन कब आता है,
0: ट्रू,
1: आई जस्ट यू नो फॉलो द चैनल,
0: नो वरीज, बट थैंक यू सो मच पारस भाई, आप प्लीज जब भी मौका मिले मुझसे मिलिए, देन डेफिनेटली मेरे बहुत सवाल है इस बारे में, बट कूल, थैंक यू सो मच, यू हैव अ ग्रेट लवली डे, बाय बाय,
1: यस बाय।
0: वेल, ये थे पारस भाई जिन्होंने बताया है कि 10,000 लगेंगे अगर ऑफ सीजन करते हैं आप, लेकिन एक और चीज है जो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं, वो है बैंकॉक पटाया का जो टिकट है वो हासिल कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको बस हमें कंटिन्यू सुनना पड़ेगा, बिकॉज रुजबे सैंडी आपको बताएंगे कि कैसे आपको मौका मिल सकता है। अगर आप नहीं रुकना चाहते हैं तो अभी हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे आपको एक लेटेस्ट रील मिल जाएगी रुजबे और सैंडी की, उन्होंने बताया है बकायदा कि कैसे आप पॉसिबल कर सकते हैं बैंकॉक पटाया का टिकट, पटाया का टिकट। हाँ जी,
2: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: चेतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja।
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
4: कौन है?
5: हुनुआ और वेटाकरे।
4: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में।
5: किधर है हुनुआ?
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja।

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m. आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
5: Home loan ke saath thoda cash bhi pana chahte hain? Naya home loan lena ho ya maujooda loan ka review karwana ho? Squirrel aapko dilayega ek aisi zabardast deal ki aapki ho jayegi balle balle. Janiye power of the Squirrel effect. Squirrel.co.nz.
6: Macca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
9: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
10: लंच बॉक्स विद केतन।
11: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
12: इसके पीछे
10: लंच के मंच पे।
13: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं लेटेस्ट खबर का। दो यंग न्यूजीलैंड हाइकर्स केनो इसेक्सन जो कि 25 साल के हैं और लुका जो कि 19 साल के हैं, सोलोमन आइलैंड के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट पोपो मानासेव पर ट्रैकिंग के दौरान तेज बारिश, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स की वजह से एक रिमोट रिवाइन में फंस चुके थे। कई दिन तक रेस्क्यू का इंतजार करने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के थ्रू सेफली एयरलिफ्ट किया गया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में न्यूजीलैंड, सोलोमन आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर मदद की है। वैसे दोनों हाइकर्स अब सुरक्षित हैं और उन्हें न्यूजीलैंड ऑफिशियल्स की तरफ से सपोर्ट भी दिया जा रहा है। That's quite interesting actually, and that is so great कि हमारे जो दो नौजवान हैं वो भी finally आ चुके हैं यहाँ पे फिर से। So yes, which is great news यार। बस अगर आप फिर से अगर देखना चाहते हैं ये news, I mean like एक 25 साल का और एक 19 साल का कैसे वो फंसे थे, but they are back now and उनके जो family वाले हैं उन्होंने भी अपनी कहानी बताई है। उन्होंने भी कहा है कि वो मतलब उस बीच जब वो नहीं थे, किस सिचुएशन में थे, किस ट्रॉमा से थे गुजर रहे थे। बट हेड्स ऑफ टू दीज टू जिन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश जारी रखी।
10: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: ασκούνζεκι.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं अब एक ऐसे इवेंट की जो होने जा रहा है ऑन 22nd of August। अगर आपको भजन जैम्स पसंद है, डेफिनेटली आपको पसंद होगा, तो ये शो है, उसे अटेंड करिए और ज्वाइन करिए रवितेश देव को, जो एक इनक्रेडिबल लाइव बैंड के साथ आ रहे हैं आपकी शाम को और भी सुहाना बनाने के लिए, डिमोशनल म्यूजिक और फ्यूजन भजन्स और कीर्तन के साथ। जी हाँ, एक्सपीरियंस करिए बहुत ही ट्रेडिशनल डिवोशन ब्रॉड to life through contemporary arrangement. काफी talented vocalists भी आ रहे हैं और काफी इस बेहतरीन musicians भी होने वाले हैं। So yes, ये सारी चीजें आपको एक ही छत में एक ही टाइम पे मिलेगी, जो कि 22nd of August को हो रहा है 7 बजे के बाद वैदिक सेंटर में, 32 ग्लासगो एवेन्यू पापा टोयोटो में। टिकट जो है सिर्फ $30 की है और आप इसे बच्चों के साथ अगर जा रहे हैं, अगर 5 साल से छोटे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए फ्री है। और यस, स्नैक्स एंड कावा विल बी सोल्ड ओवर देयर एज वेल। आप टिकट्स ले सकते हैं ऑनलाइन जाके eventbrite.com पर जाकर, या फिर जेस फ्रेश पापा टोयोटोय, वैली फ्रेश पापा टोयोटोय, शिव प्रसाद केल्सन से आप ले सकते हैं। तो जाइए इस इवेंट में विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त, जो भी है आपके साथ जाना चाहता है जाइए, लेकिन टिकट लेना ना भूलिए। eventbrite.co.nz पे जाके आप टिकट खरीद सकते हैं। जाइए अभी जल्दी।

0: मेरी आवाज गूंजेगी।
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में। फिर से आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स शो, मेरा नाम केतन है, 104.2 एफएम के जरिए, या फिर हो सकता है अगर आप सिटी से सुन रहे हैं तो 87.7 के जरिए भी आप सुन सकते हैं। रोवा ऐप तो है ही, बट साथ में आप मुझे hum.roa.nz की वेबसाइट के जरिए भी सुन सकते हैं। वैसे यस, एक हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात भी शुरुआत करता हूँ इस आर में। मैं हूँ अभी तक 3 बजे तक, उसके बाद सैंडी जुड़ेंगी फॉर द कॉफी ब्रेक, और उसके बाद रुज भी उनका साथ देंगे इन द कॉफी ब्रेक, सॉरी ड्राइव शो। बट यस, इस आर में भी स्पोर्ट्स से लेके कुछ और बातें भी करनी है। लास्ट में मैं बॉलीवुड की बात बताना भूल गया, सो उसके बारे में आपको मैं अपडेट दूंगा। बट अभी के लिए हाल फिलहाल हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड के बारे में बता देता हूँ। आज के दिन ये हुआ था, 4 अगस्त 1965 की ये बात है, जब कुक आइलैंड को सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो मिला था, यानी कि आज ही के दिन की बात है ये। इससे पहले ये न्यूजीलैंड के अंदर था और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन न्यूजीलैंड हैंडल करते थे। वैसे सेल्फ गवर्नमेंट के बाद कुक आइलैंड अपने इंटरनल मैटर्स खुद मैनेज करने लगा, लेकिन फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूजीलैंड के पास रही। इसी चक्कर में कुक आइलैंड्स के लोग न्यूजीलैंड सिटीजन बने रहे। जी हाँ, तो ये रीजन है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूजीलैंड एंड कुक आइलैंड। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप न्यूजीलैंड हिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट अभी के लिए एंजॉय करिए एक खूबसूरत गाना, फेक इश्क नकली प्यार।
2: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक। चलिए एक खास अपडेट आपको देता हूँ। जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है, ये एक बात मैं आपके बताने वाला हूँ। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज जो हैं वो पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग एंड सोशल सपोर्ट की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही है। उनकी एक्सपीरियंस टीम है आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, दे विल गोइंग टू हेल्प यू आउट ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके विद सो मच ऑफ कंफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग एज वेल। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना। वैसे अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की जरूरत है, someone from your friends or someone from your family is going through such situation, जो obviously you can see it but you are unable to help, so Asian Helpline is the person, is the team जो आपके चाहने वालों की मदद कर सकती है। So yes, 0800-862-342 0800-862-342 पर आप free और confidential support के लिए call कर सकते हैं या फिर उनकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं asianfamilieservices.nz। यहाँ पे आप विजिट करिए। जो कोई एडिक्शन में फंसा हुआ हो या फिर गैम्बलिंग में या फिर सोशल सपोर्ट चाहिए हो या फिर कुछ मेंटल हेल्थ की भी सपोर्ट अगर चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 0800-862-342 या फिर asianfamilieservices.nz पे जाके आप विजिट करके पता कर सकते हैं।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: हाँ।

0: हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार.
2: क्यों? क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया. No response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
4: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At Assure One, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. Assure One, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as Assure One, is licensed financial advice provider.
5: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
6: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
7: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin binning. And you need to know about it.
8: Join the Tribe!
7: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
8: join the Tribe!
9: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi, or Shu Prasad, Kelston.

0: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
2: हम
3: स्किप या रिप्ले।
4: वेलकम बैक स्किप या रिप्ले में हम बात करते हैं बॉलीवुड की एक नई खबर आई है अबाउट हमेशा ट्रेंडिंग में रहने वाली और अभी तो एमपी भी बन चुकी है बीजेपी की तरफ से। मैं बात कर रहा हूं कंगना रनौत की, एक बार फिर अपने बयान को लेकर फिर से चर्चा पे आ चुकी है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में कंगना ने कहा है कि वो पहले खुद को मॉडरेट हिंदू मानती थी लेकिन अब वो डिफाइंड और अवेकन हिंदू बन चुकी है। उनका कहना है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को अपने रिलीजन या आइडियोलॉजी चुनने की फ्रीडम देता है और हिंदू महिलाओं को भी बिना क्रिटिसिज्म के अपनी सोच और पहचान चुनने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को समय के साथ अपनी बिलीव्स बदलने का हक है। कंगना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा और अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है। क्या ख्याल है आपका, क्या रिव्यू आप दे सकते हैं इस पे? आप मुझे 5599 पे भेज सकते हैं। वैसे ये आधी बात तो सच्ही बोली है दैट यू नो एवरीवन हैव देयर ओन ओपिनियन एंड एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टेड एंड ऑफ कोर्स ये ऐसा थिन लाइन है कि कुछ भी बोलो रिवर्स यू नो हाई चांसेस दैट यू नॉट गोना गेट द सेम आंसर व्हाट यू वुड लाइक टू हियर।
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए अब आपके लिए ऐसा मौका लेके आऊं जहां पे आप जीत सकते हैं पार्ट लेके एक डबल पास। वेल यस, अभी का जो सवाल है वो सवाल से पहले आपको बता देता हूँ दैट करण ओजला अपने पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आ रहे हैं ऑकलैंड में अपने गेस्ट स्पेशल गेस्ट के साथ जिनका नाम है इक्की। 25 अगस्त को ये होने वाला है स्पार्क एरिना में। आप टिकट के लिए जा सकते हैं hum.rova.nz या फिर livenation.co.nz में। जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग शो होने वाला है ये। आई एम प्रीटी श्योर उनका एक नया एपिसोड भी आ चुका है इंडियाज गॉट लेटेंट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन इट। मैंने नहीं देखा है अभी, बट आई एम प्रीटी श्योर बहुत ही अमेजिंग शो होगा, वो शो हुआ होगा आई एम प्रीटी श्योर। बट अगर आपने देख लिया तो आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा। बट यस, डबल पास के लिए मेरा सवाल आपसे पता है क्या है? करण ओजला का बर्थ डेट क्या है, यानी कि उसका जो DOB है वो मुझे यहाँ पे 5599 में भेज दीजिए। KA लिखना ना भूलिएगा, स्टार्टिंग में KA लिख दीजिए और करण ओजला का DOB लिख के मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सकें

और जीत सके एक अमेजिंग डबल पास, यानी कि वो आप कर सकते हैं। और साथ में एक और चांस है जहां पे आप डबल पास जीत सकते हैं। आप फेसबुक पेज पे जाइए हमारे, वहां उस हमने एक पोस्ट डाला है, उस पोस्ट को लाइक करिए, शेयर करिए और मैसेज लिख दीजिए करण औजला के लिए, कुछ भी जो आपके मन में आता है उन्हें टैग करके करण औजला को टैग करके उनके लिए जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हैं वहां पे लिख दीजिए, ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीत सके एक अमेजिंग डबल पास। यस, सो आपके वो दो मौके दे दिए मैंने, आप जल्दी से दोनों कीजिए अप्लाई। यू नेवर नो, आप हो सकता है दोनों में आप जीत जाएं और दोनों में आप डबल पास जीत जाएं। सो यू जस्ट इमेजिन यार कितना सही रहेगा ना। सो यस, स्टार्ट डूइंग इट नाउ। बट यस, hum.rua.nz एंड livenation.co.nz इज द वेबसाइट जहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं टिकट अगर आपको खरीदना है तो।

0: with Ketan.
1: Mujhe pasand hai ladka.
0: Hum.
2: Driving you home.
3: Drive show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत तो
5: आए आए बताओगे यार।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
7: Apne sapno ki duniya banane, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten, because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow today. Call 0800 77 HIRA. North Henvale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
0: Non-stop Bollywood.
8: Hum.
0: Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
9: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
3: हम
0: टेक टॉक।
10: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स टेक टॉक में। या टेक टॉक में क्या है कि अभी नई नई चीजें तो आई रही है, बट यहाँ पे सोचा क्यों ना आपको टेक्नोलॉजी फ्रीक जो अभी अभी होने वाली है उनसे भी मुलाकात करते हैं। हाय सैंडी।
11: हाय केतन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो?
10: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
11: बढ़िया बढ़िया। तुमने, मैं सुन रही थी तुम्हारा लंच बॉक्स, तुमने एक मूवी रेकमेंड की थी ना, क्या नाम था, S4?
10: हाँ, S4,
11: वो एलियंस वाली।
10: एलियंस नहीं है तो इंसान ही है।
11: हाँ, मतलब
10: बट समथिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक।
11: अबाउट या वो देखी तुमने, हाउ वाज इट?
10: मैं बहुत फैसिनेट हो गया है उस फिल्म को देखने के बाद। पता नहीं, अभी मैं ऑब्वियसली, देखो मेरा बैकग्राउंड जो फिल्म मेकिंग है, राइट, तो हर दिन कुछ ना कुछ स्टोरीज मेरे दिमाग में आती रहती है। तो आफ्टर वॉचिंग दैट आई एम गेटिंग ऑल दीज काइंड ऑफ आइडियाज कि यार एलियन से रिलेटेड कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए।
11: न्यूजीलैंड में मेरे को लगता है बहुत एलियंस है।
10: हैं?
11: हाँ। करना चाहिए तुम्हें कुछ।
10: क्यों पंगे लेते? क्यों, मतलब क्या विस्तार से बताए वो कि एलियन कैसे दिखते हैं?
11: एलियन, यू नो, लाइक अलग ही थिंकिंग उनकी, बहुत एडवांस थिंकिंग है, दैट्स व्हाट आई मेंट। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी है, लिटरली है।
10: तो मुझे आपसे सवाल को पूछना चाहिए अगला या नहीं?
11: पूछो पूछो।
10: नहीं, आपको क्यों लगता है लाइक एलियन टाइप क्यों? लाइक
11: मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड जो है ऑलरेडी वी नो कि ज़ीलैंडिया के ऊपर एक है ये कंट्री, राइट? सो देयर इज क्वाइट अ हिस्ट्री अबाउट दिस लैंड।
10: अच्छा।
11: एंड बहुत वास्ट हिस्ट्री है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें अभी है एक्सप्लोर करने वाली है अबाउट न्यूजीलैंड।
10: आपने यूटर्न लिया ना टॉपिक से?
11: I'm just being politically correct right now.
10: Political and critical दोनों तरफ से।
11: Every yeah, but to jokes apart, मुझे सच में ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड because बाकी वर्ल्ड से बहुत अलग है, दूर है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। सो ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे इन ऑस्ट्रेलिया में कुछ तो ऐसी मिस्ट्रीज होंगी जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है या फिर एक्सप्लोर नहीं हुई है। या
10: हो सकता है
11: एलियंस भी हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज वन थिंग मेरे को डेफिनेटली पता है, काफी लोगों ने यहाँ पे बंकर्स खरीद के रखे हुए हैं फ्रॉम यूएस अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि जब भी वर्ल्ड वॉर वगैरह होगी तो वो न्यूजीलैंड में उन बंकर्स में आएंगे।
10: अच्छा।
11: या
10: ये, हाँ ये मैंने सुना था, बट मेरे को ये नहीं पता था कि न्यूजीलैंड में लोग,
11: न्यूजीलैंड में लोगों ने कुछ ने बंकर्स खरीद के रखे हुए हैं।
10: मुझे ये सुनने में आया था
11: दैट दिस इज द सेफेस्ट कंट्री उस समय पर।
10: थैंक गॉड यार, जल्दी से सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी फिर। आपकी तो हो गई ना?
11: या
10: क्या बात, कैसा फील कैसा होता है, मतलब यू नो नॉन, ऑब्वियसली आप सिटीजन लेना, सिटीजनशिप लेना इज नॉट अ प्रूफ ऑफ दैट आप जहाँ पहले थे तो वहाँ के लिए पुराना जो घर है वो घर नहीं था। बट आपको कैसा फील आ रहा है?
11: फील का तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में जाने के लिए वीजा अप्लाई नहीं करना पड़ता है।
10: हाँ, ये मेरे को एडवांटेज लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी मेजर डिफरेंस।
11: नहीं, मुझे नहीं लगता है, मतलब फॉर मी, अलग पर्सन के लिए कुछ अलग भी चीजें हो सकती है, फॉर मी इट्स मोर अबाउट की वीजा फ्री कंट्रीज
10: बिकॉज यू यू लव ट्रैवलिंग
11: आई लव ट्रैवलिंग
10: क्योंकि मैंने ना आज ना बहुत ही मस्त बेचा मैंने ना पारस भाई से बात हुई
11: आई डोंट नो इफ
10: यू मस्ट हैव स्पोकन टू हिम आई थिंक बिफोर वो कह रहा था रुजवे से बात हुई है
11: ओके
10: दैट ही वेंट टू एंटार्क्टिका
11: ओह या
10: सो इन्होंने बताया तो मैंने बोला कि एंटार्क्टिका के 10,000 लगेंगे बट यहाँ पे आप अच्छे से बैंकॉक और थाईलैंड जा सकते हो
11: I'm so proud of you. वैसे सिर्फ 12 सीट्स बाकी है
10: 12 सीट ही बाकी है
11: या बाकी बिक चुकी है सिर्फ 12 सीट्स बाकी
10: है
11: आउट ऑफ मेरे को लगता है 20
10: ओह दैट्स कूल यार मतलब
11: या हां
10: 8 टिकट बिक चुकी है मतलब आप तो गाड़ी चला रहे हो ना आगे फ्रंट में
11: हमारे अलावा मेरे रुजबे के अलावा
10: हां
11: और रुजबे की फैमिली या मेरे साथ कोई जो जाएगा उनके अलावा
10: रुजबे की फैमिली जा रही है
11: मतलब हमारे साथ जो कोई जाएगा उसके अलावा दिस इज फॉर द लिसनर जो 8 टिकट जा चुकी है
10: मतलब 20 टिकट में से 8 टिकट बिक चुकी है दैट्स सो कूल यार
11: 12 बाकी है एंड
10: और टाइम कितना बचा है
11: टाइम है लेकिन द थिंग इज कि सी मार्च तक का तो टाइम है मार्च 2027 बट द थिंग इज कि अगर आप अभी खरीदते हैं आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं ना आपको एक साथ पे नहीं करना पड़ेगा सो यू हैव अ प्लान देन
10: सो मतलब अगर आज कोई टिकट ले रहा है तो उनके पास मार्च तक का ही टाइम है मार्च के बाद भी हो सकता है
11: वो अनिल भाटिया से बात करके यू कैन गेट द डिटेल्स ही कैन सॉर्ट यू आउट
10: राइट
11: एंड द गुड थिंग इज कि $500 इज द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर एग्जांपल इस मंथ में अगस्त मंथ में वो अपनी टिकट बुक करते हैं रजिस्टर करते हैं एज इन $500 पे करते हैं दे विल गेट अ फ्री अकोमोडेशन इन न्यूजीलैंड एनीवेयर इन न्यूजीलैंड वन नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर टू
10: अच्छा ये अलग है
11: ये अलग है जो भी अगस्त के महीने में टिकट बुक कर रहा है उसको हाँ। ये साथ में ऐसा मिल रहा है
10: ये तो गजब है ये तो बोलना चाहिए
11: फॉर एग्जांपल अगर तुम क्वींसटाउन जा रहे हो अकोमोडेशन की टेंशन ही नहीं है
10: और ये एक्चुअली पता अभी परफेक्ट टाइम है ये चीज करने का बिकॉज अभी विंटर और विंटर के टाइम पे ऐसी जगह जाने का क्योंकि मैं वीडियो देख रहा हूँ यार मैं क्या कर रहा हूँ यार गर्मी के टाइम भी यहीं पड़ा रहता हूँ ठंड के टाइम भी यहीं पड़ा रहता हूँ जब मैं था साउथ में
11: या मतलब जा कभी भी सकते हैं वो अकोमोडेशन किसी भी टाइम
10: मिलेगा अभी
11: मिलेगा सिर्फ अगस्त मंथ में
10: हाँ बट स्टिल इट्स गेटिंग फॉर फ्री ये तो बहुत बढ़िया बात है मतलब आप वहाँ की तो बुक कर ही रहे हो साथ में आपको ये भी आपको फ्री और ये गारंटेड है
11: कोई भी जो बुक कर रहा है For everyone, it's not कि आपका नाम ड्रॉ में जा रहा है
10: right. Everyone कोई भी लेगा सबके लिए only for August month
11: yeah in fact he also said another thing Ketan so Bali is it Bali ना हाँ Bali में one draw होगा $1 million रुपए का
10: वहाँ के रुपए
11: हाँ
10: मतलब इंडोनेशियन रुपी
11: हाँ
10: पे रुपी चलता है ना
11: रुपी हाँ रुपी
10: तो
11: रुपी जो भी होता है exactly
10: हजार रुपए that's
11: for you to figure out मैंने अमाउंट बताई है
10: मतलब $1 million सो गाइस अभी टास्क दे दिया सैंडी ने $1 million इंडोनेशियन रुपी जो है वो वहाँ पे लकी ड्रॉ में मिलने वाला है तो वो कितना हुआ न्यूजीलैंड डॉलर
11: जल्दी से मुझे टेक्स्ट करो,
10: हाँ और हमें भी बताओ ऐसा भी फाइंड आउट करके आप खुद ही अपने पास रख रहे हो हमें भी जानने का बहुत क्योंकि हमारी मैथ्स भी अच्छी नहीं है
11: एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फिल करना है इफ यू वांट टू नो अबाउट द आइटेनरी कि क्या प्राइस है पूरी की पूरी ट्रिप के जस्ट टाइप ड्राइव 1599 ऑटो रिप्लाई में यू विल गेट अ लिंक जहां पे एक फॉर्म आप फिल करो और आपको पूरी की पूरी आइटेनरी आपके पास आ जाएगी
10: अरे दैट्स कूल यार बट अभी तो चलो आपके पास देखो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई है आई डोंट नो ये इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन कहीं और मिली नहीं मिली है सो अगर जो मुझे सुन रहे हो वो एक्सक्लूसिवली बातें मिली है आपको पहली बात तो ये कि आप फटाफट से जाइए टिकट खरीद लीजिए ड्राइव लिखिए हमें मैसेज भेज दी 555 पे 5599 पे ताकि आपको लिंक मिल जाएगी एंड देन यू जस्ट नीड टू फॉलो द प्रॉम्प्ट राइट एंड देन अदर द थिंग इज अगर आप अगस्त में टिकट खरीदते हैं तो आपको क्वींसटाउन की
11: न्यूजीलैंड में कहीं पे भी
10: अच्छा कहीं कहीं भी है सिर्फ क्वींसटाउन नहीं तो ये कौन चूज करेगा
11: ये जो भी बुक कर रहा है टिकट अगस्त में एवरीवन
10: डिसाइड कर सकते हैं कहाँ जाना उनको
11: या दे कैन डिसाइड
10: यार ये तो और भी सही है मतलब किसी को क्वींसटाउन है किसी को केपरेंगा जाना है या फिर
11: पाहिया एनीवेयर
10: अरे यार किसी को इनवोकागल जाना तो बता दे मेरे को सामान पड़ा वहां से लेते
11: ये देखो
10: बट कूल यार कूल सो जल्दी से जवाब भेजिए 1 million इंडोनेशियन रुपीज हाउ मच इन न्यूजीलैंड डॉलर ये आप बताइए 5599 पे
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: मेरी आवाज गूंजेगी।
1: Throwback brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। बट यस, अभी आपसे अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। सो यस, आप बस बने रहिए, कहीं मत जाइए मत। हम 104.2 एफएम के जरिए या फिर सिटी में है तो 87.7 एफएम के जरिए हमें सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट hum.roa.nz, वो भी आप उसके जरिए भी सुन सकते हैं। बट आसानी से विदाउट हैसल अगर सुनना है तो यस, रोवा ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। उसके जरिए आप पॉडकास्ट हमें लाइव सुन सकते हैं, पॉडकास्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और साथ में जो प्लेलिस्ट हम रेडी करते हैं, हमारी जो बहुत धमाकेदार इतनी बड़ी टीम है 4-5 लोगों की, तो हम सब मिलके भी काफ़ी कंटेंट जो आप सभी के लिए बनाते रहते हो। तो यस, डाउनलोड करिए आज ही और हमें सुनना शुरू करिए रोवा ऐप के जरिए। बट आई विल टेक अ लीव एंड शॉर्टली सैंडी विल बी जॉइनिंग इन द कॉफी ब्रेक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, आई विल सी यू टुमारो 12 से 3।

0: मुझे पसंद है लड़का।
1: हाँ। वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना।
1: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: If you don't play Instant Kiwi, it's just another day. If you do play Instant Kiwi, you have absolutely no idea what could happen next. Instant Kiwi, you never know. Play at your local lotto store or online today. R18.
1: Right now at Guthrie Bowron. Enjoy free curtain making on thousands of quality fabrics. Take 15% off selected blinds, shutters and motorisation. Plus, get a free in-home measure and quote on us. Guthrie Bowron. Inspiration starts here. Conditions apply.
2: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. There's been a brief flurry of snow in central Wellington this afternoon. The white flakes paused work across offices in the city, including at Met Service, according to forecaster Braden White.
4: Snow flurries or sort of rain and sleet combinations outside our very own office window, and that caused a fair amount of excitement here.
3: There are snow warnings for the Demataka Hill Road, the Desert Road and the Napier Taupo Road. Christchurch City Councillors have agreed to participate in local government reforms. They've voted to submit a Head Start proposal. Tomorrow they'll decide which of four amalgamation options they'll put forward. A new MB report shows almost half of consumers had a problem with a product or service in the past 2 years. But spokesperson Simon Gallagher says only 50% have a moderate or good understanding of their rights.
5: That's actually declined since 2024. So we need to build the capability of consumers to actually resolve their problems.
3: Medical radiation and imaging technologists have voted to settle their collective agreement. Around 100 PSA members will get a 2.5% pay increase and a further 2% in July next year. To rugby league with Machinery House, Matt King has officially been unveiled as the new State of Origin coach for New South Wales. It means he'll be in charge of the Blues when they play Queensland at Eden Park next year.
6: I'll get on a plane, I'll go to those clubs, like I want to be there. I feel like we haven't scratched the surface yet inside the community. I really want to grow that.
3: And 44-year-old Serena Williams looks set to make a bid for a single spot at the US Open. She's been handed a wildcard entry for next week's Cincinnati Open doubles with Sister Venus.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
7: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 13.6 डिग्रीज और आज को वो नाइट 4 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. गेस व्हाट, कल 1 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा. दिस इज द रिकॉर्ड. सनसेट आज का 5:39.
2: द बीट ऑफ बॉलीवुड.
8: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
7: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. यस, वेदर के हाल मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर कर रही थी. 4 डिग्रीज तो आज रात का टेम्परेचर रहने वाला है, बट एज लो एज इट कैन गो टू 2 डिग्रीज, लाइक 3 डिग्रीज ऐसा जा सकता है. कल की प्रेडिक्शन है कि कल 1 डिग्रीज एंड थर्सडे को भी 1 डिग्रीज. एंड ऑलरेडी वेदर को रिलेटेड वार्निंग्स आ चुकी है. थर्सडे मॉर्निंग जो है वन ऑफ द कोल्डेस्ट मॉर्निंग ऑफ दिस ईयर 2026 रहने वाली है. सो ऐसा टेम्परेचर देख के अभी ऐसा लग ही रहा है कि ऐसा ही होने वाला है. सो मेक श्योर यू कीप योर सेल्फ वार्म, स्पेशली इफ़ यू हैव पेट्स इन द हाउस. अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनका ध्यान रखना ना भूलेगा, बिकॉज उनको तो घूमना होता है बाहर, जाना होता है उनको बाहर. सो हाय कीर्तन, कैसे हो तुम?
9: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए.
7: बढ़िया बढ़िया. मैं यू नो ये बात कर रही थी पेट्स को लेके. सो क्या होता है कि मेरे घर पे भी जो पेट है वो ऐसा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि बारिश हो रही है या क्या हो रहा है. अगर उसको निकलना है बाहर तो वो ऐसा निकल जाता है, बिकॉज अभी वो उस पपी स्टेज पे है ना. स्टिल पपी स्टेज पे है वो.
9: हाँ.
7: तो इसलिए मेरे को लगता है कि पेट्स को लेके भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है. ये मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई है. जस्ट लाइक टेकिंग केयर ऑफ किड्स.
9: ट्रू. अभी हाल फिलहाल तो मैं ही पेट बना हूं.
7: वही ना, तुमसे इजीली शेयर करनी है, बिकॉज़ यू गॉट अ किड. लेकिन अभी वो किड बहुत छोटा है. अभी इट्स
9: मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अभी मैं जिस सिचुएशन में हूं, आई थिंक आपके केस में ये है कि एटलीस्ट आपका जो पेट है. क्या हुआ?
7: नहीं बोलो बोलो.
9: आपका जो पेट है एटलीस्ट नाउ ही कैन अंडरस्टैंड यू.
7: आपको
9: पता होगा, बट इंसान का जो बच्चा होता है ना वो सबसे स्लो ग्रो करता है. कंपेयर टू ऑल अदर यू नो ह्यूमन.
7: कुछ तो ग्रो ही नहीं करते.
9: फिर आप पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हो.
7: नॉर्मली बोल रही थी, वैसे जोक मारा मैंने यार.
9: नहीं नहीं सही है, ये जोक पता नहीं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पड़ते हैं. एनीवेज सो बेसिकली मेरे केस में ये है कि ऑब्वियसली मैं एक तो पहली बात तो है कि मैं उसका खेल रहा हूँ, वो भी मेरे साथ खेल रहा है, बट ही डजंट नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक एंड आई डजंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू टॉक. बट यहाँ पे मेरे को लगता है कि मॉम जो है काफी रिलेट कर पाएगी. फादर के केस में थोड़ा सा होता है डाइसी, बट आई थिंक मॉम के केस में मॉम कैन इजिली प्रिडिक्ट. सो अगर कोई मॉम है यहाँ पे तो वो शायद अच्छे से आंसर दे सकती है इसका
7: कि बच्चे को समझना,
9: क्योंकि एक तो लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर होता है बेबीज में. सेकेंड इज उनके पास एक ही चीज है, या चिल्लाना या रोना. उस रोने में ही माँ जो है वो समझ जाती है कि ये किस तरह का रोना है.
7: पर रोना डिफरेंट टाइप्स का होता है ना.
9: एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ, बट बाप के लिए मुश्किल है. भले रो तो रहा है, मुंह में बोतल डाल दो, कुछ भी होता है मुंह में बोतल डाल दो. वो बच्चा बोल रहा है मेरे को दूध नहीं चाहिए.
7: क्या पता उसने पॉटी की हो.
9: नहीं नहीं वो तो यार वो तो पता पड़ता है यार, वो तो पता पड़ता है, वो तो स्मेल से पता पड़ जाता है.
7: ओके एनीवे सो गाइस आपको कुछ शेयर करना है केतन के साथ, कोई टिप देना है आपको तो प्लीज डू गिव.
9: तो खैर खुले आम वो तो डायपर पहनता नहीं आपका पेट.
7: हाँ उसको हमने ट्रेन किया है.
9: अरे नाइस यार,
7: उसको एक जगह पे ट्रेन किया है कि भाई तूने इस जगह पे अगर दोनों टाइप दोनों चीजें नहीं की तो देखो जूते पड़ने वाले हैं.
9: नहीं तो ट्रेन कैसे किया, लाइक क्या मतलब, मेरे को जानना है.
7: उसको ऐसा जब वो बिल्कुल भी छोटा, बिकॉज हमने उसको लिया था जब वो 1.5 मंथ का था, एंड उसको तभी से हम जब उसको पता चल जाता सुसु पॉटीज को करनी है तो उसको वहीं पे एक ही स्पॉट पे लेके चलते थे. तो बहुत फास्ट लर्नर होते हैं वो, वेरी फास्ट लर्नर, तो उनको पता चल जाता है कि अब मुझे इस काम के लिए अभी इधर ही जाना है. बहुत स्मार्ट होते हैं यार पेट डॉग भी, मैंने देखा है, लाइक दे आर वेरी वेरी स्मार्ट.
9: इंसानों से भी ज्यादा.
7: हाँ मतलब कि मैं बोलूंगी कि एम्पैथेटिक भी ज्यादा होते हैं वो, क्योंकि आप कितना भी गुस्सा कर लो वो बाद में घुमा के आपके पास ही आते हैं.
9: बट वो तो डिपेंड करता है ना कि जानवर कौन सा है. अब इसकी जगह आप बिल्ली ले लो,
7: बिल्ली तो अपने मस्त हो जाती है.
9: बिल्ली तो बोलेगी मेरे को फड़क नहीं पड़ता.
7: वो बोलेगी मेरे को लीव मी अलोन,
9: डोंट डिस्टर्ब मी, मतलब इतनी शांति.
7: टोटली ऑपोजिट यार, डॉग आपके पीछे पीछे आएगा, मतलब अगर वॉशरूम जा रहे हो बाहर बैठा रहेगा.
9: मैं बताऊं क्या, डॉग इज लाइक अ मेल, उसको भाई वो पीछे पीछे मुंह मारता फिरेगा. कैट इज लाइक अ गर्ल, कैट इज लाइक अ गर्ल कि भाई तुम कि भाई
7: anyway, इसी नोट पे अभी हम गाना सुनते हैं.

3:14 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं कॉफी ब्रेक. फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड कॉफी ब्रेक में आप मैं आपको ऑल्सो शेयर करती हूँ जो आपके आसपास इवेंट्स होने वाले हैं, कैसे कुछ टिकट्स आप यहाँ पे जी सकते हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहती है. फॉर एग्जाम्पल, करण औजला जो कि आपकी सुपर सिटी में इसी मंथ आने वाले हैं, 25 अगस्त को इनका शो होने वाला है स्पार्क अरीना में. टिकट्स के लिए यू कैन गो टू hum.rover.nz, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन बुक योर टिकट्स. लेकिन अगर आप यहाँ पे टिकट जीतना चाहते हैं, आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है. यू हैव टू गो टू आवर फेसबुक पेज hum 104.2 FM, हमारा फेसबुक पेज का नाम है, वहाँ पे जाइएगा एंड वहाँ पे आपको पिन पोस्ट पे करण औजला की पोस्ट मिलेगी. कमेंट सेक्शन में टैग करो करण औजला को और एक मैसेज लिखो करण औजला के लिए. सिंपल इतना सा आपको करना है. मतलब मैसेज इस वे से लिखिएगा कि जैसे करण औजला पढ़ रहे हैं वो मैसेज, एंड यू नेवर नो, ही माइट रीड दोज मैसेजेस. सो कुछ मैसेज अगर आप देना चाहते हैं वो आप वहाँ पे जाके लिखिएगा एंड आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, जहाँ पे डबल पास आपके नाम हो सकता है. कॉफी ब्रेक विद सैंडी. उससे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछते, गुस्सा हो जाती और सब बस कर दिए सर. 80s के रेट्रो गाने.

0: most wanted.
1: Kundi ghar dao ya seedha andar aao.
2: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
3: 3:19 हो चुके हैं. थोड़ी देर पहले वैसे हम वेदर के बारे में बात कर ही रहे थे. मेट सर्विस ने बोला है कि फ्रीजिंग एयर है सदर्न ओशन में इन एंटार्क्टिका, जिसकी वजह से स्नो अबाउट 300 मीटर्स की हुई है इन द वेलिंगटन रीजन. सो फॉलिंग हुई है वेलिंगटन में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ईयर्स. सो जिसके वजह से काफ़ी ठंड जो है ये आसपास हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं फॉर द लाइक्स ऑफ वेलिंगटन. सो वहाँ पे ज़्यादा स्नो जो है वो नहीं होती है. सो काफ़ी लोग जो है जो डेली कम्यूट करते हैं दे नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ स्नो. इफ़ यू आर लिसनिंग फ्रॉम वेलिंगटन, अगर आप रोवा के ज़रिए वेलिंगटन से सुन रहे हैं एंड आपने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की है, डू पोस्ट सम पिक्चर्स यार. हम ऑकलैंड वालों को भी दिखाओ कुछ फ़ोटोज़ वेलिंगटन की, स्नोफॉल की. वैसे आपको पता है ऑकलैंड में भी स्नोफॉल हो चुकी है, कुछ साल पहले हुई थी. आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक 2012 या 2013, इन दोनों में से कोई एक साल था स्नोफॉल हुई थी ऑकलैंड में. एंड दैट वॉज आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स, क्योंकि ऑकलैंड में वैसे स्नो नहीं होती है. हेलिंग जो है वो ज़रूर होती है लेकिन लेकिन स्नोफॉल नहीं होती है. सो या ऑकलैंड में भी स्नोफॉल हो चुकी है एक टाइम पे, लेकिन उसको हुए बहुत बहुत समय हो चुका है. सो अगर आप वेलिंगटन से सुन रहे हैं एंड आपने स्नोफॉल एक्सपीरियंस की है तो हमारे सोशल मीडिया पे इसकी फ़ोटोज़ आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं.

3:28 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं कॉफी ब्रेक, आप यहाँ पे सुन रहे हैं. यू नो लिंक्डइन पे एक नया फीचर आ चुका है. सो लिंक्डइन में अगर आपकी प्रोफाइल है जहाँ पे यूजली अपनी प्रोफेशनल अपडेट्स हम करते हैं, वहाँ पे एक नया फीचर है जिसका नाम है सीम्स लाइक AI स्लॉप. ये क्या है? सो आजकल हम AI के ज़रिए, यानी कि चाहे वो ChatGPT है, चाहे वो Gemini है, Claude है, कुछ भी ऐप अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके ज़रिए कई बार हम राइटिंग में हेल्प लेते हैं. एंड स्पेसिफिकली अगर प्रोफेशनल राइटिंग के बारे में बात आती है, सो लिंक्डइन में तो ज़्यादातर प्रोफेशनल राइटिंग ही होती है. सो अगर वहाँ पे किसी ने AI की हेल्प के ज़रिए कोई पोस्ट की है तो वो साथ में वहाँ पे लिखता है कि सीम्स लाइक, लिंक्डइन में ऑटोमेटिक फीचर आता है सीम्स लाइक AI स्लॉप. सो ये एक डिटेक्शन सर्विस है जो एस्टिमेट करती है कि अगर कोई पोस्ट जो कि लॉन्ग फॉर्म एक लंबी पोस्ट है इज़ लिटरली रिटन बाय AI.

जो प्लेटफॉर्म है इसे ये बटन ऐड किया है टू लेट यूजर्स नो कि ये एक एआई क्रिएटेड पोस्ट है. ऐसा वैसे इंस्टा फेसबुक पे ऑलरेडी है. फॉर एग्जांपल अगर आप एआई से जनरेटेड इमेज डालते हैं एंड आप उसको अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर लिखा हुआ आता है कि एआई जनरेटेड इमेज या समथिंग लाइक दैट, उस वजह से वहाँ पे आता है. वेल दैट इज़ गुड थिंग ऑल्सो. अगर आप कर भी रहे हैं तो मतलब उसमें ऐसा नहीं कि कुछ बुरा है, अच्छी बात ही है, आप उसको एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं. बट इट्स जस्ट कि सोशल मीडिया पे आजकल ऊपर स्पेसिफाई होना शुरू हो चुका है कि ये किसी मतलब खुद की क्रिएटेड हुई इमेज है या फिर एआई से क्रिएटेड हुई की गई इमेज है.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
3: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
4: Bunnings Trade is here to help trade customers with 134 Trade. Get quick quotes and pricing on a wide range of supplies, plus stock inquiries, delivery updates and more. Call 0800 134 872 or jump online and we'll help you get what you need fast. Bunnings Trade.

0: 18 मिनट बाकी है 4 बजने में. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. एंड मैंने एक इवेंट देखा है, अगर आपके बच्चों को डायनासोर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो ये इवेंट पे आप एक्चुअली में उन्हें लेके जा सकते हैं. एल्बनी में हो रहा है, नॉर्थ हार्बर स्टेडियम में. इसका नाम है द अमेजिंग डायनासोर डिस्कवरी, जहाँ पे जाइंट डायनासोर डिस्प्लेज हैं, वॉकिंग डायनासोर्स भी है, फॉसिल डिगिंग है, किड्स एक्टिविटीज एंड राइड्स अराउंड डायनासोर्स भी है. सो अगर आप सर्च करते हैं द अमेजिंग डायनासोर डिस्कवरी एल्बनी, तो ये जो इवेंट हो रहा है इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी. नाउ लेट्स कम टू आवर पॉडकास्ट. हमने जो नया पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, ये तो आपके लिए मोस्ट लिसन पॉडकास्ट है. अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं, या फिर अगर आप एम्प्लॉयर हैं, आप बिजनेस चलाते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है. हमने ये जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, इसमें हमने बातें की है अबाउट एक प्रोफेशनल के साथ, हमने बातें की है अबाउट नेविगेटिंग न्यूजीलैंड वर्क लॉ, कॉन्ट्रैक्ट से लेके कंप्लायंस एंड क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पेमेंट्स के बारे में. एंड यू नो, अगर किसी को अपने काम पे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनको डर लग रहा है कि अगर वो कंप्लेन करेंगे तो यार उनकी तो जॉब ही चली जाएगी. कई बार ऐसा होता है, एक टेंशन रहती है कि यार अभी तो जॉब तो है ना, एटलीस्ट नहीं करते हैं कंप्लेन कर दी तो जॉब चले जाएगी. उस सिनेरियो में क्या होता है, ये भी इस पॉडकास्ट में बताया गया है. कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है ये भी बताई गई है. थोड़ा सा बिट मैं आपको यहाँ पर सुनाती हूँ अबाउट प्रीमियम्स के बारे में, रीजनेबल रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो होती है. ये बिट भी वैसे इसमें हमने रिकॉर्ड किया है, इसका थोड़ा सा पार्ट मैं आपको सुनाती हूँ.
1: निकाला क्योंकि इसके ऊपर मैं टोटली भूल गया या दूसरे सेक्शन में था वो मुझे बोलना. सो इसको हम प्रीमियम्स कहते हैं, और प्रीमियम्स आर न्यूजीलैंड लॉ के नीचे एम्प्लॉई को रीजनेबल रिक्रूटमेंट कॉस्ट के सिवाय ऊपर से पैसा देना ज़रूरी नहीं है.
2: व्हाट इज दैट रीजनेबल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट?
1: रीजनेबल मतलब इट इज़ वेरी वेरिएबल, बट इट इज़ नेग्लिजिबल टू व्हाट दे पे. We've heard anecdotally from $20,000 to $50,000 to $70,000 people have paid overseas to get a job token on the accredited employer work visa to come here. Once they come here, मालूम है कि वहाँ पे खेत गिरवी पड़े हैं, मकान गिरवी पड़ा है, तो भाई यहाँ पे जो काम मिलेगा जितना मिलेगा कर लो. और वो vulnerable होने की वजह से employer उसको और भी दबा सकता है. और एक चीज़ बताता हूँ कि अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उसमें 90 डे ट्रायल क्लॉज नहीं आ सकता. सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंडीशन ऑफ गेटिंग द अक्रेडिटेशन फ्रॉम इमिग्रेशन न्यूजीलैंड दैट यू कैनॉट हैव द 90 डे ट्रायल क्लॉज इन दैट पीरियड.
2: राइट.
0: और ये बात तो एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता थी, एंड आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 90 डेज ट्रायल पीरियड लिखा होता है, वो इस केस में प्रीमियम्स के केस में वो एलिजिबल नहीं होता है वो क्राइटेरिया. सो एक्चुअली में आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें राइट है आपका जब न्यूजीलैंड में आके आप काम करते हैं, वो सब कुछ इस पॉडकास्ट में आपको मिलेगा. सो इसीलिए दिस पॉडकास्ट इज मस्ट लिसन. ओवर द टाइम हमने यहाँ पे कई बार कुछ कॉल्स अटेंड की है जहाँ पे काफ़ी लिसनर्स को कुछ चीज़ें नहीं पता होती है, एंड दे फील स्केयर्ड अबाउट इट बिकॉज हर किसी को यार ओवरसीज़ में आके होता है कि सेटल हो जाए, काम है, क्यों रिस्क लेना है. लेकिन देन यहाँ पे लॉज भी ऐसे बने हैं जो आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं अगर आप सही वे से ऑनेस्ट भी रहते हैं. सो इसीलिए जस्ट लिसन टू द पॉडकास्ट फॉर योर नॉलेज. एक्चुअली में नॉलेज के लिए ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो. अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये पॉडकास्ट सुनना. सो इसमें हमने जो बातें हैं ये आपको बता दूं कि हमने अबे कोले के साथ की है, जो कि प्रिंसिपल एडवाइज़र है इन MBIE, ये एम्प्लॉयमेंट सिस्टम गाइडेंस एंड एंगेजमेंट में प्रिंसिपल एडवाइज़र है एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड में. सो इसीलिए इनके पास बहुत सारे केसेस हैं, हमारी कम्युनिटी को लेके इनके पास बहुत सारे केसेस हैं, केस स्टडीज़ इन्होंने बहुत सारी की है, जहाँ से इन्होंने बहुत सारी बातें जो है यहाँ पे आके हमारे साथ शेयर की है. एंड वो उनका रीज़न एक ही है, बिकॉज़ वो कम्युनिटी को अवेयर करवाना चाहते हैं जो भी हो रहा है उनके राइट्स के बारे में. सो अगर आपको पॉडकास्ट का डायरेक्ट लिंक चाहिए, आप ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर. ऑटो रिप्लाई में आपको अनफिल्टर्ड का लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज जस्ट गो टू रोवा एंड सर्च अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़बे, स्पॉटिफाई पे सर्च कीजिए अनफिल्टर्ड सैंडी एंड रूज़बे, टॉप पे आपको ये जो पॉडकास्ट है ये मिलेगा जिसका नाम है नेविगेटिंग न्यूजीलैंड वर्क लॉ। Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: भुलाए।
1: 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
2: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के हैं, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
3: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी मैं छोड़ आऊँ?

0: झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरकर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज काफ़ी कमाल, फील्स लाइक 13 डिग्रीज। दोपहर को थोड़ा बहुत अभी ठीक ही है वातावरण, शाम को थोड़े फ्रॉस्ट डेवलप हो सकती है ओवरनाइट काफ़ी जगहों पे। साउथ वेस्टर्लीज का साथ रहेगा। 5:39 को होगा सनसेट।

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Ooper. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
3: चार बजकर चार मिनट ऑन द 4th of August. हाई गुड आफ्टरनून, ड्राइव शो में आपका स्वागत है. हाई सैंडी.
4: गुड आफ्टरनून रुज़बे, कैसे हो?
3: मैं अभी बस
4: जी रहा हूँ.
3: जिंदा हूँ. जी नहीं रहा हूँ, जिंदा हूँ बस.
4: जिंदा हूँ यार. काफी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है. एयर न्यूजीलैंड का जो प्लेन था फोर्स्ड टू अबॉर्ट लैंडिंग इन वाइल्ड क्राइस्टचर्च वेदर.
3: इतना बुरा वेदर है अभी.
4: हाँ, वेलिंगटन में सालों बाद स्नो हुई है ना आज.
3: वेलिंगटन
4: में आफ्टर ईयर्स पहली स्नोफॉल वहाँ पे हुई है और आज और भी वहाँ पे तो स्नो होने वाली है. इसीलिए आज हम बातें कर रहे थे ना इसके बारे में कि आज ठंड बहुत है. आई वॉज टेलिंग यू कि मैं थोड़ा देर टाइम बाहर गई एंड इट वॉज वेरी वेरी कोल्ड, ठंडी हवा चल रही थी. नाउ आई नो. एंड आज तो फिर भी टेम्परेचर ठीक रहेगा, लेकिन कल 1 degree तक ओवरनाइट टेम्परेचर 1 degree से बिलो शायद से जाने वाला है.
3: ओह माय गॉड.
4: एंड थर्सडे लाइक ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है कि इट्स गोना बी द वन ऑफ द कोल्डेस्ट मॉर्निंग.
3: थर्सडे इज
4: कोल्डेस्ट मॉर्निंग. सो दिस जितनी ठंड नहीं पड़ी है ना, वो पूरी की पूरी ठंड यही हफ्ते पड़ने वाली है.
3: हमारी हालत काफी, मतलब अभी पता नहीं मुझे आवाज कैसे आ रहा है मेरा, क्योंकि मेरे को लग रहा है
4: मैं मास्क पहना हुआ है रुज़बे ने.
3: मेरा हियरिंग भी अभी कम हो गया ऐसा लग रहा है मुझे. बट मैंने ये विंटर, पूरे विंटर में बीमारी रहा हूं आपके
4: मैं
3: कारण.
4: भी मेरे कारण नहीं,
3: क्योंकि आपने मुझे फैलाया, फिर मैंने आपको फैलाया.
4: नहीं, मुझे पहले आया है, मुझे पहले किसी से कैच हुआ,
3: वही फिर वो मैंने कैच कर लिया.
4: फिर हम लोग साइकिल जो ना घूमता जा रहा है यहाँ पे, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. जैसे ठीक होते हैं, फिर कोई बीमार होते हैं, फिर वहां से बीमार होते हैं, फिर ये बीमार. इट्स अ साइकिल.
3: कैच कैच ही खेल रहे हैं हम लोग तब से.
4: या
3: वेल, आपका ये विंटर कैसा रहा? इफ यू वांट टू सम इट अप इन लाइक फ्यू वर्ड्स, 0800-004-866 इज द नंबर. आप कितनी बार बीमार हुए? मेरे को लग रहा है दिस इज द हाईएस्ट टाइम आई हैव फॉलन सिक.
4: सेम
3: द विंटर.
4: मैं इतना बीमार नहीं कभी रही थी. सो या मैसेज करके यहाँ पे बताइएगा 5599 पर. एंड मेरे को लग, मैं हमेशा ना जब भी बीमार होती थी रुज़बे, आई यूज टू अवॉइड द मेडिसिन. सो मेरा होता था कि यू नो वो जो इलेक्ट्रिस होती है या वो पानी में ले ली या समथिंग, कुछ भी ऐसे जुगाड़ जो होते हैं. बट दिस टाइम मैंने एंटीबायोटिक्स ली है.
3: मेरे को लगता थोड़ी और लो, अब नहाओ मेडिसिन में.
4: मेडिसिन में मुझे नहाने की जरूरत नहीं है, जिसे कैच हो रहा है ना उसे नहाने की जरूरत है. दैट माइट बी यू.
3: वही मुझे मेरे को लग रहा है आपके पार्ट की भी मैंने खा ली है मेडिसिन ये साल. मुझे लग रहा है अब तो ऐसा हो रहा है कि मैं पहले खा लेता हूँ मेडिसिन. अभी कल रात को खा ली मैंने, बीमार नहीं था मैं लेकिन खा ली.
4: ओके,
3: तो अब आज जाके थोड़ा सा कम बीमार हो रहा हूँ मैं.
4: या हाउ वाज योर? सो माइन तो आई विल से इन टुवर्ड्स एंटीबायोटिक विंटर.
3: ओह, एंटीबायोटिक विंटर.
4: या एंटीबायोटिक विंटर. आपका विंटर कैसा रहा है? आप भी यहाँ पे जरूर शेयर कर सकते हैं. उसके अलावा और भी बातें करेंगे यहाँ पे, कुछ और टॉपिक्स भी आपके लिए लेके आएंगे. आज है ट्यूसडे रुज़बे. इट्स अ करेक्टर गेस्ट टुडे.
3: ओह, आज आपका टर्न है ना?
4: आज मेरा टर्न है.
3: ग्रेट, लेट्स गो.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
2: सुपर से ऊपर ये शो जा रही है आपके लिए और यहाँ पे हम ढेर सारी बातें भी लेकर आएंगे। आज कैरेक्टर गेस में सैंडी का टर्न है कैरेक्टर के बारे में सोचना और फिर आपका टर्न रहेगा टू गेस कि ये किसके बारे में सोच रही है।
3: यस, और ये गेम हम 5 बजे के बाद यहाँ पे आपके साथ खेलने वाले हैं। एंड जस्ट इन केस यू नो, थोड़ी देर पहले वैसे हम बता रहे थे कि इतनी तबीयत नहीं ठीक है, रुजबे यहाँ पे जो बन के आए किस वजह से शो कर रहा है। अगर आपको चेकआउट करना है रुजबे, कहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं?
2: अभी इंस्टाग्राम पे जाके और फेसबुक पे भी हम डालेंगे ना शायद से।
3: या तो फेसबुक पे रुजबे पोस्ट ही कर रहे हैं, आप वहाँ पे भी जाके जरूर चेक कर लेना। एंड ऑल्सो ऑन इंस्टा यू कैन जॉइन अस hum_FM अगर आप सर्च करते हैं आपको हमारा इंस्टा हैंडल मिलेगा, फॉलो कीजिए वहाँ पे। हमारा जो वहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं डेली, वहाँ पे उनको भी जाके लाइक कीजिए।
2: उनको भी लाइक कीजिएगा?
3: या उसको, उन पोस्ट को भी जाके लाइक कीजिएगा। हमारा अनफिल्टर्ड का भी इंस्टा हैंडल है जिसका नाम है अनफिल्टर्ड पी डी एज इन पॉडकास्ट, तो वो भी आप जाके ज़रूर लाइक कर सकते हैं। इवेंट्स के बारे में वैसे बातें करते हैं तो यहाँ पे भजन जैम्स होने वाला है। सो भजन जैम्स जो है ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूजन होगा भजन एंड कीर्तन का, जहाँ पे रवितेश दियो अपने एक लाइव बैंड के साथ इस इवनिंग को सजाने वाले हैं डिवोशनल म्यूजिक के साथ। So this is presented by South Auckland Driving Limited and this event is curated by New Zealand Cultural Trust. And ye jo special event hai usme ye ho raha hai in the aid of Gift of Life Fiji. So 22nd August ko ye event hoga 7 PM Vedic Center mein. Ticket sirf $30 ki hai, $30 ki hai. And children under the age of 5 inki entry ekdam free hai. टिकट्स आपको eventbrite.co.nz पे जाके जरूर मिल जाएगी।
2: थोड़ी देर में आपके लिए बॉलीवुड की खबर भी लेकर आएंगे। बॉलीवुड में काफी सारे ऐसे सीरीज है और मूवीज है जिसके बारे में चर्चा करनी है हमें, तो थोड़ी देर में आपके साथ करेंगे।
1: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ।
5: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: give a fuck. You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. Arijit Singh ki awaaz mein aap sun rahe the ye gaana. 4:34 right now on the clock. And Bollywood mein dekhe to ek news saath lagi hai. Woh ye hai ki Mrunal Thakur jo hai, inhone issue ki hai legal warnings over deep fakes.
1: Oh wow.
0: Any further misuse of my identity will result in legal action. Aisa Mrunal Thakur ne kaha hai. क्योंकि अपेरेंटली कोई उनकी जो आइडेंटिटी है उसको यूज़ कर रहे हैं.
1: ओके. वैसे इसके ऊपर काफ़ी बातें भी हो रही है. डी फेक्स जो है ये इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं. एंड ऑल्सो अभी लिंक्डइन ने भी करना शुरू कर दिया ना. लिंक्डइन ने एक नया फीचर रुजबे वैसे क्या कहते हैं उसको
0: रोल आउट
1: किया है जिसका नाम है सीम्स लाइक AI स्लॉप. So, अगर किसी ने टोटली AI कई राइटिंग की है, मतलब खुद से कुछ नहीं लिखा है, टोटल AI से कॉपी पेस्ट लिखा है लिंक्डइन में, तो नीचे ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा सीम्स लाइक AI स्लॉप.
0: अरे बाप रे, बहुत लोगों के वाट लगने वाले यार ये चीज से. तो सैंडी आपका क्या होगा कालिया
1: व्हाटएवर. सो यस, ये वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा. अभी होता है फोटोज के ऊपर तो ऑलरेडी होता है
0: आजकल. वो इंस्टाग्राम पे और उस पे वीडियोस पे होता है ना, इंस्टाग्राम के वीडियोस पे AI कंटेंट
1: होता है, AI कंटेंट
0: लिख कर रहता है. जैसे ही थोड़ा बहुत AI यूज होता है तो
1: बट ठीक है ना, इट्स ओके. आई मीन कि जरूरी ऐसा नहीं है कि AI को अगर आप यूज कर रहे हो कुछ क्रिएट करने के लिए इट्स बैड. इट्स गुड ओनली अगर आप अच्छा प्रॉम्प्ट दे रहे हो कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए. इट्स रियली गुड अगर आप अच्छी चीज के लिए यूज कर रहे हैं. बट कई बार क्या होता है कि वहाँ पे मेंशन करना इनके लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सोशल मीडिया के लिए कि दे हैव टू मेंशन ओवर देयर.
0: वैसे तो अगर सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पहले जो उन्होंने टेक केयर करने चाहिए. जैसे कि बच्चों को यूज नहीं कराना चाहिए उसके लिए,
1: अंडर 16
0: अनोनिमस यूजर्स नहीं होने चाहिए. वो जो सारे यू नो झोल हो रहा है ये सब
1: वो नहीं होने चाहिए.
0: मेरे को तो लग रहा है कि ये बहुत गवर्नमेंट्स भी बहुत लेट एक्ट कर रही है सारी चीजों पे. अगर गवर्नमेंट्स यूज कर रही है सोशल मीडिया टू कम्युनिकेट, दैट मींस सोशल मीडिया हैज गॉट दैट वेटेज, राइट? यू कांट हैव एनी रैंडम पर्सन क्रिएटिंग अ फेक अकाउंट ऑन सोशल मीडिया.
1: 100%
0: दैट शुड बी कंसीडर्ड वेरी सीरियसली. सो देयर हैज टू बी न्यू लॉज इन प्लेस टू अवॉइड रैंडम अनोनिमस अकाउंट्स.
1: मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया को लेके, टेक्नोलॉजीज़ को लेके इसके ऊपर ज़्यादा बातें होनी चाहिए. जैसे अभी इलेक्शन ईयर है,
0: अभी
1: इलेक्शन ईयर में जो प्रोपेगेंडाज होते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, उस प्रोपेगेंडाज में देर शुड बी समथिंग रिलेटेड टू दीज थिंग्स एज वेल. सोशल मीडियाज़ को लेके, इन लॉज को लेके भी कुछ ना कुछ वहाँ पे होना चाहिए.
0: सुन ली आपकी बात, सुन ली भाई, क्योंकि क्रिस्टोफर लक्सन ने बोला है कि अभी उनको चाहिए कि बिजनेसेस जो है वो AI पे ज्यादा फोकस करें.
1: ओके.
0: नंबर वन फोकस फॉर बिजनेस शुड बी AI. बट उनकी खुद की गवर्नमेंट का ये है कि नहीं, ये एक सवाल है. उनकी गवर्नमेंट यूज कर रही है कि नहीं,
1: वो AI यूज कर रही है कि नहीं कर रही है. या बिकॉज AI को यूज करने के लिए काफी परमिशंस एंड काफी पॉलिसीज चेंज करने की जरूरत भी पड़ती है.
0: गवर्नेंस हैज टू बी इन प्लेस. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बट हाँ, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, क्योंकि AI जो है ये हर जगह से काफ़ी जगह मतलब यू नो टेक ओवर कर रहा है काफ़ी सारी चीज़ें.
1: और लिसनर से हम जानना चाहेंगे आज रुजबे, अगर आप AI यूज़ कर रहे हैं इन एनी फॉर्म, आप किस चीज़ के लिए AI यूज़ करते हैं? आप उसको फोटोज़ क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं? आप GPT यूज़ कर रहे हैं, Gemini यूज़ कर रहे हैं, Claude या कुछ और आप यूज़ कर रहे हैं फोटोज़ के लिए यूज़ करते हैं? आप कुछ राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं? आप अगर AI आज के दिन में यूज़ कर रहे हैं, आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं,
0: काफ़ी लोग
1: सर्च क्या है आपका,
0: सर्च करने के लिए भी यूज़ करते हैं ना काफ़ी बार,
1: वो भी हो सकता है.
0: जैसे गूगल पहले यूज़ करते थे, अब AI यूज़ कर रहे हैं काफ़ी.
1: सो बताइए यहाँ पे, या फिर अपने पर्सनल सवाल पूछने के लिए आप यूज करते हैं, काफी लोग उसके लिए भी करते हैं.
0: व्हाट इज इट दैट यू हैव यूज्ड AI फॉर लास्ट? 0800-004-866 कॉल कीजिए यहाँ पे और हमारे साथ शेयर कीजिए आप किस चीज के लिए AI यूज कर रहे हैं.
1: मैं काम के रिलेटेड तो काफी यूज करती हूँ, बट काम के रिलेटेड यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर नॉट शेयरिंग द ईमेल्स ऑन AI. बिकॉज आपके ईमेल्स अगर कॉन्फिडेंशियल है और आपके पास ही रहने चाहिए, अगर आप वो AI पे पेस्ट कर देते हैं तो वो पब्लिक है.
0: अच्छा.
1: या सो योर ईमेल हैज गॉन पब्लिक देन, वो पब्लिक डाटाबेस में अवेलेबल है इन केस दैट कंटेंट इज कॉन्फिडेंशियल. सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ओवर देयर कि आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली भी AI कैसे यूज कर रहे हैं.
0: तो ऐसा लोग कर सकते हैं क्या, मतलब कि AI पे जाएंगे और बोलेंगे लुकिंग फॉर बेस्ट कंटेंट क्रिएटर, गेट इन टच विद रुजबे पल्सेट या बेस्ट कंटेंट क्रिएटर, मैं अपने एआई पे जाके ऐसा लिख लूं?
1: तुम अपने एआई पे जाके? हाँ, तो तुम्हें तो रिजल्ट देगा ना वो?
0: नहीं नहीं, मुझे रिजल्ट नहीं, मुझे आपके रिजल्ट में चाहिए ना कि वो आए।
1: तो ट्राई करके देखो ये।
0: अच्छा,
1: ऐसा ट्राई करो, अभी तुम अपने एआई को बोलो कि फीड इन योर हिस्ट्री कि रुजबे पल्सेटिया ये है।
0: हाँ।
1: तो ऐसा बाकी, अब गाइस आप जाके सर्च करना आपको बेस्ट कंटेंट क्रिएटर इन न्यूजीलैंड कौन मिलता है।
0: मेरे को नहीं लगता मेरा दूर दूर से नाम आना चाहिए।
1: व्हाई यू सेइंग कंटेंट क्रिएटर, यू शुड बी सेइंग रेडियो अनाउंसर।
0: वो तो कंटेंट ही क्रिएट करते हैं ना हम लोग ऐसे।
1: हाँ, बट स्टिल अभी अलग भी हो गए ना कंटेंट क्रिएटर्स, नॉट एवरी कंटेंट क्रिएटर इज वर्किंग इन टीवी रेडियो या किसी इंडस्ट्री में।
0: हाँ, इसलिए कंटेंट क्रिएटर, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बोला सैंडी, मैं इसलिए कंटेंट क्रिएटर बोला। Wake up.
1: Yeah.
0: Jago, Sandy,
1: but
0: jago.
1: You need to be very specific with your name. You just say radio announcer. Kya saalon ka yaar, tumhare 10 saal hone wale hai Ruzbe.
0: Acha.
1: Yeah. Kam hai kya?
0: Nahi nahi, bahut badhiya hai bhai. Very nice. To
1: bahut ukhada hai.
0: To radio announcer likhu main.
1: Radio announcer should be your strength.
0: Okay. Cool. पैसा नहीं आता ना रेडियो अनाउंसिंग में, कंटेंट क्रिएटिंग में पैसा आता है सैंडी यार, अभी कैसे समझो मैं आपको। एनीवे, थ्रोबैक सुनते हैं, थ्रोबैक के बाद आपके लिए और भी गाने लेकर आएंगे। एंड और क्या
1: टेम्परेचर इस समय बैंकॉक में, मैं देख रही हूँ 34 degrees है।
0: बैंकॉक का क्यों देख रहे हो आप टेम्परेचर?
1: वो जस्ट टीवी पे आया था और उसे याद आया कि बाली बैंकॉक के हमारे ट्रिप के लिए सिर्फ 12 स्पॉट्स बाकी है गाइस, ओनली 12 स्पेसेस आर लेफ्ट।
0: अगर
1: so,
0: आपको भी जाना है
1: ticket.
0: 34 डिग्रीज टेम्परेचर में, यहाँ से कई दूर,
1: yeah.
0: कई किलोमीटर दूर, तो
1: वार्म टेम्परेचर स्पेशली ईस्टर के टाइम पे जब यहाँ पे ठंडी रहेगी,
0: तो आ जाइएगा हमारे साथ।
2: Drive show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepy head, sleep easy queen beds from only $7.99 on sale now.
3: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: गेस।
1: कैरेक्टर गेस में आज सैंडी ने सोचा है कैरेक्टर के बारे में, जिसके बारे में वो हमें थोड़ी हिंट्स देंगी और आपको यहाँ पे कॉल करके गेस करना है या मेरी मदद करनी है गेस करने में कि ये किस कैरेक्टर के बारे में सोच रही है। लास्ट टाइम बहुत ही मेरा बूबू हो गया था एक ही हिंट में गेस हो गया था वो। तो अभी देखते हैं सैंडी का भी आज बूबू करते हैं। प्लीज गाइस लेट्स डू इट।
2: मुझे लगता है ये जल्दी गेस हो जाएंगे बट यू नेवर नो।
1: ओके
2: सो गाइस शुरू करते हैं। आपको कॉल करना है 0800 हम पर कॉल करना है आपको।
1: अरे उससे पहले सैंडी हमने पूछा था ना कितना अकोमोडेशन पे किया आपने मतलब पर नाइट, तो एक मैसेज आया $350 per night in California last year.
2: Okay.
1: Thank you. यहाँ पे शेयर करने के लिए। Okay, back to character guess.
2: Back to character guess. So, मेरा पहला हिंट आज का ये है, this person was selected for a cricket tournament before this person became known for something else.
1: This person was selected for
2: a cricket tournament before the person became known for something else, got famous for something else.
1: ये मेरे को एक hint आ रहा है ये क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी सारे जो tournaments हैं ना ये cricket के competitions, ये अलग अलग लोगों के competitions होते हैं काफी बार, जैसे कि comedians का भी cricket का competition होता है। फिर ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं तो उसमें शायद ये सिलेक्ट हुआ होगा और फिर बाद में।
2: ओके
1: अच्छा ये एक पहला हिंट हो गया।
2: ये पहला हिंट है कि पर्सन वाज सिलेक्टेड फॉर अ क्रिकेट टूर्नामेंट बिफोर दिस पर्सन बिकेम नोन फॉर समथिंग एल्स, नोन एज इन फेमस
1: फॉर समथिंग एल्स,
2: फॉर समथिंग एल्स नॉट क्रिकेट।
1: ओह तो ये बंदा क्रिकेटर है या क्या है ये,
2: क्या पूछना चाहते हो तुम?
1: अच्छा तो मैं सवाल पूछ सकता हूँ, तो एक काम करो ना यहाँ पे कॉल करके बोलो यार कौन सा सवाल पूछे। 0800 4866 इज द नंबर, यहाँ पे आप कॉल कीजिए बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। अच्छा अंगद बेदी, अंगद बेदी हो सकता है, दैट इज राइट। हाय आपका स्वागत है।
3: हाय
1: जी।
2: यस हाय,
3: क्या ये एक पंजाबी सिंगर है?
1: कौन लग रहा है आपको ऐसा?
3: हार्डी संधू।
1: हार्डी संधू, ओ हार्डी संधू भी क्रिकेटर है ना एक्चुअली में।
3: मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ था, इंडियन टीम में कुछ ऐसा कुछ था।
2: वाओ यार
1: दैट इज गुड यार। तो क्या आपका सवाल क्या है? पंजाबी सिंगर, अपन क्या पूछे अपन?
3: हाँ मतलब सिंगर है,
1: सिंगर है या कॉमेडियन है,
3: वो एक्टर भी है,
1: एक्टर भी हो सकता है, अंगद बेदी भी हो सकता है।
2: तो क्या सवाल पूछना चाहोगे, मतलब ऐसा कुछ सवाल पूछो जहाँ से आप थोड़ा नाम और पास आ सको।
1: हाँ या और दूर जा सके। एक मिनट, आपका नाम क्या है वैसे?
3: धवल।
1: धवल थैंक्स
2: धवल, गुड वन धवल,
1: आपका भी स्वागत है। हाय
4: हेलो हेलो सैंडी।
2: हाय
4: तो मेरे को लग रहा है हार्डी संधू।
1: हार्डी संधू लग रहा है आपको भी?
4: क्योंकि ही वाज इन क्रिकेट म्यूजिक इंडस्ट्री से पहले, तो उसकी कोई एल्बम इंजरी हुई थी उसके बाद बिकेम सिंगर।
1: अच्छा और क्या क्या नाम है आपका?
4: गौरव।
1: गौरव गौरव थैंक्स या गौरव। अच्छा तो अपन सवाल पूछते हैं, मुझे लग रहा है
2: सवाल क्या होगा।
1: सवाल पूछते हैं कि ये पर्सन जो नोन फॉर हुए, वाज ही नोन फॉर, लेट्स डू वन थिंग, आई एम गोइंग टू कीप इट अ लिटिल ब्रॉड राइट नाउ, वाज दिस पर्सन नोन फॉर सिंगिंग और एक्टिंग?
2: तो मतलब और एक्टिंग तुमने बोला, सिंगिंग और एक्टिंग ऐसा बोला तुमने,
1: और इंग्लिश वाला और।
2: यस
1: नोन फॉर सिंगिंग और एक्टिंग
2: और या
1: हाँ वही ना, मतलब सिंगिंग या फिर एक्टिंग दोनों में से कोई एक। ठीक है
2: या
1: तो अभी देखो अभी आपने ये यस बोला है आपने
2: या
1: ठीक है, एक और हिंट हो जाए फिर अभी मजा आ रहा है। अभी I'm back. I'm feeling
2: now is like he, अभी पता चलता है। ओके ये जो पर्सन है इनके करियर में, ओके आई हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ।
1: एक और सवाल पूछूं क्या मैं?
2: पूछो चलो
1: कि ये पर्सन का नाम अब तक मेंशन हुआ है कि नहीं
2: हमारे मैसेजेस में?
1: नहीं नहीं मैं नहीं बोल रहा,
2: ये पूछना है क्या?
1: हाँ अच्छा ठीक है, हिंट दे दो ना, हिंट दे दो।
2: ओके सो मेरा नेक्स्ट हिंट ये है कि इस पर्सन के जो मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंसेस हैं उसमें कन्वर्सेशंस है रादर देन एक्शन।
1: कन्वर्सेशंस है रादर देन एक्शन,
2: या द मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंसेस ऑफ दिस पर्सन इन्वॉल्व कन्वर्सेशंस रादर देन एक्शन।
1: अच्छा मतलब एक्टिंग नहीं, इंटरव्यूज अच्छे करते हैं ये।
2: वो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या इंटरप्रेट करना है।
1: अच्छा ओके तो गाइस जो भी हमें बोल रहा था हार्डी संधू,
2: मोस्ट पावरफुल
1: हार्डी संधू तो नहीं लग रहा है ये, क्योंकि हार्डी संधू का तो गाना गाता है ना, उसका इंटरव्यू अच्छा है क्या? कन्वर्सेशंस,
2: द मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंसेस इन्वॉल्व कन्वर्सेशंस रादर देन एक्शन।
1: अच्छा तो कोई कॉल करो यार यहाँ पे, बताओ हमें क्या लग रहा है आपको कौन है। अभी मैं फिर से थोड़ा इसमें आ गया, कंफ्यूजन में आ गया।
2: सी तुमने एक कैटेगरी तो पकड़ ली, ये किस कैटेगरी में ये हो सकते हैं?
1: सिंगिंग और एक्टिंग में,
2: या
1: और ये क्रिकेटर भी है?
2: एंड मैंने ये नहीं बोला,
1: बट आपने बोला ना क्रिकेट ने में नाम
2: आने से सिलेक्टेड फॉर अ क्रिकेट टूर्नामेंट बिफोर दिस पर्सन बिकेम नोन फॉर समथिंग एल्स।
1: तो क्रिकेट छोड़ दिया फिर उसने,
2: ये सवाल है तुम्हारा?
1: नहीं मैं
2: But that's obvious ना?
1: अच्छा obvious ही है ना?
2: Yeah.
1: तो बताओ यार क्या लगता है आपको? Who is this person? What do you think?
2: दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहोगे या फिर एक और हिंट दूँ?
1: अभी दो
2: हिंट
1: हुए ना?
2: Do you want third hint?
1: Third hint भी दे दो चलो।
2: Okay चलो third hint मेरा ये है कि इस person के करियर में, this person career includes Shakespeare, history, animal and kids.
1: क्या है क्या क्या क्या?
2: The career of this person, जो इनकी performances है, include Shakespeare, animal, history, kids.
1: अच्छा
2: या
1: ये तो full toss जा रहा है भाई, ये क्या हो रहा है?
2: क्योंकि वो नाम, हाँ ये जो पर्सन है इनके करियर में शेक्सपियर, इनकी परफॉर्मेंसेस में शेक्सपियर, एनिमल, हिस्ट्री, किड्स।
1: शेक्सपियर, एनिमल, हिस्ट्री, किड्स,
2: या जो मैंने बोला ना पावरफुल परफॉर्मेंसेस इन्वॉल्व्ड कन्वर्सेशंस रादर देन एक्शंस। सो द पावरफुल जो परफॉर्मेंसेस हैं इंक्लूड, the career include Shakespeare, animal, history, like not exactly उनके ऊपर ही, मतलब समझ गए ना?
1: नहीं नहीं समझा ना, अगर समझ गया
2: ना
1: समझा रहे
2: उसके अंदर गहराई में जाओ, अभी ये हिंट है।
1: अच्छा ओके भाई मेरी गहराई,
2: you have to think a bit।
1: आज मैं शैलो में हूँ, आप कोई गहरा अगर जा सकता है तो 0800-004-866 प्लीज कॉल करें, मदद करें,
2: सवाल पूछिए गाइस। तुमने एक ही सवाल पूछा ना अभी तक रुजबे,
1: वो एक सवाल में फुल टॉस हो गया मेरे को अभी यार। तो ये पर्सन ने
2: उसका जवाब तुम्हें हाँ मिला है ना?
1: इसकी कॉमेडी और कॉमेडी नहीं सॉरी सिंगिंग और एक्टिंग में हो सकता
2: हाँ,
1: है।
2: तो एक और सवाल पूछो अभी, नाउ इट्स टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन।
1: अच्छा
2: क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा? नो या नो आ जाएगा ना आंसर का, इट इज ओके क्वेश्चन का या
1: कोई सवाल का भी, कोई अगर किसी के पास है आइडिया तो बताओ यार 0800-004-866। अभी तक हमें क्या क्या पता है मैं बताता हूँ आपको, हमें पता है कि ये पर्सन वॉज नोन फॉर, वॉज सिलेक्टेड इन क्रिकेट बिफोर क्रिकेट टीम, कोई तो भी एक क्रिकेट
2: फॉर अ क्रिकेट टूर्नामेंट,
1: कोई क्रिकेट टूर्नामेंट में ये सिलेक्ट हुए थे बिफोर ये वो बने नोन हुए फॉर सिंगिंग या एक्टिंग, बट फिर उनके कॉन्वर्जेशन आर मोर पावरफुल देन हिज एक्शंस।
2: मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंसेस इन्वॉल्व कन्वर्सेशंस रादर देन एक्शंस।
1: मोस्ट पावरफुल कन्वर्सेशंस
2: इन्वॉल्व कन्वर्सेशंस रादर देन एक्शन। इनके करियर पावरफुल परफॉर्मेंसेस में, इनके करियर में इंक्लूड्स शेक्सपियर, एनिमल, हिस्ट्री,
1: ये वाला फुल टॉस है, ये फुल टॉस हो गया मेरे लिए। हाय, आपका स्वागत है। हेलो,
0: हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आप क्या हाल है?
2: बढ़िया।
1: अभी आपको पता ही हाल क्या है, काफी बेहाल है अभी तो। बताइए क्या लग रहा है आपको?
0: मुझे तो ऐसे लग रहा है। अच्छा, एक सवाल है कि इनकी अभी एज नियर बाय क्या है?
1: अभी एज क्या है इनकी, ये पूछे थे क्या?
0: हाँ जी।
1: क्या लगता है आपको, क्या रेंज होगी एज की? क्योंकि अपने को रेंज पूछना पड़ेगा और वो हाँ या ना बताएगी।
0: नियर बाय 65।
1: ऐसा बोलते हो क्या? एक रेंज करे, 50 to 70 रखे रेंज।
0: अच्छा, ओके, 60 to 70।
1: 50 to 70 रखते हैं ना, थोड़ा वाइड नहीं?
0: ओके, चलो एज यू लाइक।
1: चलो 60 to 70 पकड़ते तो।
0: ओके,
1: अगर हाँ बोला तो कौन मन में शॉर्टलिस्ट हो रहा है, अगर ना बोला तो कौन शॉर्टलिस्ट हो रहा है?
0: हाँ वाला तो है, ना वाला तो पता नहीं।
1: अच्छा,
2: हाँ वाले में कौन है आपके जहन में?
0: पंजाब से है मुझे लगता है।
2: कौन
1: कौन कौन आप बोल सकते हो?
2: नाम ले सकते हो,
1: वो okay. बदल नहीं सकती।
0: अच्छा, नाम लिखता था वो, क्या कहते हैं, योगराज सिंह।
2: अच्छा, योगराज, वो युवराज के डैड।
1: बट योगराज सिंह को क्रिकेट टीम में थोड़ी सिलेक्ट किया था, वो तो हॉकी खेलते थे ना?
0: नहीं नहीं, क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला है।
1: क्रिकेट भी खेला है उन्होंने, लेकिन और किसके लिए लोन है वो? कॉन्वर्सेशंस देन एक्शंस। नहीं यार, कोच करते हैं वो भी यार, कोचिंग भी उनका ऐसा, ये तो गलत बोल देगी अगर सैनी ने ऐसा बोला तो।
0: कोचिंग भी करते हैं वो, पहले एक्टिंग भी करते थे, आजकल वो एक्शन से ज्यादा उनकी स्पीचेस फेमस होती हैं।
1: वाह, वो तो है,
2: वो तो फॉरएवर था ना।
1: बट फिर वो इसने एक और बोला ना, एनिमल और हिस्ट्री और ये
2: शेक्सपियर, आप इसके साथ रिलेट कर पा रहे हो? शेक्सपियर, दीस वर्ड्स, शेक्सपियर, एनिमल, हिस्ट्री, किड्स से भी। चलो मैं किड्स की जगह मैं क्लासरूम बोल देती हूँ। चलो
0: ना, पहले क्या पता सब कुछ करते
2: हैं।
1: ये कोई एक्टर है जिसने ना क्लासरूम वाला रोल भी किया है शायद, एनिमल के साथ वाला कोई रोल किया होगा। तो अभी मेरे को लगता है कि हमने उसको बॉटम डाउन करना चाहिए। वो कौन है? अंगद बेदी। अंगद बेदी ने विलियम शेक्सपियर का कोई प्ले या रोल वोल कुछ किया है क्या, ऐसा कोई मूवी?
0: जी, उसने हॉलीवुड में काम।
1: अरे कबीर बेदी के किधर चले गए, अंगद बेदी की बात हो रही क्या? अरे
2: इज थिंकिंग आउट लाउड रुज़वे।
1: अरे सही है,
2: इट्स ओके,
0: बात सुनते हैं, कोई आईडी करें।
1: एक मिनट होल्ड करना, आपका आवाज कट रहा है। एक मिनट, आपका भी स्वागत है। हाय
5: Hi, I just wanted to ask before I say the name, is his any of the movie went for Oscar?
1: कौन लग रहा है आपको ऐसा?
5: Because the person I'm thinking of, उसकी one of the movie went for Oscar nominee.
1: Yeah, कौन सा, कौन सोच रहे हो, बोलो ना।
5: आमिर खान।
1: आमिर खान, वो क्रिकेट में सिलेक्ट हुआ था?
2: हो सकता है किसी के लेस नोन फैक्ट्स हर किसी को नहीं पता हो ना।
1: शेक्सपियर या फिर ऐसा कुछ, या वो सब किया है उसने? क्लासरूम भी किया है।
2: इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई विल से।
1: अच्छा, तो क्या बोल रहे थे आप, ऑस्कर में गया क्या इसका मूवी, ये पूछा?
5: नॉमिनेट हुआ
1: ऑस्कर में कभी इनका कुछ भी रिलेटेड नॉमिनेट हुआ है क्या?
2: इनके रिलेटेड कुछ भी ऑस्कर में नॉमिनेट? हाँ, यस हुआ है।
1: हुआ है?
2: यस yes.
1: क्या भारी पकड़े हो आप यार, क्या नाम है आपका?
5: लुबना।
1: वेरी नाइस यार, तो ऑस्कर में नॉमिनेट हो गया, तो अभी क्या आमिर खान नहीं है?
5: मेरा तो नाम यही है, बट आई डोंट नो इफ ही इज द राइट पर्सन।
1: मेरे को भी नहीं लगता है यार, कुछ और बॉटम डाउन करना पड़ेगा। इनको पूछते, तीन शादियां हुई है क्या इनकी?
2: But you got a very good answer actually.
1: Very good यार, ऑस्कर में nomination भी है। चलो, thank you लुबना, thanks so much यार। अभी हम थोड़ा ना important messages सुनते हैं।
2: इसको narrow down करो सारे hints को, and then we get into the messages।
1: आप कोई बोल रहे हैं लुबना, please narrow down करो hint को, सोचो यार, मेरा आज नहीं चल रहा है दिमाग, आज भी नहीं चल रहा है दिमाग, ठीक है?
5: आज भी नहीं।
6: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी।
7: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़वी।
8: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं।
7: की दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
8: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
7: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
9: हम एक्यूरेट ट्रैफिक।
10: न्यू टेस्टी राइस बार्स एंड बाइट्स इन सुपरमार्केट्स।
11: मनी क्लियर ओवरनाइट फॉर ऑकलैंड लो ऑफ 4. There's a serious two vehicle crash blocking Lagoon Drive Bridge in Panmure, so avoid that area. The northern Tiri Spaghetti Junction to Northcote Road, the northwestern slow from Newton Road to just past Roseback. The southern's heavy northbound Luke Street to Dilworth Ave and heading south Newmarket to Penrose Road. Southwestern very slow between Mangere Bridge and Puganui in both directions.
10: New Tasty Rides low carb protein bars and bites. Less carbs, better snacking.
12: At Southern Cross Pet Insurance, we know your pets are your besties. They love cheering you up when you're down, and they're always there for you, even when you much rather be left alone. So show your pet bestie some love by signing up to Southern Cross Pet Insurance with the promo code BESTIE by 31st of August, and you could win one of 25 $200 Prezi cards for you and your pet bestie to enjoy. Offer ends 31st of August. TCs and exclusions apply.
13: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
14: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
13: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए।

0: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
2: अब हमारा क्या होगा?
3: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
1: तो क्या करें?
4: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Bollywood's most wanted.
3: Gundi khadao. Ya seedha andar aao.
4: Main laau apna A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
5: बॉलीवुड मोस्ट वांटेड आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले अब मेरा सुई अटका है कि आज के जो हमारे कैरेक्टर गेस्ट में है उनके बारे में थोड़ा और जानना है और सही गेस करना है. बहुत स्ट्रेस है. हाय, आपका स्वागत है.
6: हाय, दिस इज पारुल हियर.
5: हाय पारुल.
6: हाय, आई वांटेड टू नो, इज दिस पर्सन मैरिड सेकंड टाइम?
5: कौन लग रहा है आपको ऐसा मैरिड सेकंड टाइम?
6: सैफ अली खान.
5: सैफ अली खान का लेकिन आपको क्या लग रहा है, मतलब कि वो ऑस्कर में कहाँ पे उसका नॉमिनेशन हुआ है?
6: आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विद्यू विनोद चोपड़ा की पिक्चर एंट्री हुई थी, बट आई डोंट थिंक दे वन इट.
5: एंट्री हुई थी, नॉमिनेटेड इन ऑस्कर.
6: माय आंसर इज
5: कौन सी मूवी हुई थी विधु विनोद चोपड़ा की? परिणीता?
6: नहीं नहीं नहीं, एकलव्य.
5: अच्छा,
7: वेरी इंटरेस्टिंग.
5: तो सैफ अली खान का बोल रहे हो कि शायद वो क्रिकेट में भी, क्योंकि हो सकता है क्योंकि उनके डैड पटौड़ी खान, टाइगर पटौड़ी.
6: एंड दूसरा सैंडी सेड शेक्सपियर, तो विशाल
5: अच्छा, दोनों करीना से रिलेटेड, मतलब ऐसा.
7: क्या आपका सवाल है कि करीना कपूर इज द कॉमन फैक्ट?
6: या
5: अच्छा, कोई बोल रहा है कि आस्क इफ इंडियन और कीवी, क्योंकि कीवी में भी है रसल क्रो. अच्छा, तो इनको क्या सवाल पूछे आपके हिसाब से? पारुल सैंडी को क्या पूछे हम?
7: सो फार आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो एक बार तुम नैरो डाउन करोगे?
5: देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑस्कर में नॉमिनेटेड बोला है ना आपने सैंडी, नॉमिनेटेड इन ऑस्कर. ठीक है,
6: ओके, नॉमिनेटेड
5: इन ऑस्कर है. सेकंड है लिंक टू ऑस्कर नॉमिनेशन. फिर है कि इन्होंने अपने कॉन्वर्जेशंस इनके ज्यादा, अरे अपन वो बात भूल रहे यार, conversations are more powerful than actions.
6: Yeah, because generally they are character artists, ye do. So, are they linked to Bollywood?
5: Bollywood ही लग रहा है.
7: मैंने जो अभी तक hint दिए ना, एक तो मैंने बोला था कि selected for cricket tournament, but became known for something else, ठीक है? Then I said कि most powerful performances involved conversation, most powerful performances involved conversations rather than action. इनके करियर में है, इनका करियर includes शेक्सपियर, एनिमल, हिस्ट्री एंड क्लासरूम.
6: क्योंकि शाहिद कपूर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो क्लासरूम वाली भी पिक्चर थी, देन वो पद्मावती व्हाटएवर, उसमें भी मेन कैरेक्टर नहीं था बट हिस्टोरिकल पिक्चर थी. Conversational, I mean he's a character artist. Shakespeare.
5: वो शेक्सपियर वाली मूवी की थी ना उसने, वो कौन सी, वो हैदर.

0: हैदर
1: हैदर हैदर
0: हाँ दैट इज व्हाई दैट इज व्हाई
1: गॉड ओह गॉड हाउ कैन इट बी शाहिद कपूर यार आई एम जस्ट थिंकिंग यार अगर ये शाहिद कपूर निकला
0: दी ओनली थिंग इज ये ऑस्कर का एक
1: वही ऑस्कर का अटक रहा है वही ऑस्कर का थोड़ा सा अटक रहा है यार थैंक यू पारुल यार थैंक्स फॉर योर हेल्प
2: थैंक यू पारुल ग्रेट ग्रेट स्टफ
0: थैंक यू
1: हाय आपका भी स्वागत है
3: हेलो गुड इवनिंग दिस इज सोनल हाउ आर यू
1: सोनल वेरी गुड यार हाउ आर यू
3: आई एम गुड आई एम ओनली कंफ्यूज्ड बिटवीन आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स एन एक्टर और इट कैन बी अ डायरेक्टर
2: ओके
1: ये गुड क्वेश्चन है
2: कौन है आपके जहन में
3: द मोस्ट कनेक्टेड वन लुक्स लाइक विशाल भारद्वाज
1: actually मैं को लगता है
2: by the way विशाल भारद्वाज is celebrating his birthday today
1: oh अच्छा
2: yeah
1: अरे क्या बात है
2: दो लोगों ने आज ये बोला विशाल भारद्वाज का आज ट्रेंड मेकर्स में स्पेशल भी रहने वाला है
1: तो कहीं वही तो नहीं है
2: कहीं वही तो नहीं है
1: oh my god
3: because he played cricket for under 19
1: क्या बात कर रहे हो
3: शेक्सपियर में उनका मैकबेथ ओथेलो हैमलेट में मकबूल था ओमकारा था हैदर था
1: या
3: उन्होंने
1: ऑस्कर का मेरे को बस समझ में नहीं आ रहा
3: मूवी नहीं है ना क्योंकि रिसेंटली ही वाज इनवाइटेड टू जॉइन द एकेडमी ऑफ दोस मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस तो
2: नॉलेज बॉलीवुड को लेकर काम कर
1: नहीं विशाल भारद्वाज को लेकर बहुत है भाई कोई खास है क्या विशाल भारद्वाज
3: No, not really, but I can just correlate and but I was confused between the actor and the director, so yeah.
1: तो चलो वही पूछते फिर. Is this person an actor or director? Sorry, director पूछते ना director.
2: तो तुम्हारा सवाल क्या है कि ये person actor है कि director?
1: Is this person क्या पूछे यार? आपका नाम क्या वैसे?
2: क्योंकि तुमने पहले सवाल क्या पूछा था? Is this person a सिंगर और एक्टर?
1: हाँ, actually मैं point है. तो ये एक्टर ही होंगे ना?
2: Yeah. So you have to be like careful.
1: हाँ वो ही है actually.
2: बचा लिया तुम्हारा एक सवाल.
1: बचा लिया. Thanks यार सैंडी. See I'm struggling. So ये एक एक्टर है. फिर मतलब सिंगर और एक्टर में उसने हाँ बोल तो विशाल भारद्वाज नहीं हो सकता है. This is a hint.
3: All right, no, not a problem, guys.
2: But you, thanks, yeah, you were very close. Thank you so much, Sonal.
1: Hi, आपका भी स्वागत है.
4: क्या हाल है, guys? This is Ankit Sethi.
1: अंकित सेठी बेनाम्स
4: हाँ मेरे भाई कैसे हो ऑल
1: वेल अभी यार थोड़ी वाट लगी पड़ी है यार मदद कर लो
4: मैं का ट्राई कर लेते हो सकता है शायद आपकी हेल्प हो जाए
2: व्हाई नॉट
1: क्या क्या
4: वो जो मुझे लग रहा है वो एक्टर अब हमारे बीच में नहीं है
1: अच्छा
4: एंड एम आई राइट
2: ये सवाल है आपका
1: ये सवाल पूछ सकते हैं हम लोग के लिविंग है कि
4: बट मैं गेस भी करना चाहूंगा
1: अच्छा गेस क्या क्या गेस कर रहे हो
2: कौन है आपके माइंड में
4: इरफान खान
1: क्यों ऐसा लग रहा है आपको इरफान खान क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं इरफान खान बट व्हाई
4: देखो इरफान खान की कॉन्वर्सेशन सबको पता है कितनी पॉपुलर है
1: यू आर राइट
4: नॉमिनेटेड है एनिमल लाइफ ऑफ पाई एंड जुरासिक पार्क
1: दैट्स राइट
4: एंड ऑफ कोर्स शेक्सपियर के बेस पे कोई तो मूवी करी होगी
2: इरफान खान ने तो की होगी
1: है ना मकबूल में वो थे कि नहीं थे कोई तो भी ऐसी
4: हाँ ना मकबूल में थे
1: कोई तो हाँ हाँ
4: तो टिक ऑल द बॉक्सेस एंड वो क्रिकेट में नायडू कोई टूर्नामेंट था उसमें सिलेक्ट भी हुए थे एज फार एज आई नो
1: क्या बात कर रहे हैं
2: सारे
4: आंसर्स बॉक्सेस टिक होते हैं That could be a coincidence.
1: That is very good, yaar. Very nice. Okay, तो ये पूछ ही लेते फिर हम लोग नहीं एक्चुअली मैं अभी कितने हिंट बाकी है Sandy,
2: तीन हिंट दिए ना मैंने
1: अभी तीन अंकित बहुत बढ़िया अच्छा कॉल किया यार
2: बिफोर इंटरनेशनल ऑडियंस न्यू माई फेस इंडियन टीवी ऑडियंस saw me in stories. मतलब टीवी चैनल पे ये थे पहले
1: हाँ हाँ ये टीवी पे भी आए हैं इरफान खान मुझे लग रहा है टीवी पे भी काम किया है मेरे को लगता है वही पूछते हैं अपन कि ये इज दिस पर्सन हाँ इज दिस पर्सन स्टिल अलाइव
2: नो
1: अच्छा तो एक काम करते हैं ना अभी फिर एक और हिंट ले ही लेते फिर अभी सैंडी एक और हिंट दे ही दो अभी
2: लास्ट हिंट भी दे ही देती हूँ मैम
1: हाँ
2: तो लास्ट हिंट है, हिज आईज ऑफन डिलीवर द डायलॉग बिफोर हिज वर्ड्स डिड.
1: ओके थैंक्स अंकित यार, थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू अंकित,
1: थैंक यू, वेल डन मैन, थैंक यू. मतलब वेल डन अभी मैं बोल रहा हूँ बट पता नहीं अभी, लेट्स सी, होपफुली वेल डन. तो आंसर आंसर मैं मतलब दूंगा मेरा फर्स्ट आंसर, लेकिन उससे पहले ये गाना हो जाए यार एक.

0: अरिजीत सिंह की आवाज और बहुत ही बढ़िया ये गाना, ये आवर अपन टू से ही गाना है जो 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है और हम प्लान कर रहे हैं शायद साथ में जाके देखने की,
1: हाँ, इस मूवी को देखने के लिए। एनीवे, सो जो हिंट आपको दिए थे रुजबे, क्या आंसर है?

0: थोड़ा तो हॉल बना दे।
1: वेल माहौल तो बन गया है आज, बहुत मजा आ गया। लेट्स सी, अभी फाइनल गेस करने का टाइम आ गया है क्योंकि काफी हिंट्स मिल गए हमें। बहुत आज लिटरली बहुत यू टर्न हुआ। पहले सैंडी ने कंफ्यूज किया बोल के कि इनका क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होने से पहले ये किसी और चीज के लिए नोन हो गए। फिर इनके मोस्ट पावरफुल,
2: बहुत ज्यादा
1: बहुत घुमाया, बहुत मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस जो है वो कॉन्वर्जेशंस हुए है रादर देन एक्शन। फिर उन्होंने ये भी बहुत अभी मेक सेंस करवा रहा है। फिर उन्होंने बोला कि क्या ऑस्कर रिलेटेड भी है,
2: करियर इंक्लूड्स शेक्सपियर, एनिमल, हिस्ट्री, क्लासरूम।
1: सो
2: इनकी आंखें डिलीवर करती है डायलॉग बिफोर हिज वर्ड्स।
1: या सो काफी हिंट्स मिलने के बाद इट हैज बीन वेरी क्लियर। आई वुड लाइक टू थैंक अंकित एज वेल, बट अ लॉट ऑफ यू जिन्होंने यहाँ पे कॉल किया और यू नो थोड़ा बहुत मेरे साथ ब्रेनस्टॉर्म किया, कुछ सवाल पूछे, अलग अलग टाइप के सवाल पूछे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट, रियली मीन्स अ लॉट यार, रियली। भले आपने नाम तक नहीं आया आप, लेकिन यू हैव बीन द जरिया टू गेट टू द नेम, एंड द राइट नेम आई फील इज, आई एम गोइंग टू गेस नाउ, इरफान खान।
2: यस, इरफान खान इज द राइट आंसर।
1: इरफान खान इज द राइट आंसर, वेल डन गाइस। आई थिंक
2: ही वाज एक्चुअली अ टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर एज वेल। ही वाज सिलेक्टेड फॉर सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 23 कैटेगरी में।
1: ओ वाओ,
2: या
1: लेकिन कभी कोई क्रिकेट वाला रोल नहीं किया ना इन हिज करियर, ही नेवर प्लेड अ क्रिकेटर।
2: पान सिंह तोमर का रोल किया था, एथलीट का रोल किया था उन्होंने, बट क्रिकेटर का रोल नहीं किया उन्होंने।
1: वाओ यार, वेल एनीवे, लेजेंड, डेफिनेटली अ लेजेंड,
2: 100% या बहुत सारी मूवीज में इन्होंने काम किया, एंड या हॉलीवुड मूवीज में भी इन्होंने काम किया, जो ऑस्कर की नॉमिनेशंस के लिए भी गई है वो मूवीज में भी इन्होंने काम किया। बट थैंक यू सो मच गाइस आपके आंसर्स के लिए यहां पे, आपके
1: फैबुलस जॉब यार, मतलब रियली ऐसा होता है कैरेक्टर गेस। आई वुड से कि लेट्स साइन अ पेटिशन नाउ, लेट्स डू ऑल कैरेक्टर गेसेस बाय सैंडी ओनली। गुरु रंधावा आपके लिए, दिस इज फ्रॉम हिंदी मीडियम जिसमें इरफान खान को हमने देखा था। एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन हम

0: tickets from only $7.99. On sale now.
1: Hum. Accurate traffic.
2: Robotic sculptures, digital art, and powerful new voices from China.
3: Mainly clear overnight for Auckland, a low of 4. The northern's heavy, Spaghetti Junction to Esmond Road. The northwestern slow, Mountain View Road to just past Rosebank. The southern's heavy, northbound Luke Street to Green Lane, and south from Newmarket to Sylvia Park. Serious two-vehicle crash is blocking Lagoon Drive Bridge in Panmure. Southwestern's heavy in both directions between Mangere Bridge and Puhinui.
2: Forever tomorrow, Chinese art now. Auckland Art Gallery on now.
0: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
5: Get fresh deals from the fresh food people at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, or yummy ambrosia apples, $4.79 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
6: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए e-waste हो या कोई अजीब चीज तो उसे सीधा बिन में ना डालें पता करें कि वो कहां जाना चाहिए auckland.gov.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी ऑल टुगेदर ऑकलैंड
7: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन-साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन-साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
8: TradeDepot.co.nz Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 7kg clothes dryer just $249. 9kg heat pump dryer just $499. 10kg 9-star energy rated heat pump dryer $899. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. Trade

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: आप सुन रहे ड्राइव शो ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। ट्रेंड मेकर्स में आज आपके लिए हम विशाल भारद्वाज स्पेशल आवर लेकर आने वाले, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाह रहा हूँ। जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 28 दिनों से एशियन फैमिली सर्विसेज पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज़ को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करना और उसको बढ़ावा देना। अगर आपको ये या आपकी किसी को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilyservices.nz पर विज़िट करें।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
3: ट्रेंड मेकर्स आप सुन रहे हैं ऑन द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़वे और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ लेकिन उससे पहले सैंडी गुड इवनिंग
4: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग रिज़वे यस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ट्रेंड मेकर्स में विशाल भरद्वाज जिसके बारे में हमने लास्ट आवर में बात भी की थी एंड हमारे कुछ लिसनर्स ने हमारे कैरेक्टर गेस में विशाल भरद्वाज गेस किया था दो वो वहाँ पे आंसर तो नहीं था लेकिन आज विशाल भरद्वाज का बर्थडे है वी आर सेलिब्रेटिंग हिम टुडे
3: आपने बहुत सही किया आज का कैरेक्टर कैसा सैंडी रियली लाइक वेरी प्राउड ऑफ यू या
4: थैंक यू रिज़वे यू शुड बी इंस्पायर्ड
3: या एग्जैक्टली वेरी इंस्पायर्ड मेरे को वही समझ में नहीं आता जब हम बोलते हैं ना किसी को कि वेरी प्राउड ऑफ यू हम किस हिसाब से बोल सकते हैं प्राउड ऑफ यू जब तुम खुद अगर वो करने के लायक नहीं हो
4: नहीं जरूरी नहीं होता है
3: प्राउड ऑफ समवन व्हेन यू योरसेल्फ कांट डू दैट
4: But you have done the character guess before, jo easily guess nahi
3: hue. नहीं किया ना इतने से ढंग से. नहीं, but in general, मेरे को ऐसा लगता है कि very inspirational, Sandy. I will correct myself.
4: Yeah, that's a good one.
3: And I'll make you proud someday.
4: Yeah, that's what I want
3: that
4: to hear.
3: That is what I should say.
4: Okay, so let's come back to Vishal Bhardwaj.
3: Vishal Bhardwaj, आज उनका birthday है. और जैसे ही राइटली हमारी एक लिसनर है उन्होंने यहाँ पे कॉल करके हमें शेयर किया था विशाल भारद्वाज के बारे में कि उनका नाम क्यों सामने आया क्योंकि वो भी एक ऑलराउंडर क्रिकेटर थे उत्तर प्रदेश के लिए अंडर 19 स्टेट क्रिकेट की टीम में वो सिलेक्ट हुए थे लेकिन जस्ट अ डे बिफोर मेजर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट उनका प्रैक्टिस में थंब टूट गया
4: यार जो मेरे हिंट्स थे ना इरफान खान के लिए ये भी कितना फिट होते हैं बिकॉज इनका भी फेमस टीवी ट्रैक रहा है टेलीविजन को लेके उनका जो अर्लीस्ट काम था और मोस्ट फेमस वर्क था वो इज़ कंपोजिंग द हिंदी आइकॉनिक टाइटल सॉन्ग जंगल जंगल बात चली है पता चला है हाँ इतने ही
3: ऐसा नहीं है वो ऐसा है
4: द एडवेंचर्स ऑफ
3: जंगल जंगल बात नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं
4: नहीं जो मैंने टोन में गया था वही है
3: वापस से
4: जंगल जंगल बात चली है पता चला है
3: चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है
4: दिस वन या दिस इज अ वर्क ऑफ विशाल भरद्वाज
3: यस चड्डी पहन के फूल खिला
4: हो गया इसमें
3: जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू थिंक ऑफ वो लास्ट वर्स उसका वैसा है
4: या या या
3: वही तो यार
4: द जंगल बुक एडवेंचर्स ऑफ मोगली
3: एनीवे तो इन्होंने काफी बढ़िया बढ़िया मूवीज डायरेक्ट किए मकबूल ओमकारा हैदर और ये कंपोजर भी रहे इन्होंने बढ़िया से गाने भी कंपोज किए हैं और गुलजार के साथ मिलकर इन्होंने काफी बार you know he's made a lot of songs
4: yeah.
3: ye bolte actually ke gulzar inke mentor rahe hain aur and, father figure hain inke
4: yeah so unke music jo unhone compose kiye hain wo gaane bhi sunenge jo movies inhone banayi hain jo unhone produce ki hai movies unke bare mein bhi yahan pe baatein karenge aur unke gaane bhi sunenge jisme se shuruaat karte hain omkara ke sath one of the epic movie पॉलिटिकल वेस्टर्न यूपी का जो वहाँ पे सिनेरियो दिखाया गया था मुझे नहीं लगता कि विशाल भरद्वाज से बेटर कोई दिखा सकता था ही हिमसेल्फ इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश
3: और इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने दिखाया एंड नॉट जस्ट दैट बट ऑल द कैरेक्टर्स जो उसमें उसने एक्टिंग भी की थी दे ऑल वर अमेजिंग आउटस्टैंडिंग इसमें नसरुद्दीन शाह और अरशद वारसी
4: मकबूल भी बनाई है
3: नहीं नसरुद्दीन शाह और अरशद वारसी वो कौन सी मूवी में थे यार वो दोनों भी एक मूवी में थे ना
4: हाँ वो अलग मूवी है
3: वैसी टाइप की मूवी थी लेकिन उसमें उसका भी एक गाना है अरे यार मेरे को भी याद ही नहीं आ रहा है उसका भी एक बहुत पॉपुलर हुआ था गाना But anyway, अभी
4: anyway, yeah, we start with Omkara.
3: लेकिन अटक गई अभी ना सुई वहाँ पे.
4: क्या ना कौन थे मूवी में नसीरुद्दीन?
3: नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी.
4: Are you talking about इश्किया?
3: इश्किया.
4: वो भी विशाल भरद्वाज की मूवी.
3: वो भी विशाल भरद्वाज है ना?
4: Yes.
3: No wonder there's something ringing there. Anyway, अभी सुनते हैं सुनील चौहान की आवाज़ along with अमित त्रिवेदी and this super hit track.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए यहाँ पे एक से गाने और आज विशाल भारद्वाज स्पेशल लेकर आ रहे हैं, इसलिए कमीने मूवी का ये गाना आपने सुना था. सुखविंदर सिंह ने गाया इस गाने को और बहुत ही कमाल गाना ये था.
1: Yeah, so this movie was actually a bit of atmospheric Shakespeare adaptation. पल्प फिक्शन में उन्होंने इसको अडेप्ट किया था. सो इसका जो कंसेप्ट है उस वे से उन्होंने लिया था. चार्ली जो कि स्ट्रीट स्मार्ट एम्बिशियस हसलर है, जो कि एस को सर को फ प्रोनाउंस करता है इस मूवी में, एंड गुड्डू जो कि एक स्ट्रेट लेस्ड एक एक्टिविस्ट है जो कि स्लटर करता है.
0: आप उसकी बात करो ना, क्वेंटिन टेरेंटिनो, उनका पल्प फिक्शन था, उससे ये इंस्पायर्ड है क्या?
1: उसी से ये इंस्पायर थी मूवी.
0: ओह राइट. वैसे विशाल भारद्वाज के बारे में आपको बताओ सैंडी, वो कभी फिल्म स्कूल नहीं गए यार. उनको अनएक्सपेक्टेडली ये अर्ज हुआ कि उनको डायरेक्ट करना है ड्यूरिंग अ ट्रिप टू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला इन तिरुवनंतपुरम. तो वहाँ पे जब गए तभी उनको अचानक से हुआ कि भाई मैं भी बनाएगा मूवी. एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हिम, तो उन्होंने अपनी बीवी को कब देखा पता है आपको? कब मिले वो उनको?
1: कब?
0: हिंदू कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एनुअल फंक्शन के टाइम पे, जब भी वो एक्चुअली वो सीनियर थी विशाल भारद्वाज की, एंड वहाँ पे उनका मतलब वो कॉलेज स्वीट हार्ट्स थे. एंड रेखा भारद्वाज को बाद में हमने गानों में भी सुना है, काफ़ी
1: ज़्यादा. एग्जैक्टली. इनफैक्ट इन दोनों के बारे में मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी भी पढ़ी है कि विशाल भारद्वाज रेखा भारद्वाज के बारे में, कि रेखा भारद्वाज ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ सिंगर. आई थिंक मैंने ये कहीं पर रील देखी थी, ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ सिंगर, पर उनका करियर ज़्यादा उस समय पर चल नहीं रहा था रेखा भारद्वाज का. शी टुक अ ब्रेक एंड विशाल भारद्वाज गिव हिम दैट स्पेस दैट टाइम शी नीडेड इन हर लाइफ, एंड देन उन्होंने धीरे धीरे अपने करियर को लॉन्च किया था. सो ऐसा कुछ इनकी कोई स्टोरी है दोनों की, विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग.
0: और भी बातें और भी गाने सुनाएंगे आपको आज. विशाल भारद्वाज आवर है तो उनके ही बढ़िया से गाने आपके लिए ऑन हम.
2: ट्रेंड मेकर्स मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
3: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
4: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
4: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.

0: ट्रेंडमेकर्स में आज विशाल भारद्वाज के स्पेशल गाने हम आपको सुना रहे हैं, उनके हिट गाने। इश्किया मूवी के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी, अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह इस मूवी में थे।
1: या बहुत ही अच्छी मूवी थी यार, आई लव्ड दैट मूवी एज वेल। विशाल भारद्वाज को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। विशाल भारद्वाज के बारे में अगर रुजबे बातें करते हैं तो शेक्सपियर की ट्रायोलॉजी इन्होंने की है, मकबूल मूवी 2003 में, ओमकारा 2006 एंड हैदर 2014।
0: यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सैंडी, मैंने इनके ये तीनों मूवीज नहीं देखे।
1: यू शुड वॉच मकबूल, तो इज अ क्लासिक मूवी।
0: उसमें वो था ना अपना विकी कौशल, इरफान खान की पहली मूवी है वो।
1: या
0: और विकी कौशल की पहली मूवी
1: मसान
0: वो अलग है। अच्छा
1: वो अलग है। सो ये मकबूल है, ओमकारा इज आल्सो वेरी नाइस एंड हैदर, तो लाइक
0: हैदर भी बहुत ही क्लास। 90s
1: वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर इस मूवी को बनाया गया था।
0: सो इनको एक्चुअली नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिले हैं, इनको 9 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं मल्टीपल कैटेगरीज में। इनको म्यूजिक डायरेक्शन के लिए, स्क्रीन प्ले, बेस्ट फीचर फिल्म, इन सब के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं।
1: और जो गाना अभी हम सुनने वाले हैं, ये उनका एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर काइंड ऑफ मूवी थी जिसमें हमने प्रियंका चोपड़ा को देखा था। बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रोल में हमने प्रियंका चोपड़ा को इसमें देखा था, ग्रे शेड में थोड़ा देखा था इनको। उनके 7 हस्बैंड्स, सो बेस्ड ऑन अ स्टोरी जहाँ पे एक लेडी के 7 हस्बैंड्स होते हैं एंड दे हैव देयर फेटल फेट।
0: या ये मैंने देखी है मूवी, इसमें जॉन अब्राहम था एक वन ऑफ द हस्बैंड्स।
1: या
0: दैट्स व्हाई आई हैड सीन दिस मूवी। बट एनीवे तो एंजॉय कीजिए।

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. वैसे छोड़ आए हम ये जो गाना है ये actually में from the movie Matches आप सुन रहे थे.
1: So उन्होंने ऐसा म्यूजिक कंपोजर भी काम किया जैसे कि हमने जंगल बुक के बारे में बताया बट ही हैड दिस गुलजार कनेक्शन. सो इनके साथ इन्होंने वो काम भी किया. देन माचिस मूवी ऑफ कोर्स गुलजार की मूवी है.
0: बट आपको पता है ये वो पहले विशाल भारद्वाज पहले हारमोनियम भी प्ले करते थे फॉर लोकल गजल सिंगर्स एट दिल्लीज प्रगति मैदान फूड फेस्टिवल्स. तो वो सिर्फ हारमोनियम और वो सब प्ले करते थे बिफोर ही गॉट हिज बिग ब्रेक गुलजार की माचिस में. But yeah, he's done a lot of hustle and I think that's what we read about all these, you know, most of these successful people. कि उन्होंने हमेशा ना कहीं हसल से शुरू किया है उनका करियर. कहीं ना कहीं कर कितने अपने किए हैं अभी आज तक ट्रेंड मेकर्स.
1: हाँ, हर किसी का हसल रहा है.
0: हाँ, एंड कोई और ही चीज में हसल रहा है एंड देन फिर दे हैव बीन पॉपुलर इन समथिंग एल्स.
1: मे बी क्या होता है कि जर्नी में दे फिगर आउट देयर ओन वे एज वेल.
0: या
1: कई बार ये भी होता
0: है. सो कमिंग अप नेक्स्ट इज अगेन वन ऑफ हिज कंपोजिशंस. ये भी गाना बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल गाना है.
1: हुतु तू मूवी से.
0: हुतु तू मूवी. हाँ, ये मूवी
1: व्हिच इज अ काइंड ऑफ कबड्डी. कबड्डी का ही फॉर्म होता है हुतु तू.
0: हाँ, हुतु तू. हाँ,
1: इन अ डिफरेंट स्टेट.
0: गाना बहुत हिट हुआ था ये मूवी का बट मुझे मूवी नहीं याद है बिल्कुल.
1: तबू थी इस मूवी में.
0: तबू थी. हाँ, यस यस डेफिनेटली. सो एनीवे सुनिएगा ये गाना और उसके बाद थोड़े मैसेजेस के बाद फिर आएंगे आपके साथ लेकर विशाल भारद्वाज आवर 7 बजे तक. ओनली विशाल भारद्वाज सॉन्ग्स फॉर यू.

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99. On sale now.
1: Hum. Accurate traffic.
2: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
3: And a clear overnight for Auckland. Moderate southerlies, a low of 4 degrees. It's all good on the northern at the moment. The northwestern still a bit heavy from Rosebank almost to Lincoln Road. The southern is slow northbound from Penrose Road to Green Lane and south from Dilworth Ave to Sylvia Park. Southwestern a little heavy through Mangere Bridge. And we've still got Lagoon Drive Bridge and Panmure blocked from a serious two-vehicle crash.
2: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
4: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
5: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy. And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
6: Contact supportive promo not applied. T's and C's and fees apply.
7: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
8: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
9: Filling up at Caltex is five times more rewarding today. Fuel up and earn five times your usual air points. That's a lot of rewards. Don't miss out. Today only at participating Caltex stations. Terms and conditions apply. See caltex.co.nz.
10: Let's go! 3, 2, 1.
11: Trend Makers.
12: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
13: आप सुन रहे हैं हम Bollywood's Biggest Hits और एक से गाने आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आते हैं. And Trend Makers में खास बात ये होती है कि हम आपके लिए अलग-अलग themes लेकर आते हैं.
14: एंड इस बार आज के दिन के लिए हम आपके लिए विशाल भारद्वाज स्पेशल लेके आए बिकॉज विशाल भारद्वाज इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. उनकी प्रोड्यूस की गई मूवीज़, उनकी डायरेक्ट की गई मूवीज़, उनकी मूवीज़ जहाँ पर उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया, ये गाने आपके लिए आज हम प्ले कर रहे हैं.
13: एक इंटरेस्टिंग बात विशाल भारद्वाज के बारे में, तो उन्होंने वो बनाई अपनी मकबूल विच वॉज बेसिकली मैकबेथ के ऊपर काइंड ऑफ इंस्पायर्ड. बट उन्होंने पूरा मैकबेथ पढ़ा भी नहीं था उस टाइम पे. उन्होंने सिर्फ एक सिंप्लीफाइड कंडेंस्ड वर्जन ऑफ द प्ले ये पढ़ा था और उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये जो इसका कोर है वो है एम्बिशन, गिल्ट, डाउनफॉल एंड ये अच्छे से गैंगस्टर ड्रामा में कंडेंस हो सकता है. और तब जाके फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो मकबूल बनाएंगे इवन बिफोर रीडिंग मैकबेथ कम्प्लीटली.
14: या एंड भारद्वाज के बारे में बात करते हैं तो मल्टी टाइम नेशनल फिल्म अवार्ड इनको मिल चुके हैं, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए मिला है, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म के लिए मिला है द ब्लू अम्ब्रेला, देन बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए फॉर हैदर एंड तलवार मूवी इन्होंने बनाई थी.
13: तलवार भी इन्होंने बनाई है.
14: या एंड स्पेशल ज्यूरी अवार्ड इनको मिला था ओमकारा मूवी के लिए. बट इवन फॉर वेरियस अदर अवार्ड्स, डेड इश्किया के लिए भी इनको अवार्ड मिल चुका है.
13: डेड इश्किया इज द सेकंड
14: पार्ट ऑफ इश्किया.
13: ऑलराइट,
14: वो मूवी इतनी नहीं चली जितनी इश्किया चली थी.
13: दैट्स राइट. या
14: सो डेड इश्किया वाज ओके ओके हिट.
13: Well, anyway, with that, it's time for us to say bye-bye. Thank you so much आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए. मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द. कल मिलेंगे. कल हम्प डे भी है.
14: कल हम्प डे है और या कल और टॉपिक्स भी आपके लिए लेके आएंगे, नई गेम भी लेके आएंगे.
13: ओह, नई गेम भी लेकर आएंगे. तो enjoy, have fun and see you tomorrow. Bye. Bye.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम दिल के बुरे नहीं

0: चाहे आप हमके ढिंचैक 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: गेट फ्रेश डील्स फ्रॉम द फ्रेश फूड पीपल एट न्यू वर्ल्ड नॉर्थ आइलैंड, लाइक स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट fillets $12.99 per kilo or yummy ambrosia apples $4.79 per kilo. Now that's new world value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?
3: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.

0: इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बढ़िया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में पर जिंदगी में सुकून नहीं।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
2: yeah.
1: हम
2: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए।

ये है नाइट कैफे विद अवि, और जैसे कि हमने कहा था पहले, ये उड़ान है कोक स्टूडियो का। ओ हाँ, उड़ान से याद आया, बाली इन बैंकॉक का गेटअवे जो कि सैंडी और रुस्बे आपके लिए लेकर आ रहे हैं इन मार्च 2027, एक ऐसा मौका जहां पर आप एक ही ट्रिप में दो डेस्टिनेशंस घूम सकते हैं, बाली और बैंकॉक। लगे हाथ आप दोनों जगह पर इंजॉय कर सकते हैं, खूबसूरत फोटोज खींच सकते हैं, लोकल डेलिकेसीज भी ट्राई कर सकते हैं। ये सभी कुछ चांस है आपके पास में, और समय भी है, जबकि अभी से लेकर मार्च 2027 तक आप अपना जो फाइनेंशियल प्लान से ये बना सकते हैं। तो ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस के लिए ड्राइव लिखे 5599 पर टेक्स्ट करें, और यहां से आपको पैकेज डील मिल जाएगा, और आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। याद रहे, बाली एंड बैंकॉक गेटअवे, ये आपके लिए काफ़ी एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन सकता है, जबकि सैंडी एंड रुस्बे आपका पूरा का पूरा ख्याल रखेंगे इस टूर पर।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox. Hum. Afterpay Day is about to drop, and it's set to be the biggest yet. Save up to 70% off thousands of your favorite brands when you pay in full, in-store and online. Sales start Thursday the 13th of August and end on Sunday the 16th of August. That's 4 days only. So mark your calendars and be ready to buy at the right time. Afterpay Day. Don't miss it. TCs, fees and credit checks may apply. See afterpay.com for Afterpay terms.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
1: Hum. Night Cafe on Hum.
3: आप सुन रहे हैं नाइट कैफे विद अवी, और अक्सर आपके साथ में कुछ म्यूजिकल ट्रिविया एनिकडोट्स हम शेयर करते रहते हैं, ताकि आपको भी पता रहे कि बिहाइंड द सीन्स कौन से गाने के पीछे में क्या स्टोरी है। तो 80s में आपको मालूम होगा, पता होगा कि पाकिस्तानी एक पॉप सिंगर थे, बहुत मशहूर थे। इनका नाम था हसन जहांगीर, और हसन जहांगीर एक ग्लोबल सेंसेशन बन गए थे जबकि उन्होंने कंपोज किया था और गाया था हवा हवा ए हवा, ये खुशबू लुटा दे, और ये गाना काफ़ी फेमस हुआ। और फिर इसे बॉलीवुड में भी एडेप्ट किया गया, और उसको वहाँ पर भी एक फिल्म में यूज़ किया गया। और एक फिल्म आई थी 1989 में, बिल्लू बादशाह, जहाँ पर इस गाने की म्यूज़िक को लेकर एक और एक गाना कंपोज किया और उसे गाया था खुद गोविंदा ने। और उससे ज़्यादा हैरानी आपको ये होगी सुनकर कि उस गाने को जो यूज़ किया गया था, उसको यहाँ पर जो एडेप्टेशन है, किस म्यूज़िक डायरेक्टर ने किया था? खुद जगजीत सिंह जी ने। बिल्लू बादशाह का जो म्यूज़िक है, ये कंपोज किया था, क्रेडिट हुए थे जगजीत सिंह, जो एक बहुत ही मशहूर और माने जाने कव्वाली सिंगर रहे हैं। अब तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर जो आप इस गाने की एडेप्टेशन को सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि जगजीत सिंह जैसे एक ऐसे पहुँचे हुए कलाकार जिन्होंने गज़ल की दुनिया में काफ़ी नाम बनाया है, और उन्होंने एक दौरान इस गाने को अपलिफ्ट करके बिल्लू बादशाह में भी इस्तेमाल किया।

0: to Avineet.
1: हम पर नाइट कैफे में हमारे दूसरे आवा का जो शो है ये शुरू हो चुका है और ऐसे में अभी भी आपने ट्यून इन किया है आपका खास स्वागत करते हैं वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं इसके अलावा एक और एक जरिया है जहां पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं हम के फेसबुक पेज 104.2 एफएम का जो फेसबुक पेज है यहां पर भी आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं यहां पर भी हम डालते रहते हैं और कुछ कॉम्पिटिशन्स भी है जो आपके लिए यहाँ पर प्ले हो रहे हैं तो इट्स बेनिफिशियल और काफ़ी अच्छा मौका भी रहता है आपके पास में जीतने के लिए और जबकि कंपटीशन की बात हो रही है तो इस पर और भी बातें होंगी बस थोड़ी देर में और इसी तरह से हमें सुनते रहें और हमारा साथ देते रहें

हम पर नाइट कैफे की महफिल सजाए हुए मैं हूँ अभी आपके साथ में। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसावा पर बताया था कि कैसे आप जब फेसबुक पर हमको फॉलो करते हैं तो कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो अब मौका है इसके बारे में हम आपको और बताएं, जबकि करण औजला पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लाइव लेकर आ रहे हैं ऑकलैंड में, खास आपके लिए परफॉर्म करने वाले हैं स्पा करीना ऑकलैंड में ट्यूसडे 25 अगस्त को इसी महीने, और इनको ज्वाइन करने वाले हैं नन अदर देन इकी, जो कि खुद एक धमाका करते हैं स्टेज शोज में। तो ये सभी कुछ रहेगा आपके लिए खास, और जबकि टिकट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप hum.rova.nz जा सकते हैं, livenation.co.nz जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपके पास में मौका है डबल पास जीतने के लिए। आपको सिर्फ इतना ही करना होगा, हम के फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पर करण औजला का एक पोस्ट है, उसे लाइक कीजिए, एक मैसेज लिखिए प्यारा सा करण औजला के लिए और उनको टैग करिए। बस इतना ही करके आप अपने आप को ड्रॉ में शामिल कर लेंगे, जहां पर आपके हाथ लग सकता है एक डबल पास। एज इजी एज दैट।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन
2: ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਨਾ

0: right dear.
1: Streaming on Rover.
2: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
3: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
2: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
3: पर डेवलपमेंट के पैसे
2: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
4: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI।
5: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
6: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
5: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
6: हम
5: नाइट कैफे ऑन हम।
7: जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गेमलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हमारी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विजिट करें। ये मैसेज खास आपके लिए एशियन फैमिली सर्विसेज की ओर से है।

हम पर नाइट कैफे के साथ में मैं हूँ अवि और इस मौके पर आपको कम्युनिटी न्यूज़ के बारे में कुछ बता दें। जबकि इस वीक शनिवार को 8 अगस्त को दो इवेंट है जहां पर आप जाकर भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें एक ऐसा फेस्टिवल जिसे यहां ओकलैंड में सेलिब्रेट किया जाएगा। अक्सर आप जब भारत में होते हैं तो एक बड़े पैमाने पर मानसून फेस्टिवल को आप सेलिब्रेट करते हैं और कहीं ना कहीं आपके यादों के साथ में ये जुड़ा हुआ है। लेकिन इन्हीं यादों को एक बार फिर रिवाइव करने के लिए, रिविजिट करने के लिए आपके लिए मेग उत्सव लेकर आ रहे हैं जो सेलिब्रेट किया जाएगा एट अ ग्रैंड स्केल ऑन द 8th ऑफ अगस्त एट माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल। 4:30 PM से लेकर 8:30 PM तक आप यहां पर जा सकते हैं जहां पर ढेर सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेस रहेंगे। उसके अलावा फूड स्टॉल्स भी रहेगी, बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज भी यहां पर रहेंगी और सारे उम्र के बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए ढेर सारे गेम्स और एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अलावा शॉपिंग करने का एक अलग मौका आपके पास में रहेगा। तो ये सभी कुछ आपके साथ में रहेगा मेघ उत्सव के लिए और आप जा सकते हैं जैसा कि हमने कहा है 8 अगस्त को इसी शनिवार को एट माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल 4:30 PM से लेकर 8:30 PM तक जहां पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा इसी शनिवार 8 अगस्त को कीवी फेन इन एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट अलोंग विद हम एज मीडिया पार्टनर्स लेकर आ रहे हैं रामलीला ऑन द 8th ऑफ अगस्त एट वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोई में ये रहेगा। टिकट प्राइसेस है $10 पर पर्सन। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years इनके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। अगर जो आपको टिकट्स को लेकर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मास्टर अशोक को 02117954595 पर कॉल करें।

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
2: Good evening. With the latest at 10, I'm Alexander Goldsmith. Motorists are urged to prepare for days of freezing temperatures and ice on the roads. Crews will be laying gradual anti-icing agents on South Island State Highways, and they'll also be keeping a close eye on the Napier to Taupo Road overnight. The Meat Industry Association is keen to put a record-breaking June into perspective. Red meat exports are worth about $1.4 billion for the month, but Chief Executive Nick Beebe says global volatility is still a concern.
3: Whether that be some of the geopolitical tensions or some of the tariff increases that are happening, we really need to be mindful that all these things may have an impact on the returns.
2: Consumers are being urged to brush up on their rights, with nearly half reporting product and service problems. A report from MBIE shows one in four who took action in the last 2 years couldn't reach a solution. Spokesperson Simon Gallagher says it can be chalked to a number of factors.
4: There is potentially a gap around people's understanding of all the resolution services that are available to them, including the disputes tribunal. So it's quite a cheap method.
2: And in sport, one of rugby league's sharpest minds is talking up the Warriors ahead of their clash with the Panthers on Friday. Premiership winner Cooper Cronk has told Fox Sports they can go all the way.
5: Their consistency and savage line speed defensively to Marty Martin, good. They are thereabouts. The only question mark I have is their centres defensively.
6: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Night Cafe. You're listening to Avineet.
7: हम पर मैं हूँ आपका साथी अवी और यह है नाइट कैफे। 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। इस आवा पर भी आपको एक म्यूजिकल एनिकडोट सुना देते हैं, आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। आपने अक्सर बॉलीवुड गानों में कई बार विशल सुना होगा कि एक विशल से गाना शुरू होती है या फिर बीच में कहीं ना कहीं विशल का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर अभी तक आप सोच रहे थे कि ये विशल कैसे यूज़ होता है, किस इक्विपमेंट या किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ये बजती है, तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एक एक्चुअल पर्सन है जो बॉलीवुड के गानों में काफ़ी बार इन्होंने विशल किया है अकॉर्डिंग टू द ट्यून जो इन्हें म्यूजिकल डायरेक्टर्स देते हैं। इनका नाम है नागेश सुरवे, जिन्होंने मजॉरिटी ऑफ द बॉलीवुड गानों में अपना विशल दिया है। और इनके अलावा, ये विशल के अलावा एक बहुत ही अच्छे वायलिन प्लेयर हैं, साथ में शहनाई भी खूब अच्छी तरह से बजाते हैं। तो अब की बार जब आप 90s के खासकर गानों में या फिर 80s के गानों में विशल सुने, तो आप ये समझ लेना कि इसमें चांसेस ज़्यादा है कि नागेश सुरवे ने खुद इनमें विशल किया है।

हम पर, मैं हूं अभी आपके साथ में। और अगर आपको एक ऐसी दिशा में चलना है जिस रास्ते पर सिर्फ आपको सुकून और शांति मिले, तो ये मैसेज खास आपके लिए है। जबकि चिन्मय मिशन आपको इनवाइट कर रहा है टू भागवत गीता डिकोडेड, एक मास्टर क्लास जिसे कंडक्ट करेंगे श्री ईशान चैतन्य जी। और यहाँ पर आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। फ्राइडे 7 अगस्त को ही रहेगी, इसी शुक्रवार को 7:30 PM से लेकर 9 PM तक आपको सिर्फ जाना होगा न्यूलिन कम्युनिटी सेंटर मेन हॉल 45 टोटोरा एवेन्यू न्यूलिन में। और एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको रजिस्टर होना पड़ेगा www.chinmaya.org.nz पर जाकर।

फिल्टर्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं।

0: Crispy on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
2: Kyun? Kya hua?
1: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents mange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya, no response. Fir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
3: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800 564 424.
4: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in Asia, like Japan from $675 one way, Hong Kong from $709, or Singapore from $715. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
0: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari good brands nahi hai.
0: Night Cafe.
6: हम पर यह है नाइट कैफे और आहिस्ते आहिस्ते घड़ी 11 की तरफ इशारा कर रही है और आपको बता दे लगे हाथों, आपके लिए रवितेश देव लेकर आ रहे हैं भजन जेम्स, जिनको प्रेजेंट कर रहे हैं साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड और साथ में एनजेड कल्चरल ट्रस्ट। ये जो एक इवेंट है आपके लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग और डिवोशनल है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन भजन्स को प्ले किया जाएगा विद अ लाइव बैंड, कीर्तन्स भी रहेंगे, इसके साथ में कुछ डिवोशनल म्यूजिक भी रहेगा और ये सभी कुछ आपके पास में मौका है इसमें पार्टिसिपेट करने का, विटनेस करने का। सैटरडे 22 अगस्त को 7 PM एट द वैदिक सेंटर, 32 ग्लेसगो एवेन्यू, पपटोई, ऑकलैंड में। टिकट्स है सिर्फ $30 और चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इनके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। स्नैक्स और जितने भी रिफ्रेशमेंट्स हैं यहाँ पर बेचे जाएंगे आपके लिए, और टिकट्स के लिए आप जा सकते हैं ऑनलाइन eventbrite.com, जेस फ्रेश पपटोए, वेली फ्रेश पपटोए, साथ में शिव प्रसाद इन केल्स्टन। इसके साथ में आपको ये भी बता दें कि जितने भी प्रोसीड्स रहेंगे इस इवेंट से, ये दिए जाएंगे गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी को। तो ये सभी कुछ एक मौका है बेहतरीन, अगर जो आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपना सहयोग देना चाहते हैं किसी अच्छे कार्य को, तो आप जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए भजन जेम्स लाइव, जिन्हें लेकर आ रहे हैं साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड और साथ में एनजेड कल्चरल ट्रस्ट, अलोंग विद द मेन प्रेजेंटर रवितेश देव, जो यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। 32 ग्लेसगो एवेन्यू, पपटोई, सैटरडे 22 अगस्त, 7 PM। टिकट्स $30, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर फ्री, और जैसे कि हमने कहा है जितने भी प्रोसीड्स है ये दिए जाएंगे गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी को।

0: हम पर यह है नाइट कैफे आपके लिए विद अवी, और 11 पर आपके लिए रहेगा न्यूज। लेकिन उससे पहले आपको एक और एक म्यूजिकल ट्रिविया दे दें। लता मंगेशकर जी, जो म्यूजिकल इंडस्ट्री में बॉलीवुड में काफ़ी ऊंचे पदवी पर है और आज भी है, जबकि अब ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब ये थी तो इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि ज़्यादातर गाने इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं शंकर जयकिशन और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के लिए। और इनका ये कहना था कि जब भी ये इनके लिए गाती थी तो अक्सर ये दोनों म्यूज़िक कंपोजर्स इनको छोड़ देते थे, एक फ्री हैंड देते थे कि जो गाना है ये अपने अंदाज में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि लता मंगेशकर जी अपने हरकत और तानों के साथ में उस गाने को एक अलग लेवल पर ले जा सकती हैं। तो ये सभी कुछ एक कॉन्फिडेंस हुआ करता था बिटवीन म्यूजिक कंपोजर्स एंड प्लेबैक सिंगर्स। तो अगर जो आपकी बार कोई एक गाना सुने आप जिसमें लता मंगेशकर जी ने गाया है खासकर शंकर जयकिशन के लिए या फिर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के लिए, तो आप जान लीजिएगा कि एक ऐसा म्यूजिक कंपोजर और सिंगर का जो ट्रस्ट है, उसी ट्रस्ट को लेकर आप इस गाने को सुन रहे हैं। और जो 60s और 70s के गाने हैं, याद रहे हम म्यूजिक स्टेशंस में आप हम रिवाइंड पर सुन सकते हैं।
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja।
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे।
3: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में।
4: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja,
5: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
7: Time is running out to get ready for some extra money. If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. We sent you everything you need to know by post or email. Check your details and let us know any changes by Friday, 7th August. Do it today, because if we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in September, and no one wants that. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
8: This is your business. This is your business supercharged with the help of Xero Accounting Software. This is managing cash flow. This is managing your cash flow with the help of Xero Accounting Software. These are your customers paying you. These are your customers having more ways to pay you with the help of Xero Accounting Software. This is your business supercharged with the help of Xero, helping you sort your cash flow by giving your customers more ways to pay, so now you can focus on making your business boom. Supercharge your business today with the help of Xero.
9: Search Xero with an X.
1: Hum. Time check. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good evening. With the latest at 10, I'm Alexander Goldsmith. Motorists are urged to prepare for days of freezing temperatures and ice on the roads. Crews will be laying gradual anti-icing agents on South Island State Highways, and they'll also be keeping a close eye on the Napier to Taupo Road overnight. The Meat Industry Association is keen to put a record-breaking June into perspective. Red meat exports are worth about $1.4 billion for the month, but Chief Executive Nick Beebe says global volatility is still a concern.
11: Whether that be some of the geopolitical tensions or some of the tariff increases that are happening, we really need to be mindful that all these things may have an impact on the returns.
10: Consumers are being urged to brush up on their rights, with nearly half reporting product and service problems. A report from MBIE shows 1 in 4 who took action in the last 2 years couldn't reach a solution. Spokesperson Simon Gallagher says it can be chalked to a number of factors.
12: There is potentially a gap around people's understanding of all the resolution services that are available to them, including the disputes tribunal. That's quite a cheap method.
10: And in sport, one of rugby league's sharpest minds is talking up the Warriors ahead of their clash with the Panthers on Friday. Premiership winner Cooper Cronk has told Fox Sports they can go all the way.
13: Their consistency and savage line speed defensively to Marty Martin, good. They are thereabouts. The only question mark I have is their centres defensively.
5: Sports News.
1: Brought to you by...

0: Coffee on Hum. You're listening to Avineet.
1: नाइट कैफे का आज की उड़ान का ये आखिरी आवाज है. मैं हूँ अभी आपके साथ में और 12 तक आपके साथ में ये जो सफ़र है तय करते रहेंगे और इस हवा पर भी आपके लिए ढेर सारे ऐसे ऐसे गानों को पेश करेंगे जो आपके दिल के तारों को कहीं ना कहीं छेड़ जाएं.

हम पर रवि का साथ है और आपको बता दें हम म्यूजिक स्टेशंस के बारे में, जहां हमने आपको पहले कहा था कि 60s और 70s के गाने आप वहां रोवा ऐप पर जाकर हम म्यूजिक स्टेशंस के नीचे हम रिवाइंड में सुन सकते हैं। इसके साथ में जो हम 80s जुग बॉक्स है, यहां पर 80s के मेमोरेबल गाने को स्टोर किया गया है। इसके अलावा फिजी भजन्स का भी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर 24/7 आप फ्री फिजी भजन सुन सकते हैं अपने कन्वीनियंस पर। इसके साथ साथ चर्दी कला फॉर ऑल दी पंपिंग पंजाबी हिट्स, आपके पार्टीज के लिए जो चर्दी कला है यहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिजी कीर्तन संग्रह भी है, जहाँ पर भक्ति रस कीर्तन को स्टोर किया गया है फिजी के प्रमुख कलाकारों की आवाज़ में। इसके साथ में राहत फ़तेह अली खान का जो अलग एक फैन फॉलोइंग है, उनके सूफी और कवालियों को भी यहाँ पर आपके लिए खास रखा गया है।

0: कैफे ऑन हम।
1: हम पर नाइट कैफे के साथ मैं हूं अवि और थोड़ी देर तक और आपका साथ दूंगा, लेकिन आपको बता दें न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो रहेगा 22nd और 23rd अगस्त को एट बेकन हेड स्काउट्स होल। यहां पर आप जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो फेसबुक पेज है न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का, यहाँ पर आप जाकर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं या फिर आप NZCA के प्रेसिडेंट पंकज को 02109085067 पर कॉल कर सकते हैं।

हम पर आपके साथ में हंसी मजाक होती रहती हैं, बॉलीवुड से गपशप होते रहते हैं, लेकिन कुछ सीरियस मुद्दों के भी बारे में हम आपको एंगेज करना चाहते हैं, जबकि अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट जिन्हें आप तक लेकर आते हैं सैंडी और रुजबे काफ़ी मेहनत करते हैं और इस बार ब्रेकिंग बैरियर्स एक ऐसी टॉपिक को लेकर आए हैं जहाँ पर शनील लाल ने LGBTQ को लेकर काफ़ी बातें की हैं और कैसे इनको जो तकलीफें हैं इनका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये भी कहा है कि हम एज कॉमन मैन कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो माइंडसेट है इसको बदल सकते हैं। तो ये सभी कुछ जानने के लिए आप ड्राइव लिखें और ड्राइव लिखकर 5599 पर मैसेज करें ताकि आपको ये यूज़फुल पॉडकास्ट मिल सके और आप इसे सुनकर कहीं ना कहीं कम्युनिटी में आप अपना काम कर सकें। इसके अलावा जो ब्रेकफास्ट कैचअप है, अगर जो आप द ब्रेकफास्ट शो मिस कर देते हैं तो विजय एंड पूजा ये लेकर आते हैं आपके लिए ब्रेकफास्ट कैचअप, जहाँ पर खासकर जो सोसाइटी को लेकर कुछ गंभीर बातें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जिनको ये अपने शो पर एड्रेस करते हैं। तो इन्हें सुनने के लिए ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए BF लिखें और 5599 पर आप टेक्स्ट करें।

आज के लिए हमारी तरफ से बस इतना ही। आपसे एक बार फिर कल रात को मुलाकात होगी ठीक 8 पर। लेकिन इन द मीन टाइम आप खुद का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कीप हमिंग। यही वादा किए जा रहे हैं, कल एक बार फिर एक नया एडिशन लेकर आएंगे आपके लिए नाइट कैफे पर, और इसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। लेकिन अभी के लिए जाते हैं और यही कहना चाहेंगे, डू टेक केयर, आपसे फिर मिलेंगे, बाय।

0: जेट बीच को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
3: हम

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
2: Flying.

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Budget Gandhi.
3: Night Fly.

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप. वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे.
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में.
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsoras, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
5: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
8: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
9: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEETA. North Hanvale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advisor.
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
10: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट.

0: दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
2: The Beat of Bollywood.
3: World's best, hamari good brands nahi hai.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: ओ देखो हो गया फिर खेल हो गया शुरू

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
10: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
11: क्या बनाते हैं इन कबाब के स्पेशल, Chef Alex?
10: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
11: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
10: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
11: 100% authentic and pure as mother's love.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन। Playing Bollywood's biggest hits.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Super City Auckland में आज के मौसम के लिए कहा जा रहा है कि it's going to be a fine day with little bit of evening frost. Sunrise अगले घंटे 7:15 AM पर, sunset आज का 5:40 PM पर होगा. Temperature for now is 5.5 degrees, high of 11 expected है बाद में चलकर. Overnight temperature 1 degree रहेगा आज.
0: This show with VJ and Pooja.
2: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो.
1: हेलो क्योरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. फिलहाल 11 मिनट हो रहे हैं हमारे स्टूडियोज में इस समय 6 बजकर, और मैं पूजा फाइनली आ गई हूँ आप सभी का साथ देने के लिए आज के हमारे ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा के इस जर्नी को तय करने के लिए. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM या फिर रोवा ऐप के जरिए अगर आप हमें सुन रहे हैं फिलहाल. थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए, आप सभी की कंपनी के लिए. और इस घंटे सफर की शुरुआत जबकि हम कर रहे हैं विद ब्रेकफास्ट कैचअप, तो ऑफ कोर्स कैचअप करेंगे यार, उसी के लिए तो आए हैं ना. तो खबरों में क्या कुछ हो रहा है ये सब कुछ इससे करेंगे शुरुआत, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ कि हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है, जिस देश में हम रहते हैं उस देश में क्या कुछ हो रहा है. तो ये सारी डिटेल्स तो शेयर करेंगे और ऑफकोर्स आपके फेवरेट गानों का जो सिलसिला है ये भी जारी रखेंगे. मौसम के बारे में बातें करें यार, तो बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है. एंड एवरीवन स्टार्टिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं ना, मतलब हम सबको तो एटलीस्ट मौका मिल ही जाता है कंबल तान कर सोने का, लेकिन जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं भाई विंटर के इस मौसम में, आप सभी को हैट्स ऑफ. इट इज सो कोल्ड आउट देयर, इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपना और अपनों का ख्याल रखें. चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की, और आज के सफर के साथ आप सभी का साथ जबकि बना हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन. याद रहे कि आज प्रोग्राम में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे और भी चीजें आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, एंड होपफुली उसके लिए आप सभी तैयार हैं. और बाय द वे आपको ये भी हम बता दें कि आज आपके लिए कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, और देखते हैं कि आप में से कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हुए आज के सफर का मजा जो है ये उठाते हैं. याद रहे इफ यू गॉट एनीथिंग टू से डेडिकेट, सेंड अ मैसेज, 5599 इज द नंबर टू डू सो.

0: calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: the moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
1: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: Sunny Side Up.
5: तो आज की सनी साइड अप स्टोरी जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिससे कि हमारी सुबह की शुरुआत हो विद अ वेरी ब्यूटीफुल पॉजिटिव न्यूज़ और अ पॉजिटिव यू नो अपडेट अबाउट एनीथिंग समवन हैड एवर डन, विच बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी टू शेयर. आज की स्टोरी जो है एक इनक्रेडिबली मूविंग स्टोरी है, एंड इट इज़ अबाउट समथिंग अ रियलिटी वी विड से कि आपने भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बारे में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, दैट समवन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस एंड यू नो कि ओके दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, एंड उनके साथ उस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया गया या किसी ने उनकी मदद की तो हाउ इट वेंट. सो दिस स्टोरी सेंटर्स ऑन रॉबर्ट बर्नसाइड. रॉबर्ट बर्नसाइड एक यू नो फॉर्मर प्रिंसिपल रह चुके हैं ऑफ अ स्कूल इन ओहायो इन यूएसए, जिसका नाम है लकोटा ईस्ट हाई स्कूल. और वहाँ पर उनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था लेंड्यूरिस, या फिर डेडे हाइस इनको बोला जाता था बड़ी प्यार से. सो 2024 में व्हेन हाइस वाज 16 इयर्स ओल्ड, उनको यू नो एक ऐसी रियलिटी का सामना करना पड़ा लाइफ में, जहाँ पर ही फाउंड हिमसेल्फ होमलेस. वो एक्सपीरियंस कर रहे थे होमलेसनेस एट द एज ऑफ 16, क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस उस टाइम पर उनकी लाइफ में थे विच वॉज बियॉन्ड हीज कंट्रोल. एंड बिकॉज उस वजह से उनकी माँ का जो नया एड्रेस है, इट फेल आउटसाइड स्कूल बाउंड्रीज, जिसके चलते जो स्कूल ऑफिशियल्स हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये अब्रप्ट ऑर्डर दिया कि उनके एडमिशन को विड्रॉ किया जाए, बिकॉज इट डिडंट फॉल इन द जोन. एंड रिफ्यूजिंग टू अबंडन द टीनेजर, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, यानी लकोटा ईस्ट हाई स्कूल ओहायो के जो प्रिंसिपल थे रॉबर्ट बर्नसाइड, इन्होंने अपना खुद का करियर जो है ये दांव पर रखा, और एक्टिवली ही फॉट अगेंस्ट दैट ऑर्डर, ताकि डेडे हाइस को मौका मिले कि वो अपना जो पढ़ाई है ये पूरा करे और क्लासेस अटेंड करे एट द सेम स्कूल, एट द स्कूल विच बेसिकली यू नो वाज इन अ सिचुएशन, क्योंकि इनके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था एंड इट बेसिकली वाज आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिसके चलते उनकी पढ़ाई नहीं हो सकती थी. सो द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रॉबर्ट ने ये पूरा का पूरा फैसला जो है लिया. ही फेस्ड विद एन अग्रेसिव सेंट्रल ऑफिस इन्वेस्टिगेशन, जिसके बाद चलकर ही डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट ही स्टूडेंट, और परमानेंटली उन्होंने इस लॉन्ग डेकेड्स ऑफ लॉन्ग करियर जो इन्होंने एजुकेशन इंडस्ट्री में बनाया था, एंड फाइनली ही वाज अ प्रिंसिपल, इससे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया. और फिर अपनी पत्नी से बात करते हुए, जिनका नाम इन्होंने एंजल बताया है, दे टुक अ वेरी बिग स्टेप इन लाइफ, और उन्होंने परमानेंट लीगल कस्टडी जो है इसके लिए अप्लाई किया ऑफ द 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, जिसका नाम हाइस बताया गया है. इसकी कस्टडी अप्लाई करते हुए उन्होंने उस बच्चे को, उस 16 ईयर ओल्ड को अपने घर में वेलकम किया विद द अदर 6 चिल्ड्रन. एंड इन मई 2026 लाइफ केम फुल सर्कल, जब एक बहुत ही ब्यूटिफुल मोमेंट रॉबर्ट और उनकी वाइफ एंजेला को एक्सपीरियंस करने को मिला, एंड दे सेट प्राउडली इन द स्टैंड्स, जहां पर दे वॉच्ड डेडे हाइस वॉक अक्रॉस द स्टेज, और अपना स्कूल डिप्लोमा जो है, हाई स्कूल डिप्लोमा, वो इन्होंने रिसीव किया. दैट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर रॉबर्ट एंड एंजल, जो इन्होंने अपनी कहानी के जरिए यू नो सोशल मीडिया पर शेयर किया, एंड इट वेंट वायरल. द मोमेंट जब इनकी लाइफ में डे डे जो है ये आए, तो ये एक स्कूल प्रिंसिपल थे, एंड द मोमेंट डे डे वॉक्ड अक्रॉस द स्टेज और अपना स्कूल डिप्लोमा इन्होंने लिया, इन दैट मोमेंट ही वॉज नो लॉन्गर हिज स्कूल प्रिंसिपल, ही वॉज हिज फादर. उन्होंने डेडे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लीगल कस्टडी अप्लाई की और उसको अपने बच्चे की तरह अपनी लाइफ में वेलकम करते हुए उसको एक मौका दिया लाइफ में आगे बढ़ने का. It is such a beautiful story and you come to think about, aise bahut se experiences shayad aapne kiye honge with your teachers who have stood for you, with your teachers who have fought for you and experienced a beautiful bond with a particular teacher. जो एक टीचर के बाद आपके फैमिली बन गए. एंड इफ़ दैट हैज़ बीन द केस तो यू कैन लेट मी नो अगर आपने ऐसा कुछ अपनी टीचर के साथ एक्सपीरियंस किया. बट दिस इज़ डेफिनेटली अ सनी साइड अप स्टोरी फिल्ड विद ऑल द लव एंड ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिविटी जो आपके लिए आज सुबह सुबह हम लेकर आ रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. 23 मिनट्स आफ्टर 6 फॉर नाउ वेंसडे 5th ऑफ ऑगस्ट की यह सुबह आप सभी के नाम कर रहे हैं. इट्स टाइम फॉर आज का हमारा पहला बॉलीवुड मोस्ट वॉन्टेड सॉन्ग.
2: Hollywood's most wanted.
6: Gundi khad jao. Ya seedha andar aao.
7: Main laun apna A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे आज के ग्लोबल हेडलाइंस, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है. एंड होपफुली दुनिया भर में यू नो हेडलाइंस के मामले में, खबरों के मामले में काफी चीजें जो है ये सामने आ रही है, देयर सो मच दैट्स हैपनिंग. इस पर भी अपडेट आपको हम बेशक प्रोवाइड करते हुए चलेंगे, तो आई होप यू विल बी विद अस फॉर दैट. बट ऑन द अदर हैंड, रिमाइंडिंग यू ऑल, बॉलीवुड में भी भाई बहुत सी चीजें हो रही है और यू नो बहुत सी खबरें आ रही हैं अबाउट सम अपकमिंग मूवीज जिनको काफी लुक फॉरवर्ड भी किया जा रहा है. आई थिंक आई हैव सीन अ टीजर अबाउट बिग बॉस सीजन 20 एज वेल, सो नॉट रियली श्योर कि ये मेरा इमेजिनेशन था कि मैंने सच में ऐसा कोई टीजर देखा जहाँ पर बिग बॉस सीजन 20 के लिए. आई थिंक इट्स मोर लाइक कुछ तो कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने कहा कि करण अर्जुन के जैसे यू नो कुछ तो होगा. आई थिंक जितने भी शायद लोग थे जिन्होंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया, सम गुड फाइनलिस्ट्स होंगे या सम गुड कंटेस्टेंट्स होंगे इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस जो जीत नहीं पाए, शायद उनको वापस लाया जाए एंड दे'ल गेट टू कम्पीट और समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो, आई एम जस्ट मेकिंग थिंग्स अप, लाइक हो सकता है ऐसा हो. बट ऑन द अदर हैंड, इमरान हाशमी की आवारा पन 2, इसका ट्रेलर जो है ये 6 अगस्त को रिलीज होगा, यानी कि कल, और इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. विशेष भट्ट और साथ में इमरान हाशमी जो है ये रीयूनाइट हो रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मूवी आवारापन के लिए. एंड दीज आर सम ऑफ यू नो द कोलैबोरेशंस जिसको लेकर हम भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं. एंड इमरान हाशमी आई विद से कि इनकी फिल्में तो अच्छी लगती ही हैं, पर इनकी फिल्मों के गाने जो हैं ये हम बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं. आई हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल हु हैव एंजॉयड इमरान हाशमी मूवी सॉन्ग्स, स्पेशली इन यू नो अर्ली 2000 में जो इनकी फिल्मों के गाने थे, सम ब्यूटिफुल सॉन्ग. आई थिंक जन्नत हैज़ गॉट द मोस्ट अमेजिंग एल्बम एज फार एज द सॉन्ग्स आर कंसर्न्ड. एंड आज भी जन्नत फिल्म के जो गाने हैं ये तो हर कोई गुनगुनाना शुरू कर देता है ना. सो आवारापन 2 जो है इसको लेकर भी एक्साइटमेंट उसी तरह, जिसमें इमरान हाशमी एज शिवम पंडित ये कैरेक्टर दिखने वाले हैं अलॉन्ग विद दिशा पाटनी और शबाना आजमी, सुरेंद्र विक्की, विजयांत कोहली और साथ ही साथ अनिरुद्ध रावल जो है ये भी इस फिल्म में दिखेंगे. सो मल्टी स्टार कास्ट मूवी है, बहुत से कमाल के आर्टिस्ट इसमें शामिल हैं. मिथुन जिन्होंने इस फिल्म के गाने को कंपोज किया अलॉन्ग विद जीत गांगुली, अमाल मलिक एंड अखिल सचदेवा, और देखते हैं कि इस फिल्म के गाने को भी कितना अप्रिशिएट किया जाता है. ऑफकोर्स ये आवारापन आप बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में और हम भी सुन रहे हैं मुकेश भट्ट एंड विशेष फिल्म्स आपके लिए, जबकि आवारापन 2 लेकर आ रहे हैं विच विल बी रिलीजिंग इन द सिनेमाज वर्ल्ड वाइड 14 अगस्त को. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड, 6 अगस्त को होगा ट्रेलर रिलीज और 14 अगस्त को मूवी रिलीज. देखते हैं सिनेमा घरों में इस फिल्म को कितना अप्रिशिएट किया जाता है. फिलहाल बॉलीवुड से जुड़े और भी अपडेट्स आपके लिए डेफिनेटली हम लेकर आते रहेंगे. बट ऑन द अदर हैंड, इमरान हाशमी की बातें हमने की है, तो टेल मी विच इमरान हाशमी सॉन्ग इज योर फेवरेट इमरान हाशमी सॉन्ग. आई थिंक मेरे लिए जन्नत फिल्म का गाना जरा सी जो है ये वुड बी द मोस्ट फेवरेट इमरान हाशमी सॉन्ग दैट आई एब्सोल्युटली लव लिसनिंग टू, मुझे बहुत पसंद है. बट व्हाट अबाउट यू? एंड आई थिंक मुझे अक्सर का गाना सोनिए भी अच्छा लगता है, बट आई वुड स्टिल से जन्नत का जरा सा जो गाना है ये इज माय फेवरेट इमरान हाशमी ट्रैक. नाउ यू कैन आल्सो लेट मी नो आपका फेवरेट इमरान हाशमी सॉन्ग उनके किसी भी फिल्म से, 5599 पर आप मैसेज कर सकते हैं. और अगर आप में से कितने भी लोगों का मैसेज आया, देयर इज वन पर्टिकुलर सॉन्ग विच आई वुड पिक और आज के थ्रोबैक में आपके लिए मैं प्ले करूंगी. लेकिन अगर किसी का मैसेज नहीं आया तो मैं अपना ही कोई फेवरेट गाना डाल दूंगी, ठीक है? तो 5599 पर जल्दी से अपने मैसेजेस भेजिए, योर फेवरेट इमरान हाशमी ट्रैक. और 5599 पर जब आप मैसेज कर रहे हैं अपना नाम भूलिएगा मत, जरूर लिखिएगा ताकि आपको जब हम वो गाना सुनाए आपको डेडिकेट कर सके कि अच्छा इन्होंने यहाँ से मैसेज किया है, ये प्रोग्राम सुन रहे थे और ये इनका फेवरेट इमरान हाशमी ट्रैक आज के थ्रोबैक में.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
3: Accurate traffic.
4: Monaco Toyota mid-year sale.
5: A cool one today, a high of just 12. Chilly start, should stay fine and clear all day though. Into the city, starting to slow a little bit. Southern motorway, we're slow. Takanini to Manurewa, 24 minutes Monaco to town, 42 from Drury. Northwestern, 22 minutes in from Massey. A bit of traffic at Te Aratu and slowing close to the city. Northern, 20 minutes in from Constellation. Heavy there and slow to Glenfield.
4: Big savings in store on quality used and selected demo Toyotas. Visit Monaco Toyota today.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: Hello, NZHL helps you get ahead on your mortgage without living off office snacks, Christmas shopping on Boxing Day, buying handbags on the dark web.
9: It's a very Stasi.
8: Selling your organs, DIY Botox, ignoring expiry dates. Knitting, pickling, homebrewing, live camming, dining, dashing or borrowing toilet paper from work.
9: Ah, you keep it.
8: Nope, there's a better way to have a mortgage and a life with NZHL.
10: NZHL. Flights to the Gold Coast now on sale with Qantas. Trade winter layers for sunshine, beach walks, rooftop cocktails and unforgettable family adventures. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sale ends August 14. Terms and conditions apply.
11: Here for easy dinners, game watching snacks and last minute ingredients. When you need it now, get it delivered to your door. Just download and order on the Foursquare Now app. Foursquare, what'll it be today? Select stores only.
12: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 7kg clothes dryer just $249. 9kg heat pump dryer just $499. 10kg 9-star energy rated heat pump

0: जो यूरोपियन यूनियन है इन्होंने प्लेज किया है इमरजेंसी फंडिंग ताकि वो हेल्प कर सके स्पेन को टू स्ट्रेंथन देयर बॉर्डर सिक्योरिटी और ये जो क्राइसिस है इसे मैनेज किया जा सके। अन्य खबरों में कहा गया है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है ये अब गिर चुके हैं टू देयर लोवेस्ट लेवल इन 3 वीक्स, जबकि रिपोर्ट सामने आ रही है देयर टॉक्स टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये आर मेकिंग प्रोग्रेस। ब्रेंट क्रूड जो है फेल बाय ऑलमोस्ट 5%, जबकि देयर होप्स आर राइजिंग दैट फ्यूल प्राइसेस जो है ये भी और कम होंगे अगर शिपिंग जो है इट रिटर्न्स टू नॉर्मल। भारत की खबरों में कहा गया है कई पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स जो है इनको काफी चोटें आई, जबकि एक एयर इंडिया फ्लाइट जो है फ्रॉम पिकेट टू दिल्ली ये एक सीवियर टर्बुलेंस का शिकार हुआ और अराउंड 10 पैसेंजर्स एंड 2 क्रू मेंबर्स इन्हें फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ले जाया गया आफ्टर द एयरक्राफ्ट लैंडेड सेफली इन दिल्ली, लेकिन इस टर्बुलेंस की वजह से काफी दिक्कतों का सामना जो है ये लोगों को करना पड़ा। फिजी की खबर में पुलिस एक मामले की जांच कर रही है जहां पर एक 20-year-old यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पर हमला किया गया था ऑन अ बस राइड इन सुवा। इस स्टूडेंट की फैमिली का कहना है कि ये जो असॉल्ट है इट वाज अनप्रोवोक्ड एंड दे आर एक्चुअली आस्किंग द पब्लिक कि अगर वो जो महिला जिन्होंने इस पर हमला किया उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सके। जो विक्टिम है इनको कुछ फेशियल इंजरीज आए हैं और साथ में हेड इंजरी का भी इनको ये हेड इंजरी का भी शिकार हुई है, लेकिन फिलहाल ये इससे रिकवर कर रही है और पुलिस इस मामले की जांच जो है ये कर रहे हैं। दूसरी खबरों में कहा गया है ब्लूज कोच विली वॉकर जो है एक चैंपियनशिप विनिंग ब्लूज वुमेन कोच विली वॉकर ये फिलहाल अपना क्लब छोड़ रही है आफ्टर 6 seasons टू बिकम द न्यू फिजियाना एक्स वीज हेड कोच। और विली जो है ये ब्लूज को इन्होंने लीड किया था सिंस 2021 गाइडिंग द to 3 straight Super Rugby Pookie titles और back-to-back Women's Super Rugby Championship titles जो है ये भी इन्होंने इनको जिताया था। He said कि ये Blues Women's जो है ये छोड़ रहे हैं It was a difficult decision लेकिन इन्होंने describe किया है the role that he will be playing for Fijiana XB's head coach as an opportunity जो ये turn down नहीं कर सकते थे। ये है आज सुबह के Global Headlines.
1: Let's go.
2: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
0: भाई सर्दी की वजह से बातें करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है एंड आई एम रियली सॉरी अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी फनी या वियर्ड लग रही है, बट ऑन द अदर हैंड इधर आपसे हमने सवाल किया आज आप अपना फेवरेट इमरान हाशमी ट्रैक के बारे में हमें बताइए अपने नाम के साथ एंड आई विल बी प्लेइंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग फॉर यू और आपके लिए वो गाना मैं कोशिश करूंगी आज के हमारे थ्रोबैक में लेकर आने की। ऑफकोर्स सभी रिक्वेस्ट तो हम नहीं प्ले कर पाएंगे लेकिन कोई एक गाना जो है ये आपके लिए हम जरूर प्ले करेंगे इन द थ्रोबैक। वी विल पिक वन एंड देन विल प्ले दैट वन, बट उसके लिए अपना फेवरेट इमरान हाशमी ट्रैक तो आपको बताना पड़ेगा ना। अभी अगर देखा जाए मैंने ये भी कहा कि अगर किसी का मैसेज नहीं आया आई विल जस्ट पिक वन इमरान हाशमी सॉन्ग एंड आई प्ले टुडे। इमरान हाशमी का बर्थडे नहीं है बस बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड में बॉलीवुड की खबर में आज इनकी फिल्म आवारापन 2 के बारे में बातें कर रहे थे, हमने सोचा क्यों ना आज इन्हीं का गाना जो है ये थ्रोबैक में भी हम चला दें। तो अभी तक अगर देखा जाए हमारे पास करीबन 3 मैसेजेस आए हैं। हमारी अधूरी कहानी रोनाल्ड ने ये मैसेज किया है, क्या बात है रोनाल्ड, सुबह सुबह किसी को याद कर रहे लगता है आप, बट थैंक यू आपके मैसेज के लिए। और रोनाल्ड के अलावा आज स्नेहा आपने अपना मैसेज भेजा हंसी बन गए, आई थिंक आई नो द सॉन्ग यू ट्राइंग टू से लेकिन गाने का टाइटल कुछ और है, आई ट्राई एंड रिमेंबर द टाइटल ऑफ द सॉन्ग, आई कांट रिमेंबर कि ये कौन सा गाना है बट आई थिंक आई नो कि थोड़ा अभी का गाना ये इट्स नॉट अ 20s सॉन्ग, बट थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। प्रीति आपका भी मैसेज आया है और आपने हमारे पास तुम मिले ये लिखकर भेजा है। तुम मिले में इमरान हाशमी थे क्या, आई कांट रिमेंबर 2009 में फिल्म आई थी ना, ओ यस इमरान हाशमी थे विद हु वाज दैट सोहाली खान, राइट राइट राइट, वेरी नाइस प्रीति, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो लेट्स सी क्या आप अपना फेवरेट इमरान हाशमी सॉन्ग हमारे पास भेज पाते हैं या नहीं बिफोर टाइम, ताकि थ्रोबैक में आज कौन सा गाना प्ले हो ये हम डेफिनेटली डिसाइड कर सकें। फिलहाल आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस आए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच मिस्टर माटा माटा, थैंक यू आपके गुड मॉर्निंग मैसेज के लिए। उन्होंने कहा है राम राम सभी को, हैप्पी वेंसडे, हैव अ ग्रेट डे। मिस्टर टमाटा, थैंक यू वंस अगेन आपके मैसेज के लिए. और साथ ही साथ आज हमारे पास गुड मॉर्निंग मैसेज विनीता जी ने भेजा है. गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वेंसडे आपने कहा है, थैंक यू सो मच विनीता जी. और साथ में राज ड्राइविंग फॉर आरवी प्रकाश ट्रांस.

sport, enjoying your program. Have a good day. Good morning, all. आपने कहा है. Thank you so much, Raj. आपके मैसेज के लिए. And like always, Bobby Manji, without a miss, आज आपका मैसेज भी आया है. और आपने भी कहा है, Good morning, Pooja and Vijay Ganesha's blessings. Enjoy your day. Thank you so much, Bobby ji. आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया. और enjoy your Wednesday.

0: Andy and Rizvi on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Hum, accurate traffic.
2: Kitchen Mania, free installation.
3: Fine and sunny all day, but a cool one, a high of just 12. Into the city on the Southern Motorway, 27 minutes in from Monaco, 52 from Drury. Now slow Papakura through to Papatoetoe and building overall. Northwestern, 25 in from Massey, slow at Te Aratu and Grey Lynn to the city. Northern, 22 Constellation to Town, 45 from Silverdale. Slow at Silverdale, heavy gravel to Constellation, slow patches to the bridge.
2: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and receive free installation. Kitchenmania.co.nz.
4: Whether you have a tickly or razor blade sore throat, there's a Difflam sore throat lozenge to soothe or numb your pain. Definitely Difflam. Sore throat sorted. Always read the label. Use as directed. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health Auckland.
5: And it's looking ugly out there on the roads with severe delays on all motorways into the city.
6: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and grab a barista-made coffee in minutes. The perfect traffic jam remedy at BP.
7: Reliance Ventilation System.
8: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
7: Moisture और ventilation का problem लगता है.
8: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
7: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
9: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
10: At Bunnings, we can help you get those easy DIY jobs done.
11: DIY can be the smallest thing. It can be changing shower heads, changing out your drawer handles to something new, whether you're renting or you're on your own home.
10: If you need help with your DIY projects, you pop in and talk to our experienced team members.
12: Or you can jump online to our DIY advice hub.
13: There'll be a lot of videos and inspiration for your DIY projects. We can help you out no matter what your budget is. There is definitely a DIY project for everyone.
14: We're all here to help you. Bunnings makes DIY easy.
0: Bunnings Way! The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Breakfast Catch-Up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
16: तो चलिए अब बारी है कि आज का थ्रोबैक आपके लिए हम लेकर आए. बट बिफोर दैट हमने कहा था ना कि आज आप अपने फेवरेट इमरान हाशमी ट्रैक्स हमारे पास भेज सकते हैं एंड देन वील पिक वन सॉन्ग एंड देन वो गाना आज थ्रोबैक में आपके लिए हम लेकर आएंगे. आई मस्ट से सम वेरी ब्यूटीफुल इमरान हाशमी ट्रैक्स जो है ये आपने हमारे पास भेजे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और इधर आई लिटरली यू नो व्हाट आई नीडेड टू डू टुडे, आई हैड टू वो इंकी पिंकी पोंकी नहीं करते जो इनी मिनी माइनी मो टाइप्स वो मुझे करना पड़ा यार टू फिगर आउट कि कौन सा गाना बजाए बिकॉज आप सबने बड़े खूबसूरत गाने जो ये हमारे पास भेजे. इनफैक्ट आई लाइक टू रीड आउट सम ऑफ द मैसेजेस एज वेल. स्नेहा आपने जो गाना बताया था हंसी बन गए, इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक एंड हंसी टाइटल आई थिंक गाने का, हमारी अधूरी कहानी उसी फिल्म का ही गाना है ये. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. और राज आपने कहा कि आपका भी फेवरेट है ज़रा सा दिल में दे जगह तू, और उसके अलावा इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग. रिया आपने कहा है डेफिनेटली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग आई वुड से आपने हमारे पास भेजा है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. परमा महाराज जी आपने कहा है जय सी आराम पूजा जी, हैव अ ग्रेट डे, होप विजय इज ओके. यस ही इज ऑल गुड. वेरी शॉर्टली वो हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ यू नो चीज़ें अटेंड करनी थी, दैट्स वाई ही कुडंट बी पार्ट ऑफ द शो फॉर द पास्ट फ्यू डेज. बट यस समटाइम्स नेक्स्ट वीक वो हमारे साथ डेफिनेटली जुड़ने वाले हैं. इमरान हाशमी सॉन्ग तू ही मेरी शब है, ये किसी ने मैसेज किया. आपने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन आपने ये गाना लिखा है. इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली ये गाना कल हमने ब्रेकफास्ट शो के थ्रोबैक में, पहले थ्रोबैक में बजाया था. द वेरी फर्स्ट थ्रोबैक दैट वी हैड प्लेड ऑन द ब्रेकफास्ट शो यस्टरडे वाज द वेरी सेम सॉन्ग तू ही मेरी शब है. इसके अलावा विकी आपका मैसेज आया है, यार आपने बड़ा खूबसूरत गाना भेजा है वो लम्हे, इमरान हाशमी का जो गाना है. और साथ में पी लूं ये किसी ने मैसेज किया है, आपने अपना नाम नहीं लिखा है. बट वन सॉन्ग दैट गॉट पिक बिकॉज एज आई सेड कि मेरे को तो यू नो गाने जो है ये आप भेजोगे तो उसमें से पिक कर प्ले करना पड़ेगा एंड आई हैड टू चूज. सो आई डिड इनी मिनी माइनी मो एंड मिशेल आपका गाना जो है ये पिक हुआ है एंड दिस इज द सॉन्ग दैट यू नो गॉट पिक्ड आज के हमारे थ्रोबैक के लिए. सो थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए आपने जो हमारे पास भेजे. और हमने कहा था ना कि आप अपने अपने फेवरेट गाने जो है कि हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं, इमरान हाशमी सॉन्ग्स आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं और उसके गाने मतलब उनके जो गाने हैं पॉपुलर गाने उनमें से कोई एक गाना जो है ये आपके लिए हम प्ले करेंगे आज। तो आज का पहला थ्रोबैक मिशेल, थैंक यू आपके मैसेज के लिए वंस अगेन एंड कंग्रेचुलेशंस, योर सॉन्ग गॉट पिक्ड। आज का पहला थ्रोबैक जावेद अली की आवाज, पता है कौन सी फिल्म का गाना है ये? अ फिल्म दैट प्रीति हैड आल्सो मेंशनड, और उन्होंने इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक हमारे पास जो है कि भेजा था, विच वाज तुम मिले। 2009 में ये फिल्म आई थी और उसका गाना जावेद अली जिन्होंने गाया ये ट्रैक अलोंग विद शादाब फरीदी, और गाना है तू ही हकीकत। आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। सो हो सके पुट द वॉल्यूम अप एंड एंजॉय दिस सॉन्ग, हमारा पहला थ्रोबैक ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में फिलहाल टेम्परेचर याद रहे 5.2 डिग्रीज है या 5.5 डिग्रीज है, माफ कीजिएगा, बट इट फील्स लाइक 2 डिग्रीज. आज मौसम के बारे में कहा गया, इट्स गोइंग टू बी अ फाइन डे, ब्यूटीफुल वेदर, लेकिन इवनिंग फ्रॉस्ट जो है ये जरूर हम एक्सपीरियंस करेंगे. सनराइज होगा 7:15 AM पर, यानी अभी से करीबन 12 मिनटों में, जबकि सनसेट आज का 5:40 PM पर होने को है. ओवरनाइट टेम्परेचर रहेगा 1 डिग्री, हाई ऑफ 11 एक्सपेक्टेड है आज बाद में चलकर.
2: Vitamins, Fortune Fuels, every win, big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Morning Madness. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो.
1: हेलो कियोरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं पूजा आज आपका साथ दे रही हूँ ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजन पूजा 104.2 FM, या फिर आप हमें रोवा ऐप के जरिए अगर सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सभी के कीमती समय के लिए, आपके साथ के लिए. इस घंटे मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में. मॉर्निंग मैडनेस की बातें करें तो मैडनेस तो बहुत सारा होता ही है हर सुबह, इफ यू आर ट्राइंग टू रीच समवेयर ऑन टाइम. एंड आई पर्सनली फील किया, जब भी आप यू नो कहीं पर सुबह सुबह जाने की कोशिश करते हैं, देन टाइम ना बहुत फास्ट उड़ता है. मतलब अभी आपने पल के झपकी और अभी आधा घंटा गायब, ऐसा मेरे को फील होता है. बट नेवरदलेस, व्हाटएवर योर सिचुएशन इज, मॉर्निंग मैडनेस तो जारी रहेगा अपनी अपनी ओर, आप भी एक्सपीरियंस करते रहेंगे इसे. लेकिन यहाँ ऑन द शो इस घंटे सबसे पहले तो आपके लिए लेकर आने वाले हैं योर राशि वाइब्स, विल बी टॉकिंग अबाउट आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा आपके हॉरोस्कोप्स के हिसाब से, और साथ ही साथ आज का हमारा जो सेलिब्रिटी अलार्म ये भी रहेगा. कल हम लेकर आए थे ना सेलिब्रिटी अलार्म, तो आई रियली लाइक्ड दिस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी जिनकी आवाज़ थी, एंड आई थॉट कि यार कोई ना पहचाने तो मेरा काम हो जाएगा, बट नेहा और सोम मेरे को चैन से जीने नहीं देंगे, इन दोनों ने पहचान लिया वेरी इजिली. दे हैड टेक्स्टेड ज़ोरान ममदानी, यस ही इज न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं ज़ोरान ममदानी, दैट वाज द करेक्ट आंसर. हमारे कल के सेलिब्रिटी थे ये सेलिब्रिटी अलार्म में, लेकिन आज किन की आवाज़ लेकर हम आएंगे और क्या आप आज के सेलिब्रिटी की आवाज़ पहचान पाएंगे या नहीं, विल फाइंड इट आउट, विल फिगर इट आउट जब सेलिब्रिटी अलार्म की बारी जो है ये आएगी. और साथ ही साथ आपको याद दिला दें कि लेकर आएंगे आपके लिए आज का हमारा 7:30 न्यूज हेडलाइंस भी, व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन न्यूजीलैंड एज फार एज यू नो न्यूज अपडेट्स एंड ऑल इज कंसर्न्ड, तो ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. आई होप यू विल स्टे विद मी दिस आवर एज वेल, और प्रोग्राम का मजा जो है ये आप उठाते रहेंगे. फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए चलिए आज का पहला ट्रैक भी आपके नाम हम कर रहे हैं. एंड रिमेंबर कि आज इस घंटे एक सवाल भी रहेगा, और इस सवाल के साथ हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने का मौका भी आपको हम जरूर देंगे.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: तो चलिए आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा आपके हॉरोस्कोप्स के अनुसार आपके राशि वाइब्स हम लेकर आ रहे हैं. और सबसे पहले तो मेष ने एरीज आज आपको बता दे कि आज रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा. मतलब अगर कुछ पैसे आपके अटके पड़े थे एंड यू हैड बीन थिंकिंग कि यार फाइनेंशियली चीज़ें शायद आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रही थी एंड यू हैड बीन विशिंग कि अगर ये चीज़ें ईज आउट हो जाए तो आज आपके लिए ऐसा हो सकता है डेफिनेटली, बिकॉज आपका रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा एंड दैट मनी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है ये साबित होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आज बताया जा रहा है वृष निटोरस के लिए और माफ़ कीजिएगा मेष एंड एरीज आपके लिए और चीज़ें बताई गई कि आज थोड़ा यू नो मन आपका एकदम ऐसे विचलित रहेगा. विचलित एज इन लाइक यू फील अ बिट रेस्टलेस, ध्यान आपका भटकता रहेगा चीज़ों से. और जीवन साथी आज आप पर काफ़ी मेहरबान रहेंगे, इनकी गाइडेंस और हेल्प की वजह से आज इनफैक्ट आपको काफ़ी खुशी जो है ये महसूस तो होगी. You'd experience a good, you know, a lot of good things in life today and you'd be very happy in regards with whatever experiences jo hai aaj aapke rahenge. Aisa aaj aapke liye bataya ja raha hai. Now, iske saath saath agar dekha jaye to Vrishni Taurus, aapke liye kaha gaya hai ki aaj samay bahut acha hai. Sahyog jo hai kehte na ki aisa ban pada hai aaj ki jo cheez aap karenge wo safalta hi safalta aapko milegi. Iski wajah se aap khush bahut rahenge. Naukri mein kaafi achhi results, achhe results jo hai aap hasil करेंगे. अच्छी चीज़ों के बारे में, काम करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मन बना चुके हैं आप और वैसा ही आज आपको रिजल्ट भी हासिल होगा. विश ने टोरस आपके लिए ये भी बताया गया है कि आज आपको थोड़ा रिव्यू भी करना पड़ सकता है अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स को, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू गोना फिगर आउट कि अच्छा क्या करे क्या ना करे एंड देन यू विल बी एबल टू सॉर्ट आउट थिंग्स फाइनेंशियली फॉर योर सेल्फ, ऐसा आपके लिए कहा गया है. और उसके बाद मिथुन यानी जेमिनाई, फॉर यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये बढ़ रहे हैं, सोशल सर्कल जो है आपका ये बढ़ रहा है एंड बहुत अच्छे अच्छे लोग आपके कॉन्टेक्ट में आएंगे जिसकी वजह से फ्यूचर और करियर दोनों आपका एक अच्छा यू नो पर्सपेक्टिव जो है इसके लिए बन सकता है. नेटवर्किंग का इस्तेमाल करें और लाइफ में जो भी गैप्स आप फेस कर रहे हैं स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, इसके साथ आप चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं. कर्क यानी कैंसर, आज काम में आपके डिमांड की ज़रूरत है, आपके फोकस की ज़रूरत है और आपके लिए ये भी कहा गया है कि यू नो देयर आर सम एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं और जो अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो आपको नोटिस कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स को देख रहे हैं. सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है अगर प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस के लिए आप कुछ मेहनत कर रहे हैं तो. बस अपने पर्सनल लाइफ को ना अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज से थोड़ा डिफरेंट रखें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, बिकॉज अगर ये दोनों क्लैश कर रहे हैं तो इसमें आपको दिक्कत हो रही है, ऐसा आपके लिए बताया गया है. सिंह ने लियो, आपके लिए कहा गया है कि आज एक दिन ऐसा है जहां पर आप खुद को इनकरेज करेंगे टू सी द बिगर पिक्चर. यू माइट फाइंड क्लैरिटी रिगार्डिंग लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चंस जो आपके मन में थे. यू नो हो सकता है फ्यूचर में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर, आपका खुद का घर, आपकी नौकरी को आप चेंज करना चाहते हैं, कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं, गुड बिग प्लान्स, तो इसको लेकर ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग यू नो प्लान्स है आपके, इसको लेकर आज क्लैरिटी आपको मिलेगी. काफ़ी अच्छा समय है टू स्टडी समथिंग न्यू और अगर आप ये प्लान कर रहे थे तो ये आप ज़रूर शुरू कर सकते हैं. कन्या यानी वर्गो, आज आपके लिए कहा गया है मेजर फाइनेंशियल रिस्क को अवॉइड करें, इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें, अदरवाइज आपको इसका नुकसान जो है ये फेस करना पड़ेगा. अपनी इंट्यूशन का भरोसा करें, अगर कुछ आपको सही लग रहा है तो सही होगा, लेकिन समथिंग अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं इट्स ऑफ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो उसको भी बिलीव करें और उस पर एक्शन लें. तो ट्रस्ट योर इंट्यूशंस टुडे. और उसके बाद तुला यानी लिब्रा, आपके लिए बताया गया है कि आज पार्टनरशिप जो है ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा. पार्टनरशिप में किए गए काम, पार्टनरशिप में किए गए फैसले, ये आपके हित में काम करेंगे. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है लेकिन आज वो दिन है जहां पर आप इनको क्लियर आउट भी कर लेंगे. दिस इज द डे जहां पर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आप बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स अच्छी तरह से समझेंगे और रिश्तों को सुधारेंगे. उसके बाद वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि यू हैव दिस डिसिप्लिन ताकि आप क्लटर चीजें जो है आपकी लाइफ में जो यू नो क्लटर क्रिएट कर रही है उनको आप डी क्लटर कर सके, क्लियर आउट कर सके, बोथ इन योर फिजिकल वर्क स्पेस और अपने डेली स्केड्यूल के हिसाब से भी. आज एक्स्ट्रा अटेंशन अपने डाइट पर देना पड़ेगा, खास तौर पर हाइड्रेशन के लिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके एनर्जी में कुछ डामाडोल हो रहा है, तो पानी पीते रहे, हाइड्रेटेड रखे खुद को, अदरवाइज वीक एनर्जी का सामना आप करेंगे, लाइक फिजिकल एनर्जी की बातें हम कर रहे हैं। उसके बाद धनु यानी सेगिटेरियस, क्रिएटिविटी आज एकदम उभर रही है आप में, तो इसको सही जगह पे आप इस्तेमाल करें, अपनी क्रिएटिविटी को राइट डायरेक्शन दे, बिकॉज दिस कैन हेल्प यू मॉनेटरी वाइज फ्यूचर में भी। और आपके लिए ये भी कहा गया है कि आपके इंस्टिंक्ट्स आज शार्प रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे। इफ यू आर गेटिंग एनी इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट देम, ऐसा आपके लिए बताया जा रहा है। उसके बाद मकर यानी कैप्रिकॉन, घर में आपको अगर देखा जाए तो प्रायोरिटी मिलेगी, इट विल बी वेरी हैप्पी, यू विल फील ऑल द लव जो है ये आपको मिल रहा है, बहुत खुश रहेंगे इसे पाकर आप। आज का दिन एक ऐसा है जहां पर घर का पकाया हुआ खाना आपके लिए कंफर्ट मील जो है ये एक ब्लेसिंग साबित होगी, एंड यू विड रियलाइज व्हाई, वेल आई डोंट नो व्हाई, पर आपको इस बात का एहसास जरूर होगा। एक्वेरियस, आपके लिए आज बताया गया है कि आज आप ज़्यादा चीज़ों को आर्टिकुलेट ना करें, यू आर समवन जो सही फैसले लेते हैं, पर जितना आप हर एक चीज़ को पकड़ कर बैठोगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा, उतना आप डाउट क्रिएट करोगे, सस्पिशियस एनवायरनमेंट जो है अपने आसपास क्रिएट करोगे, एंड दैट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। आज आपके लिए कहा गया है कि अपने वॉइसेस, अपने आइडियाज़ को डिस्कस करने में, लोगों के सामने रखने में घबराए ना, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं, पुट इट अक्रॉस एंड देन यू सी कि उसका क्या बेनिफिट्स आपको जो है ये मिलता है। एंड फाइनली मीन यानी पाइसेस, फाइनेंशियल मैटर्स जो है ये आज आपके सॉर्ट आउट हो सकते हैं, अपनी सेविंग्स को रिव्यू कीजिए, एंश्योर कीजिए कि आपकी स्पेंडिंग जो है आप सही तरीके से कर रहे हैं, ओवरबोर्ड नहीं जा रहे, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस नाउ तो फ्यूचर में यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। बी केयरफुल अपने शब्दों के साथ, अपने टोन के साथ, क्योंकि दे कैरी अ लॉट ऑफ वेट। शायद आपको नहीं इस बात का एहसास हो, लेकिन जितना वजन आपकी बातों में और शब्दों में, टोन में आज बेसिकली है, उसकी वजह से ना कुछ बहुत अच्छे और प्यारे और ज़रूरी रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। इसीलिए पे अटेंशन, एंड इफ यू कैन कंट्रोल योर वर्ड्स एंड योर टोन तो आपके लिए अच्छा होगा। ये थे आपकी राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ मॉर्निंग मैडनेस में आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर बाद सेलिब्रिटी अलार्म लेकर आएंगे।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: कॉफी द यूजुअल?
2: हाउ अबाउट द अनयूजुअल?
3: कांट वेट फॉर कॉफी? देन डोंट Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
4: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate Bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in-store and online. Beds R Us, Merikau and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.

0: Grab a new generation Samsung foldable phone from Spark with a huge deal. Upgrade now and save at least $1,200 on the all-new Samsung Galaxy Z Fold 8 or Galaxy Z Fold 8 Ultra over 24 or 36 months interest-free on eligible Spark plans with any trade-in. Plus, you'll save the trade-in amount of your phone on top. Get amazing savings on the all-new Samsung foldable phones at Spark. Minimum $99 deposit, trade-in, in-store only. T's and C's apply.
1: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
2: Join our tribe!
1: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
2: join our tribe!
3: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
3: Celebrity Alarm.
5: Hit it.
6: So, जैसे कि मैंने कहा कि कल के जो सेलिब्रिटी थे इनकी आवाज़ तो बहुत ईजिली सोम और नेहा ने पहचान ली थी. दीज वर द ओनली टू पीपल हु गॉट इट राइट और इसी वजह से आज हमें एक नई आवाज़ जो है ये लेकर आनी पड़ रही है. आई मीन आई एम ओके विद इट और मज़ा तो आ ही रहा है बिकॉज आई कैन सी यू गाइज आर सो ऑब्जर्वेंट एंड सो एक्यूरेट कि जो भी आवाज़ हम लेकर आ रहे हैं बीट यू नो परसों मेरे ख्याल से हमने डेव बटिस्टा जो है इनकी आवाज़ जो है ये शेयर की थी. इवन गॉट दैट करेक्ट. आई पर्सनली थॉट कि शायद वो आवाज़ कोई ना पहचान पाए बट वो भी आपने सही पहचान. And I had to bring a new voice the next day. But let's see. Aaj I feel it's very easy. I'm trying to keep it easy. Let's see. Because I want... Let's see. Kyun bol rahi ho itna yaar? Because I want most of you ki aap apne answers jo hai hamare paas bheje aur show ka hissa bane, matlab apna contribution de. So jitne zyada log apne messages bhejenge aaj, utne zyada logo ka contribution hoga. You'll be part of this particular competition. So I really want that and that's why I'm bringing this voice, which is, I feel, very popular to identify. अभी ज़रूरी नहीं जो मुझे लग रहा है वो वैसा ही हो, पर देखते हैं क्या आप ये आवाज़ पहचान पाएंगे या नहीं. आज के हमारे सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी अलार्म.
7: एक सवाल सर मेरा है, जैसे हमें बच्चन साहब को मिलना होता है तो हम लोग जुहू बंगलों के बाहर जाते हैं, वो हाथ हिलाते हैं. अगर आपसे मुलाकात करनी हो किस दरवाजे से आए?
6: तो ये आवाज किसकी है? लेट्स सी अगर आप हमें बता सकते हैं. और 5599 पर आप अपने मैसेजेस हमारे पास भेजिए और याद रहे जवाब जब आप भेज रहे हो ना BF जरूर लिखे. BF यानी कि ब्रेकफास्ट शो का जो शॉर्ट फॉर्म है, ब्रेकफास्ट शो का शॉर्ट फॉर्म, कीवर्ड BF, फिर आपका आंसर, आपका नाम और 5599 पर सेंड कर देना है. आज के सेलिब्रिटी क्या इनकी आवाज आपने पहचानी? इफ यस, BF स्पेस आंसर योर नेम 5599 पर भेजे. देखते हैं कितने लोग सही सही पहचानते हैं या कितने लोग नहीं पहचान पाते, क्योंकि आप नहीं पहचानोगे इसमें मेरा फायदा. आई विल गेट द सेम वॉइस अगेन एंड अगेन अंटिल यू और समवन फाइंड्स इट आउट और फिगर्स इट आउट. पर अगर आपने पहचान लिया तो भी भाई इट्स ओके, इट्स ऑल गुड. आई गेट टू गेट अ न्यू वॉइस ऑन द शो. बट आज के हमारे सेलिब्रिटी ये आवाज है, पहचानिए जरा.
7: एक सवाल सर मेरा है, जैसे हमें बच्चन साहब को मिलना होता है तो हम लोग जुहू बंगलों के बाहर जाते हैं, वो हाथ हिलाते हैं. अगर आपसे मुलाकात करनी हो किस दरवाजे से आए?
6: तो जल्दी जल्दी अपने जवाब हमारे पास भेजिए 5599 पर. BF योर आंसर योर नेम. और फिलहाल मजा लीजिए आज के हमारे बॉलीवुड मोस्ट वांटेड ट्रैक का इस घंटे. आई फील ये गाना जब ओरिजिनल रिलीज हुआ था ना कॉकटेल मूवी से, मेरे को ओरिजिनल गाना बहुत पसंद आया था और इस गाने को उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट भी किया था. इनफैक्ट शाहिद कपूर के जो कैरेक्टर थे कॉकटेल 2 में, इन्होंने बोला कि यार ये नहीं करते हैं, ट्रोल हो जाएंगे. और दी अदर टू कैरेक्टर्स प्लेड बाय रश्मिका मंदना एंड कृति सनोन, दे सेड कि अपना टेक देते हैं and they did their own version of Tum Hi Ho Bandhu, which is Bandhu 2.0. Neeraj Sridhar aur Kavita Seth ki awaaz mein aaj ke liye hamara Bollywood's Most Wanted.
3: Bollywood's Most Wanted.
8: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
9: Main laun apna A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: आज सुबह के मुख्य समाचारों में ट्रांस पावर ने कहा है कि न्यूजीलैंड जो है ये एक्सपीरियंस कर सकता है एक रिकॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इस हफ्ते एज फ्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से द यूज ऑफ हीटर्स हैव ड्रिवन अप. नेशनल ग्रिड ऑपरेटर का कहना है कि पावर सप्लाई कुड बी टाइट एट पीक टाइम्स, खास तौर पर आज और वेंसडे यानी आज रात को और थर्सडे यानी कल रात को, लेकिन वो स्ट्रेस कर रहे देयर इज करंटली नो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन हाउस होल्ड्स. इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री ने कहा है कि दे आर वर्किंग टूगेदर to ensure ki enough power rahe to meet the demand for these two nights. अन्य खबरों में एक 6-year-old जो बच्चा है जो गायब हो गया था आफ्टर लिविंग हिज वीरी होम इन साउथ ऑकलैंड, इसे सही सलामत जो है ये ढूंढ लिया गया है. एक एम्बर अलर्ट जारी किया गया था एंड जो इशू जो वार्निंग है ये इशू की गई थी आफ्टर द बॉय डिसअपीयर्ड ऑन ट्यूजडे इवनिंग फॉलोइंग एन आर्ग्यूमेंट विद फैमिली. पुलिस ने एक सर्च जो है लॉन्च किया एज ओवरनाइट टेम्परेचर जो है ये गिरे बिलो 5 degrees बिफोर कन्फर्मिंग कि ये जो बच्चा है इसे सेफली लोकेट कर लिया गया था. खेलकूद के खबरों में न्यूजीलैंड के हाई जंप चैंपियन हैमिश कर जो है ये वापसी कर रहे हैं टू इंटरनेशनल कंपटीशन लेटर दिस मंथ आफ्टर टेकिंग टाइम अवे फ्रॉम द स्पोर्ट ड्यू टू बर्नआउट. और हैमिश के बारे में बताया गया है कि ही विल बी कंपीटिंग एट द डायमंड लीग मीटिंग जो पोलैंड में होने जा रहा है ऑन 23rd of August, और यहां पर वो सामना करने वाले हैं वर्ल्ड्स बेस्ट एथलीट्स का एज ही एम्स टू क्वालिफाई फॉर द डायमंड लीग फाइनल सितंबर महीने में. ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living. Hum. Accurate traffic.
4: You made it with Caboodle.
5: Really cool today. A high of just 12. Should stay fine and clear though. Into the city, Southern Motorway 45 minutes, Manukau to the CBD. We're slow. Papakura right to the city with some heavier patches. Southwestern slow northbound through Whitty and up to Puanui. Northwestern 34 Massey to town. We're slow all the way from there. Heavy patches building. Northern 28 from Constellation. Heavy gravel to there and slow to the bridge.
4: Tradies, get the job done with Caboodle's quality, affordable and easy to install kitchens.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
9: MediaWorks complaints. How can I help?
10: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
9: Thank you.
10: It's all I can think about.
9: What does it sound like?
10: Yeah, I'd rather not.
9: Go on, why don't you have a crack?
10: Okay, got a plumbing problem.
9: Oh, I need a bit more than that.
10: They've got your back.
9: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
10: Oh, okay.
11: There's no better plumber to give it a crack.
9: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
10: No, I want a plumber.
12: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
13: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
14: The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: Birthday greetings.
16: Iska birthday, bhai?
17: Mera birthday, chalo line mein aajo.
16: Happy birthday to you.
1: अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपको विश करने का समय हो रहा है आज, जहाँ के भी अपने बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से हम विश कर रहे हैं। आज फेनवा पाई में नाथू सरोडे जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में बीच हेवन में सुदीपा मुंशी जी हैं या सुदीप्ता मुंशी जी। थैंक यू सो मच आप दोनों के मैसेजेस के लिए और अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे आपको हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से हम जरूर विश कर रहे हैं। आपके समस्त परिवार वालों की ओर से, दोस्तों की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से भी आपको याद करते हुए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। दूसरी ओर हैप्पी 14th बर्थडे टू आवर ब्यूटीफुल डॉटर जेसिका, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। आपके पापा हैं बिनेश, मम्मी है रेशमी, भैया है जॉनथन, नाना और नानी है आजा और आजी है और जितने भी आपके परिवार वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं फ्रॉम फिजी एंड अब्रॉड, सभी ने आपको याद करते हुए हैप्पी बर्थडे आपको विश किया है। तो हमारी हम टीम की ओर से भी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू जेसिका। आज का ये स्पेशल दिन आपकी लाइफ में ढेरों सारी खुशियां लेकर आए और बेस्ट विशेस भी हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं अपनी ओर से। आज ऑन द 5th ऑफ अगस्त अगर आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या अपनी शादी की सालगिरह मना

बिकॉज आज इतने सारे मैसेजेस आए हैं, हमने सोचा अभी बता देते रिजल्ट, वाई वेट फॉर टुमारो ना, तो क्यों, और द अदर रीजन आई टेल यू वाई एक्चुअली आई एम रिवीलिंग द रिजल्ट टुडे. राहुल पांडे, यू आर द फर्स्ट वन टू सेंड इन द मैसेज. विधि, आपने भी अपना जवाब भेजा. सनी है, गगन है, अंकित है, साथ में पूनम का आंसर आया है, सतीश है, साथ में विकास है, शाइना, सोम, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज अगेन. शुभम है और देविका है, आपका भी मैसेज हमें मिला है. गुंजन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर योर मैसेज इज वेल. 1625 नाम नहीं है लेकिन मैसेज आया है. भजन, हाँ भजन ये कैसा नाम है. 3623 आपने भी अपना मैसेज भेजा है. अरिफ, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. विनील है मनोरेवा से. हैनिल प्रसाद, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर मैसेज. सेलेश, आपका भी मैसेज आया है. स्वाति, आपने भी अपना आंसर भेजा है. नंदिनी है, साथ में 2340 आपका नाम नहीं है लेकिन मैसेज आया, थैंक यू सो मच. रोहिणी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर आंसर. कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर एज वेल. कृष्णा दास फ्रॉम मनोरेवा, आपने अपना मैसेज भेजा है. नव, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर मैसेज. एंड जाकिया, आपका भी मैसेज आया है. नाउ द रीजन व्हाई आई एम रिवीलिंग आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म के सही आंसर टुडे इज बिकॉज ये जितने नाम मैंने अभी पढ़े ना, इन सभी ने मैसेजेस भेजे और मैंने जिस किसी का भी नाम पढ़ा, सब ने एक जवाब भेजा. आज किसी का भी कोई डिफरेंट आंसर नहीं आया, सबने एक ही आंसर भेजा. एंड द आंसर और द नेम जो आप सबने भेजा इज कपिल शर्मा, विच इज एग्जैक्टली आवर सेलिब्रिटी फॉर सेलिब्रिटी अराउंड टुडे. सो दैट्स द रीजन बिकॉज यू ऑल गॉट इट राइट एंड सिंस यू हैव ऑल गॉट इट राइट, ये रिवील कर दिया मैंने आज. थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. कल देखेंगे, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट अ डिफिकल्ट वॉइस टुमारो जस्ट टू सी कि आप में से कोई उसे पहचान ना पाए. लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर टुमारो, बट फिलहाल लेट्स एंजॉय इस घंटे का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अ वेरी ब्यूटीफुल वन. सचिन जिगर के संगीत पर आपके लिए आशीष कौर और साचेत टंडन की आवाजें हैं.

0: 17 minutes away from 8 for now, हम playing Bollywood's biggest hits आपके लिए The Breakfast Show with Vijay and Pooja on हम लेकर आ रहे हैं. वैसे 104.2 FM पर ये रोवर पर अगर फिलहाल आप हमें सुन रहे हैं, साथ अपना दे रहे हैं, thank you so much आपके साथ के लिए, आपकी company के लिए. Good morning जहां कहीं भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, आपको हम जरूर विश करना चाहते हैं all the very best आज Wednesday 5th of August के लिए भी. इधर चलिए आपको याद दिला दे कि आपको पता है करण औजला आने वाले हैं सुपर सिटी ऑकलैंड. वैसे तो ऐसी बातें जो है ये छिपती नहीं है किसी से, पर जस्ट इन केस इफ यू नॉट बीन अवेयर कि करण औजला जो है इसी महीने अभी से 20 दिनों में सुपर सिटी ऑकलैंड में परफॉर्म करने वाले हैं, तो दिस न्यूज इज फॉर यू. करण औजला अपना पीप अप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आ रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सर्ट्स जो इस साल होने जा रहा है इन सुपर सिटी ऑकलैंड. सिर्फ एक शो, वन एंड ओनली शो जो यहाँ ऑकलैंड में होगा 25th of August को एट स्पार्क अरेना. इट्स अ ट्यूजडे नाइट एंड इफ यू स्टिल हैवन गॉट योर टिकट्स फॉर दिस अमेजिंग शो, क्योंकि करण औजला एक ग्लोबल सुपरस्टार है और इनके साथ स्टेज पर इक्की जो है ये भी परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपको इनके साथ एक बहुत ही अमेजिंग इलेक्ट्रीफाइंग म्यूजिकल नाइट का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है. एंड इफ यू वॉन्ट टू विटनेस इट लाइव तो आप livenation.co.nz से जाकर टिकट्स जो अपने ग्रैब कर सकते हैं, hum.rover.nz विजिट कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए. ग्रैब योर टिकट्स एट द अर्लीस्ट ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए, ताकि आपका मौका कंफर्म हो जाए दैट यस यू आर पार्ट ऑफ दिस पीप ऑफ कल्चर वर्ल्ड टूर एंड आप भी करण औजला को देखने के लिए जाने वाले हैं, यू आर गोइंग फॉर द शो. नाउ ऑन द अदर हैंड लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू कि दिस इज योर चांस टू ट्राई योर लक और एक डबल पास जो है ये भी जीतने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं. अगर आपको डबल पास जीतना है, हमारा फेसबुक पेज हम 104.2 FM ये आप विजिट कीजिए और आपको फीचर्ड फोल्डर में जो पोस्ट है ये दिखेगा, करण औजला ग्लोबल सेंसेशन ये अपना पीप ऑफ कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आ रहे हैं, ये पोस्ट आप चेकआउट करें और उसके कॉमेंट सेक्शन में आपको जाकर करण औजला के लिए एक मैसेज लिखना है. पहले तो इस पोस्ट को आप लाइक कर लो और फिर करण औजला के लिए एक मैसेज डालो कमेंट सेक्शन में और करण औजला को टैग करो. नाउ वंस यू डू दीज थ्री थिंग्स, लाइक द पोस्ट, राइट अ मैसेज फॉर करण औजला एंड टैग हिम, आप स्ट्रेट अवे इस ड्रो का हिस्सा बन जाओगे जहां पर अपॉर्चुनिटी है आपके पास दैट यू एक्चुअली विन अ डबल पास फॉर योरसेल्फ. तो अगर इस मौके से फायदा उठाना है, फटाफट हमारा फेसबुक पेज विजिट कीजिए, फीचर्ड फोल्डर में पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में करण औजला के लिए एक मैसेज टाइप कीजिए और उन्हें टैग करते हुए वो मैसेज वहां पर डाल दीजिए. एंड दैट्स इट, यू विल बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग ड्रो एंड यू कैन ट्राई योर लक एंड विन अ डबल पास फॉर करण औजला का पीप ऑप कल्चर वर्ल्ड टूर हैपनिंग ऑन द 25th of August राइट हियर इन सुपर सिटी ऑकलैंड एट द स्पार्क अरेना. और ये अपॉर्चुनिटी याद रहे मिस आउट नहीं करनी है. बाय द वे इस बात का भी ख्याल रखें कि यू हैव टू डू ऑल दीज थ्री थिंग्स टू बी पार्ट ऑफ द ड्रो, लाइक द पोस्ट, राइट अ मैसेज फॉर हिम एंड टैग हिम टू बी पार्ट ऑफ द ड्रो. सो गेट गोइंग, चेकआउट कीजिए हमारा फेसबुक पेज. थोड़ी देर बाद आपके लिए कुछ और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम जरूर लेकर आएंगे ओनली ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
1: Mornings made better.
2: Two frienda, char toast, butter jam, or a special chai.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.
4: Accurate traffic.
5: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
6: Fine today, but a chilly high of just 12 into the city. Northern Motorway, 30 minutes from Constellation Drive to town, 55 from Silverdale. Very heavy Silverdale to Snow Planet and heavy patches from Constellation. Northwestern, 42 in from Massey. Slow all the way from there. Lots of heavy spots. Southern, similar, 50 in from Monaco. Slow from Papakura. Heavy patches frequent. Slow both ways on the southwestern at Whitty and Mount Roskill.
5: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
7: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power Women's Refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
4: Afterpay Day is about to drop. Save up to 70% off thousands of brands when you pay in full, in-store and online. 4 days only, August 13th to 16th. TCs, fees and credit checks may apply. See afterpay.com for Afterpay terms.
8: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office? We're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it. We're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
9: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, e-waste हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
10: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: बस 10 मिनट ही बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में सुबह के 8 बजने में. ठीक 8 पर तो न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे ही, लेकिन उससे पहले कल का दिन बहुत से शहरों के लिए है. यहाँ न्यूजीलैंड में एक सरप्राइज साबित हुआ. कुछ लोगों ने एंजॉय किया तो कुछ लोगों को काफ़ी सर्दी भी महसूस हुई. एक पावरफुल एंटार्क्टिक पोलर ब्लास्ट जो है ये एक्सपीरियंस किया गया, जिसकी वजह से रेयर स्नो फ्लरीज जो है एंड मिक्सड इन ऑफ कोर्स स्लीट एंड वेट स्नो पार्ट्स ऑफ वेलिंगटन में अलॉन्ग साइड लो लेवल स्नो जो है आइसी डिस्ट्रप्शन ये फेस किए गए थे इन सम सिटीज इन साउथ आइलैंड. वैसे तो क्वींसटाउन एंड साथ में टोपो का जो आइस माउंटेन है, दीज आर क्वाइट पॉपुलर व्हेन इट कम्स टू सीइंग स्नो और स्नोइंग आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. बट इमेजिन वेदर कंडीशंस इतने डिफरेंट साबित हुए कि वेलिंगटन में एक ब्रीफ मोमेंट के लिए स्नो फ्लरीज जो है ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया. आई मीन बेसिक लैंग्वेज में स्नो जो है ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया, बिकॉज इट वाज स्नोइंग यू नो वेलिंगटन में. और रेन और स्नो का ये जो मिक्सचर है ये सीबीडी में सबर्ब्स डिफरेंट सबर्ब्स में लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जिसकी वजह से एक स्नो लेवल जो है ये एक्सपीरियंस हुआ, मार्किंग द कोल्डेस्ट स्नैप जो आई थिंक इन 15 ईयर्स वेलिंगटन में एक्सपीरियंस किया गया है. एंड एवर सिंस 2011 ऐसा कुछ लोगों ने नहीं देखा था वेलिंगटन में, लेकिन इस साल 2026 में लोगों ने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया. डनीडन के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर भी हैवी स्नो जो है लोगों ने फेस किया, जिसकी वजह से बहुत से स्कूल क्लोजर्स हुए, बस सर्विसेज कैंसिल हुई, स्टेट हाईवे क्लोजर्स हुए जिनमें सेक्शंस ऑफ स्टेट हाईवे 1 इसे भी बंद किया गया था. एंड मल्टीपल व्हीकल क्रैशेज जो है ये भी रिपोर्ट किए गए. इनफैक्ट रोड वार्निंग्स जो है स्नोफॉल की वजह से इसे एनफोर्स किया गया ऑन रूट्स लाइक रेमुटाका हिल रोड जो स्टेट हाईवे 2 में है, साउथ आइलैंड एल्पाइन पास, जहाँ पर अथॉरिटीज़ ने लोगों से मांग की कि नॉन एसेंशियल ट्रेवल जो है ये आप ना करें. इनफैक्ट कल एक लिसनर है हमारे जिनका नाम संजय चंद है, इन्होंने भी ईमेल किया था. क्राइस्ट चर्च में विक्टोरिया पार्क में ये पूरा कंटेंट क्रिएशन कर रहे थे और ये एक्सपीरियंस दिस वेरी ब्यूटिफुल सीन जहाँ पर ये स्नो एक्सपीरियंस करते हुए उन्होंने एक वीडियो जो है ये बनाकर हमारे पास भेजा था. एंड दिस इज़ वट सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो है स्पेशली साउथ आइलैंड में एंड यू नो वेलिंगटन एंड डनीडन में लोगों ने फेस किया. बट व्हाट अबाउट यू, कल का जो वेदर है आपके लिए कैसा था? आई थिंक लास्ट वीक वेंसडे वॉज क्रेजी, बहुत सर्दी थी. इस वीक भी, कल भी भाई बहुत सर्दी थी. आज सुबह तो पूछो ही मत क्या हाल हुआ. पर आपके लिए सो फार ये विंटर कैसा बीत रहा है? आर यू हैविंग फन? यस और नो, लेट मी नो.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: भाई ये टेम्परेचर तो ना ही ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, मतलब पिछले दो घंटे से ऐसा ही है कि 5.5 डिग्री ही रिपोर्ट कर रहा है। बट राइट नाउ आपको बता दें, ओवरनाइट टेम्परेचर रहेगा 1 डिग्री, बहुत ज्यादा ठंडी रहेगी आज, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाई ऑफ 12 डिग्रीज तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है लेटर टूडे। फाइन वेदर बट इवनिंग फ्रॉस्ट जरूर हम एक्सपीरियंस करेंगे। सनसेट 5:40 PM पर आज होगा।
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून। एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग।
0: द रश आवर brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: तो चलिए आज का ट्रेंड पेट्रोल, ट्रेंडिंग खबर ये है दैट जो बहुत ही पॉपुलर वी कैन से द चाइनीज व्हीकल ब्रांड विच इज़ बेसिकली BYD, अगर आपको पता है इसके बारे में, इज़ वेरी ट्रेंडी, इज़ वेरी पॉपुलर, और ये चाइनीज इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। और इनके बारे में खबर ये आ रही है कि इन्होंने दरअसल एक पेटेंट के लिए फाइल किया है, और ये जो पेटेंट है इट्स फॉर एन AI पावर्ड अंडर बॉडी डिटेक्शन सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो डिज़ाइन किया जाएगा टू आइडेंटिफाई लिविंग बींग्स सच एज बच्चे, पेट्स या एनिमल्स जो आपकी गाड़ी के नीचे हो बीनीथ अ पार्क्ड व्हीकल, और बिफोर वो गाड़ी मूव करे ये सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि अगर गाड़ी के नीचे कोई बच्चा है, कोई एनिमल है, आपके पेट है, ये तो नहीं छिपे बैठे हैं, और उसके बाद ये व्हीकल जो है कि अलाउ करेगा आपको टू मूव। ये प्रपोज्ड सिस्टम जो है कैमरास यूज करेगा माउंटेड अंडरनीथ द व्हीकल, जिससे ये रेफरेंस इमेज कैप्चर किया जा सके, विच विल बेसिकली बी ऑफ द एरिया बीनीथ द कार जबकि वो पार्क्ड रहेगा। बिफोर द व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग ये नया इमेज लेगा और उसका इस्तेमाल करते हुए AI के साथ कंपेयर करेगा, एंड इट विल बी स्टोर्ड एज अ रेफरेंस इमेज। अगर इस कैमरा में डिटेक्ट होता है एक सिग्निफिकेंट चेंज दैट कुड इंडिकेट अ लिविंग बींग अंडरनीथ द कार बिफोर द कार मूव्स, ये ड्राइवर को अलर्ट करेगा। और कमाल की बात यह है कि ये जो BYD व्हीकल्स हैं, इस टेक्नोलॉजी के साथ अब फ्यूचर में बनेंगे। सो फार इसके पेटेंट के लिए फाइल किया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक BYD व्हीकल आपने या BYD व्हीकल आप ले रहे हैं तो इसमें ये इंस्टॉल्ड आएगा, नहीं अभी नहीं, पर ये पेटेंट फाइल किया गया है। वंस इट्स अप्रूव्ड, वंस इट्स ऑल डन, देन नए मैन्युफैक्चरिंग में ये ज़रूर इंक्लूड करना चाहेंगे दिस particular feature, and it has been tested in real world conditions as well. और इसकी जो production है, ये जैसे कि मैंने कहा, once ये pass हो जाएगा, ये patent जो file किया गया है, तभी जाकर नई गाड़ियों में improve होगा या implement किया जाएगा। But I must say, यार, it's a very interesting feature and a very important feature as well, क्योंकि अक्सर हमने बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ा है, सुना है, या फिर एक्सपीरियंस क्या है जहाँ पर ऐसा ही होता है। इफ़ योर पेट और एनी एनिमल इज़ अंडर योर कार एंड यू डोंट रियलाइज, आपके बच्चे जो है गाड़ी के पीछे होते हैं, आगे होते हैं, एंड एक्सीडेंट्स जो है ये हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेट चीज़ें जो है ये हो जाती हैं। बट इफ़ अ व्हीकल कम्स विद सच अ फीचर, इट्स अमेजिंग, इज़न्ट इट। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए ट्रेंड पेट्रोल में ऐसी और भी ट्रेंडिंग खबरें आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। बट फॉर नाउ शुरुआत कर रहे हैं रश आवर की ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, एंड रिमाइंडिंग यू ऑल, जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी एक्सपीरियंस्ड टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की जरूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर, याद रहे 0800-862-342 पर, या फिर आप asianfamilieservices.nz पर विजिट करते हुए एक फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट जो है ये हासिल कर सकते हैं।

0: बेनी दियाल और साथ में शालमली खोलकड़ी की आवाजों को आप सुन रहे थे। आपके लिए इस गाने को आज हमने पेश किया ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा फ्रॉम द फिल्म ABCD 2 2015 में फिल्म जो है रिलीज हुई थी। नाउ हम बातें कर रहे थे आज के ट्रेंड पेट्रोल में अबाउट दिस BYD व्हीकल जिसका एक नया जो फीचर है ये पेटेंट करने के लिए इन्होंने फाइल किया हुआ है एंड वंस दैट इज अप्रूव्ड तो ये अपने नए यू नो उसमें ज़रूर इंक्लूड करेंगे नए व्हीकल्स में। बट किसी ने मैसेज किया है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है पर इन्होंने कहा नथिंग न्यू माय टोयोटा कोरोला क्रॉस लेटेस्ट हैज गॉट दिस सेफ्टी फीचर ऑलरेडी ऑल द बेस्ट आई मीन नॉट ऑल द बेस्ट व्हाट आई मीन आई मीन लाइक ऑल गुड एंड थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। वेल आई डोंट रियली नो मच अबाउट कार्स, मेरे लिए तो बस गाड़ी और मोबाइल फोन्स जो एक ही जैसे होते हैं कि बस जो काम है एज इन चल रही है ऑल गुड, मुझे पता नहीं ज़्यादा उसके बारे में। तो इसी तरह से आई हैड नो आइडिया कि अगर ये फीचर किसी और गाड़ी में पहले से था या नहीं, बट आई जस्ट फाउंड दैट रिपोर्ट तो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ BYD व्हीकल्स जो है आजकल मार्केट में लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है इस व्हीकल को लेकर। सो इट वॉज समथिंग दैट वॉज ट्रेंडिंग आई थॉट लेट्स टॉक अबाउट दिस। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपके लिए आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक जो है ये हम लेकर आने वाले हैं बस थोड़ी देर में, तैयार रहिएगा। आज इनफैक्ट क्या करेंगे हम लाइंस ओपन करेंगे, विल सी हाउ इट गोज। अगर आपके कॉल्स आते विल कंटिन्यू विद कॉल्स एज वेल, अगर नहीं आते देन विल डू द सेम थिंग दैट वी हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज वेयर विल जस्ट इनवाइट मैसेजेस बट विल सी हाउ इट गोज। ठीक है, तो व्हाट्स योर टेक टॉपिक के लिए तैयार रहिएगा, थोड़ी देर बाद ही रहेगा। पर ऑन द अदर हैंड एक क्रैश ये रिपोर्ट किया गया है आफ्टर 7 AM दिस मॉर्निंग जिसकी वजह से इमरजेंसी सर्विसेज को आज बुलाया गया टू मैनिकाव रोड इन एप्सम जस्ट आफ्टर 7 AM। 4 पुलिस कार्स, 3 एम्बुलेंस एंड अ फायर इंजन जो है दे वर सीन स्टेशनड अक्रॉस द रोड नियर अलेक्जेंडर पार्क। और एक व्यक्ति जो बस में ट्रेवल कर रहे थे डाउन मैनिकाव रोड, उन्होंने ये कहा दैट दे वर डाइवर्टेड अराउंड द सीन और पुलिस जो है उनको ज़रूर इस पर्टिकुलर यू नो क्रैश के रिपोर्ट्स के लिए अप्रोच किया गया बट नथिंग हैज़ बीन रिलीज्ड सो फार। बट लेट्स सी, अगर कुछ अपडेट सामने आता है तो हम आपको बताएंगे। तो रिमेंबर आज सुबह सुबह मैनिकाव रोड एप्सम के पास यहाँ पर एक क्रैश जो है ये रिपोर्ट किया गया है। पॉसिबली वहाँ पर अभी कुछ ट्रैफिक बिल्डअप हो सकता है बिकॉज दे वर बेसिकली 4 पुलिस कार्स, 3 एम्बुलेंसेज एंड फायर इंजन जो है इसे स्टेशन किया गया हुआ देखा गया है। सो एज वी रिसीव एनी अदर रिपोर्ट इन रिगार्ड्स विद दिस आपके साथ हम ज़रूर इसे शेयर करेंगे। पर थोड़ी देर बाद आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक ये भी आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं।
1: Mornings made better.
2: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय।
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: 80s के रेट्रो गाने।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: At Spotlight, it's the final day to save a mega 30% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Yarn Party, Curtains and Blinds. Yes, that's 30% off. Sale must end tonight. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
2: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
3: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy. And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
4: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
5: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
6: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
7: अब हमारा क्या होगा?
8: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
9: तो क्या करें?
10: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
13: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
14: What's your take?
15: तो आज का What's Your Take टॉपिक जो आपके लिए हम लेकर आए हैं is something about you know, we all might have experienced or we all might have heard from someone जिन्होंने experience किया. I would say मैं उस लकी लोगों के उन लकी लोगों की कैटेगरी में फॉल होती हूँ जहाँ पर the job that I used to do back in my home country जहाँ से मैं आई हूँ which is Fiji. वहाँ पर भी मैं एक लोकल हिंदी रेडियो स्टेशन में एक आरजे थी एंड आई एन्जॉयड माय जॉब अलॉट एंड आई वाज यू नो हैविंग अ लॉट ऑफ फन. तो वहाँ पर भी मैंने ऐसे ही अपना करियर जो है शुरू किया एंड व्हेन आई केम टू न्यूजीलैंड एज आई सेड वन ऑफ दोज लकी ग्रुप ऑफ पीपल जिनको वही पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वही पर्टिकुलर काम मिला. इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट When I was in Fiji, जिस लोकल रेडियो स्टेशन के लिए वहाँ पर मैं प्रोग्राम किया करती थी, it was a daytime program. जैसे यहाँ पर हमारा माई टाइम और लंच बॉक्स का प्रोग्राम है, वहाँ पर it was one program जो 5 घंटों का होता था, which started at 9 AM and it used to finish at around 2 PM. So 9 AM से लेकर 2 PM का स्लॉट मेरा हुआ करता था and that was the program I was doing. And after that, I also did the night show, which was basically 7 बजे से 7 PM से लेकर रात midnight तक. मैंने ये भी प्रोग्राम जो ये किया हुआ है and I enjoyed it. And when I came to New Zealand, I was very lucky to get this opportunity to do the morning show, the breakfast show, subah 6 se lekar 10 baje tak. And I've been doing this ever since I came to New Zealand, which was in 2014. So, mere liye, it was a blessing, I would say, ki mujhe apni प्रोफेशन को नहीं बदलना पड़ा या फिर मुझे कुछ और डिफरेंट काम नहीं करना पड़ा टू स्टार्ट ऑफ इन न्यूजीलैंड एंड देन गेट इनटू दिस इंडस्ट्री. बट आई गॉट द सेम जॉब इन द सेम इंडस्ट्री. इनफैक्ट आई प्रोग्रेस्ड एज फार एज द शोज वर कंसर्न्ड. तो आज मेरा सवाल द बिग करियर चेंज, आपका एक्सपीरियंस. क्या आप यहाँ न्यूजीलैंड में आकर आपने अपने करियर को रीस्टार्ट किया, मतलब इन बैक इन योर होम कंट्री शायद आप किसी डिफरेंट प्रोफेशन में थे, किसी डिफरेंट इंडस्ट्री में काम किया करते थे, बट व्हेन यू मूव्ड टू न्यूजीलैंड आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा टू स्टार्ट ऑफ हियर. यू नो, आपको शायद कुछ डिफरेंट इंडस्ट्री में जाना पड़ा टू अर्न अ लिविंग हियर. या फिर यू वर वन ऑफ दोज लकी पीपल हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ द सेम इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में आप तब थे व्हेन यू आर बैक एट होम अपनी होम कंट्री में और यहाँ पर भी आकर आपने उसी इंडस्ट्री में काम पाया उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड ओ यू हैव गॉन यू नो यू हैव प्रोग्रेस्ड इन लाइफ यू आर डूइंग अ जॉब इन अ पर्टिकुलर डिफरेंट इंडस्ट्री पर्टिकुलरली और आप और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं यू आर हैप्पी विद दैट सो दैट्स माई टॉपिक फॉर टुडे बट व्हाट्स योर टेक लेट्स सी गुड मॉर्निंग परविंदर कैसी हैं आप आपका क्या सिचुएशन है सेम इंडस्ट्री या फिर डिफरेंट इंडस्ट्री में शुरुआत की आपने
7: इंडिया में मैं लेक्चरर थी और यहाँ के ऑब्वियसली वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी थी तो उस टाइम जब मैं आई थी तब तो मैं टीचर नहीं थी मैं अभी 2019 में टीचर लगी हूँ पर उससे पहले मैंने दूसरे जॉब्स किए थे जैसे मैंने काउंटडाउन में काम किया है मैंने पैकेज सेल में काम किया है मैंने एज अ शेफ भी काम किया है और फूड चेन में भी काम किया है तो एक बार ना मुझे ऐसी लगती थी कि जैसे मैं इंडिया में लेक्चरर थी और मतलब पर्सनली मुझे यंग एज में एक्सपोजर नहीं हुआ था वर्क एक्सपीरियंस का क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती थी जब मैं यहाँ आई हूँ और मैंने देखा है कि मेरे से छोटे छोटे बच्चे भी बहुत मतलब प्रो है किसी काम में
15: प्रो है
7: इवन अगर वो मतलब फूड चेन में काउंटर पर खड़े होके ऑर्डर लेना भी क्यों ना होगा ना मुझे वो हार्ड लगता था आई वॉज लाइक कि मेरे से साइंस का कुछ भी करवा लो
15: ये मत करो
7: पर ये मैं नहीं कर सकती बट वही बात मरता क्या ना करता अब जॉब तो करनी थी ना अपना गुजारा करने के लिए पर मेरे को बहुत हार्ड लगता था कि मतलब जस्ट इमेजिन टिल का जॉब है कि आपको ऑर्डर लेना है ऑर्डर प्लेस करना है पैसे डालने हैं पर वो मेरे लिए बहुत हार्ड था जैसे कोई कस्टमर बोल देना कि Can you make it extra large, add ons, add this, add that? मैं गलत ऑर्डर कर देती थी और जो मेरा सीनियर था वहाँ पे वो मेरे से छोटा था और वो ऐसे ट्रीट करता था ना जैसे मैं कोई गधी होती हूँ
15: But you would say that you were you know you have been in a situation जहाँ पर आपने किसी different career में शुरुआत की and then you have moved to teaching but you were a lecturer in India when you moved to New Zealand before you moved to New Zealand okay thank you so much Parvinder आपके call के लिए I wish you a very happy day today enjoy your day thank you so much thank you जी good morning हम कैसे हैं आप
9: बिल्कुल बढ़िया
15: आप कहते हैं मैं एकदम बढ़िया हूँ आई एम रियली सॉरी मेरे दोनों कान ना बंद है मेरे को क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है मैंने हेडफोन का वॉल्यूम काफी ऊंचा किया आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा बिकॉज आई स्टिल कांट हियर यू क्लियरली
9: दैट्स ओके अभी आवाज आ रही है आपको
15: हाँ अभी आ रही है एंड आई होप आई एम एबल टू हियर यू क्लियरली थ्रू आउट योर कॉल जी तो बताइए आपका क्या कहना है आज के टॉपिक के बारे में
9: तो मैं इंडिया में आई यूज्ड टू वर्क फॉर एन
15: एयरलाइन ओके
9: और मैंने ऑलमोस्ट 9 साल काम करा है एयरलाइन में और मैंने एक चेक क्रू थी जिसका मतलब है कि आप जो नए ट्रेनीज आते हैं उनको चेक करके उनको सोलो क्लियर करना होता है फ्लाइट में मतलब ऐसे पैसेंजर जाके बैठ के ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन पूछोगे जैसे वाइवा होता है और यू क्लियर देम तो मेरा वो काम था यहाँ पर आके जब मैंने देखा कि अगर मुझे सेम चीज करनी है तो एक तो पहले मुझे स्विमिंग आनी चाहिए मुझे इतने अच्छे से नहीं आती आती है पर इतनी अच्छी स्विमिंग आती
15: ओके
9: और स्टाफ ने मेरे को जितनी पढ़ाई मैंने वहाँ करी थी उसकी डबल करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट आर नॉट अप टू द मार्क जो यहाँ के स्टैंडर्ड पे होने चाहिए
15: ओके
9: तो उसमें अलग होते हैं और मुझे 2-3 साल और पढ़ना पड़ता टू गेन द सेम प्रोफेशन थी जो मेरी इंडिया में थी
15: ओके
9: तो उसके लिए फिर मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है पढ़ाई तो होती नहीं क्योंकि अब पढ़ाई की आदत है नहीं और मेरा जो रोल है उसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं मतलब पढ़ाई की जरूरत है पर इतनी नहीं थी मुझे सिर्फ रिफ्रेशर करना होता था हर 2 ईयर्स में एक बार तो फिर मैंने यहाँ पे बहुत अलग अलग काम करे. मैंने वोडाफोन में भी काम करा और मैंने उसके बाद इंश्योरेंस में भी काम करा. उसके बाद मैंने अब मैं यहाँ पे बेस्ट जॉब करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है.
15: ओके.
9: 9 to 5 की जॉब है. आराम से सैटरडे संडे ऑफ है. सारी पब्लिक हॉलीडेज है. तो आई लाइक इट.
15: यू एंजॉयिंग इट.
9: पर मुझे आई लव इट. लेकिन अगर मुझे वापस एयरलाइन में जाना होता तो दिस इज नाउ अबाउट 18 इयर्स अगो. मुझे अब 3 साल की पढ़ाई करनी पड़ती.
15: ओके. So it's safe to say that, right? So it's safe to say that whatever you were doing back home, आपको वो नौकरी जो है या उसी इंडस्ट्री में काम करने का मौका due to various reasons यहाँ इस कंट्री में नहीं मिला, but you are happy with the outcome, whatever the outcome is.
9: Absolutely, love my life.
15: Thank you so much. God bless you, and I hope you continue loving every moment of your life just like this. Thank you so much आपके कॉल के लिए. Thank you. So there you go. दो कॉलर्स ने अभी तक कॉल किए हैं. एक मैसेज आया है धवल. I really appreciate your message. इन्होंने कहा है कि same topic we did it before. I'm really sorry यार धवल, मेरी आदर्श honestly उतनी अच्छी नहीं है. I thought this is something different because I was trying to get a topic for today and एक topic था मेरे जहन में, but I felt like कि शायद वो थोड़ा heavy हो जाएगा आज के लिए. And एली इन द मॉर्निंग लाइफ में सबकी ना इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि मुझे ऐसा लगा शायद ये टॉपिक आज के लिए या एली इन द मॉर्निंग वुड नॉट बी अ सूटेबल वन. सो आई थॉट टू डू समथिंग एल्स एंड दैट्स हाउ आई जस्ट केम अप विद दिस. प्रोबेबली दैट्स द रीज़न आई केम अप विद दिस टॉपिक बिकॉज शायद ये मेरे जहन में था एंड इट्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट. हो सकता है ये बट कॉन्ट्रीब्यूशंस आप भी अपने ज़रूर दे सकते हैं इवन दो वी हैव डन इट बिफोर. धवल थैंक यू आपके मैसेज के लिए वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी एज वेल. ऑन द अदर हैंड वी रिसीव्ड अनदर मैसेज. उन्होंने कहा बैक होम आई स्टार्टेड एज अ फार्मर देन मूव टू मर्चेंडाइजिंग एंड मूव टू ASR फॉर गुडमैन फील्डर देन सुपर मार्केट मैनेजर एंड मूव्ड टू न्यूजीलैंड एज अ ट्रक ड्राइवर. वाओ यू हैव बीन इनटू different industries I must say, but I hope you are enjoying whatever you're doing right now and thank you aapke message ke liye. apne apna naam to nahi likha hai. 4574. Thank you for your message. Any other calls aaj ke topic of the day ke liye 0800 004866. humne aapse pucha hai aapka big career change ke bare mein, matlab something that you used to do back home from in the country that you used to live, वहाँ जहाँ से आप आए हो उसमें उस देश में शायद आप कुछ different काम कर रहे थे. when you moved to New Zealand or when you had to move to New Zealand, आपको कुछ compromises करने पड़े, different career option जो है चुनना पड़ा, different industry में जाना पड़ा, या you were one of those lucky people who got to maintain the same industry, the same job and you progressed into a different role probably in the same industry when you came to this country. So what is your take आज के topic के लिए, ये आप ज़रूर हमें बता सकते हैं. Now you can send us a message 5599 पर to give your contributions. Ram Singh ji, thank you so much aapke message ke liye. aapne hamare paas message kiya hai saying I am a chef, same industry. Thank you so much Ram ji. I hope you have a wonderful day today.
13: Bollywood's most wanted.
14: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
16: Main laun apna A game.
13: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover. Accurate traffic.
1: BYD South Auckland now open.
2: A cool high of 12, but final day. Northern Motorway, 30 minutes. Constellation Drive to the city, 52 from Silverdale. Heavy at Silverdale and on and off Constellation to the bridge. Northwestern, 45 Massey to town. Heavy on and off from Upper Harbour. Upper Harbour Motorway, slow northbound. Heavy through Greenhithe. Southern, 48 in from Manukau. Slow from Marurewa. Heavy from Otahuhu. Southwestern, heavy northbound through Whitty.
1: Discover the full BYD electric and hybrid range at the new Manukau Supersite on Great South Road.
3: Okay. Let's run through this. You've set up a coffee group, a mum's group, a connect group, and you've adopted group fitness like a religion. Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Friends, whānau, workmates, get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
4: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest, Sarah.
5: What do you make in kebab's special, Chef Alex?
4: Perfect blend of spices, tender meat, and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
5: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right, and meat is so juicy.
4: Yeh hai Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
5: 100% authentic and pure as mother's love.
6: Please use your imagination for the following ad.
7: If I won Powerball, I'd build my dream. Then I'd even things out with a massive donation to...
6: Imagine winning $6 million this Wednesday. Play in store or online.
8: The moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured up front. Even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
9: Rebel is turning 30 and we've got 30% off deals to celebrate. Like 30% off all Adidas running shoes, 30% off birthday deals and so much more. On now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
10: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: So... आज का हमारा जो रश आवर प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए. और आपने भी अपने अपने जो टॉपिक्स मतलब जो अपडेट है ये दिए हैं हमें फॉर आवर टॉपिक ऑफ द डे टुडे. थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. बाय द वे, एक और एक खबर जो है ये आ रही है, और इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, विच इज़ डेन्यूब रिवर जो है, इसके बारे में एक खबर आई है कि यहाँ पर जो वाटर लेवल है ये इतना ड्रॉप हो चुका है कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो शिप्स यहाँ पर डूबे थे, दे आर इमर्जिंग नाउ. और वाटर लेवल्स रिपोर्ट किए गए हैं, द सेकंड लॉन्गेस्ट इन यूरोप. डेन्यूब रिवर जो हैव ड्रॉप्ड सो लो, क्योंकि यहाँ पर ड्राउट जो है ये फेस किया जा रहा है, दैट द हल्क्स ऑफ डजन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू जर्मन बैटल शिप्स जो है ये आर इमर्जिंग इन टू व्यू. तो इट्स क्वाइट अ कंसर्न, क्योंकि वी कैन से कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग द कोल्डेस्ट वेदर पॉसिबल. अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ रेन, जबकि इन कंट्रीज में बारिश का नामो निशान नहीं हुआ करता था ड्यूरिंग अ सर्टेन मंथ, और वो सारे लोग वहाँ पर ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं. तो कुछ कंट्रीज़ में हीट वेव इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स वगैरह, वाइल्ड फायर्स वगैरह जो है ये भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं. इसके बारे में काफ़ी बातें जो है अलग अलग दुनिया के मतलब दुनिया के अलग अलग कोने से जो है ये रिपोर्ट की जा रही है. एंड एनी सच अपडेट अगर ये हमारे हाथ लगता है तो डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करते हुए चलेंगे. देयर इज वन मोर अपडेट जो कि जेटस्टार के बारे में आया है. इफ यू हैव बीन ट्रेवलिंग विद जेटस्टार, या फिर यू हैव गॉट योर टिकट्स बुक्ड, और यू प्लान टू ट्रेवल विद जेटस्टार, तो

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर.
1: Traffic.
2: Milwaukee Packout Redemptions.
3: A cool high of 12, but final day. Northern Motorway, 30 minutes. Constellation Drive to the city, 52 from Silverdale. Heavy at Silverdale and on and off Constellation to the bridge. Northwestern, 45 Massey to town. Heavy on and off from Upper Harbour. Upper Harbour Motorway, slow northbound. Heavy through Greenhithe. Southern, 48 in from Manukau. Slow from Marurewa. Heavy from Otahuhu. Southwestern, heavy northbound through Whitty.
2: Don't miss the Milwaukee Packout Redemption offers. Available until the end of August. T's and C's apply.
4: The Beds Are Us birthday sale is on now with amazing savings, like the chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds Are Us, Manukau and Pokekohe, celebrating 36 years of great sleep.
5: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
6: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
7: Flooring Extra. Adore your floor.
8: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
9: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
8: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
9: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
8: Ye hai Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
9: 100% authentic and pure as mother's love.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds Are Us, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
12: तो एक्चुअली मैंने कहा था कि आपको एक अपडेट जो है ये हम जरूर देंगे जो सामने आए इन रिगार्ड्स विद जेटस्टार. इफ़ यू हैव बीन ट्रैवलिंग विद जेटस्टार, यू नो कि आपके लिए वहाँ पर जो यू नो बैगेज रूल्स होते हैं क्या है क्या नहीं. बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल विद जेटस्टार, बताया गया है कि वो ओवरहॉलिंग बैग रूल्स जो है उस पर कुछ काम कर रहे हैं. मतलब जो ओवरहेड लॉकर्स होते हैं, अब स्टैंडर्ड टिकट पर जो पैसेंजर्स होंगे उनको उसका एक्सेस नहीं मिलेगा. मतलब पैसेंजर्स अगर जो चाहते कि अपना 7 kg हैंड कैरी जो है ये ओवरहेड लॉकर्स में रखे, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा टू स्टोर देयर बैग्स देयर. फरवरी 2nd से जितने भी नए बुकिंग्स होंगे, यानी कि 2nd February 2027 से जितने भी नए बुकिंग्स होंगे, इन सभी बुकिंग्स में आपको मिलेगा एक अंडर सीट बैग सच एज अ बैक पैक, हैंड बैग या फिर लैपटॉप बैग, जिसका वजन अप टू 10 kg हो सकता है. लेकिन जो ट्रेवलर्स चाहते हैं कि ओवरहेड स्पेस में वो अपना हैंड कैरी जो है ये डाले लाइक अ सूट केस, देन दे मस्ट बाय प्रायोरिटी कैरी ऑन, जिसका मतलब ये होगा एक मिनिमम कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा $23 जो है ये पे करना पड़ेगा. एंड इट इंक्लूड्स अर्ली बोर्डिंग आफ्टर बिजनेस क्लास पैसेंजर्स एज वेल. सो दैट्स द चेंज दैट्स कमिंग फॉर जेटस्टार ट्रेवलर्स फ्रॉम 2nd February 2027. एंड टॉकिंग अबाउट द फैक्ट, कहा गया है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेशल्स वगैरह जो है डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ये भी ये रिलीज करने वाले हैं. सो इफ यू प्लान टू ट्रेवल विद दैम, कीप एन आई आउट. आज का हमारा इस घंटे का थ्रोबैक आपके लिए कहो ना प्यार है, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. 2000 में ये फिल्म आई, इसी का ये गाना कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में.

0: A secret destination. Two lucky people. One unforgettable adventure.
1: On vacation.
2: Take a trip.
1: Get away.
0: Plus, $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum.
3: I'ma get away.
0: Listen on 104.2 FM and Rover. Hum, accurate traffic.
4: Flixieven, you're skipping a bag.
5: Fine but cool today, a high of 12. A police incident in Epsom has shut part of Monaco Road and a few roads around there. It's really jammed up Green Lane West as well. Motorways are easing. Southern, 44 minutes Monaco to town. Slow from Manurewa, heavy from Otahu. Northwestern, 36 Massey to the city. Heavy on and off from there. Northern, 30 in from Constellation. Heavy patches from there and still quite slow at Silverdale.
4: Visit flexibin.co.nz for stockists, TCs and collection areas.
6: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
7: Kyun? Kya hua?
6: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents maange ki bas pooch hui mat. Ek hafta ho gaya, no response. Fir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
0: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
8: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
9: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
10: At Bunnings, you can make cleaning up your home easy with Sally's 750ml Rapid Mold Killer, only $9.90, or an all-set 50-litre clear storage container, just $8.99. Bunnings makes cleaning easy. Lowest prices are just the beginning.
11: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
12: मिसेस सिंह,
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
14: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz।
1: हम टाइम चेक।
15: गुड मॉर्निंग, 7:09 बज रहे हैं।
1: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
16: Morning, I'm Grace Conker with the latest at 9. In a developing story, five people have been injured, including one critically, in an unfolding police incident in Auckland's Epsom. One person is in custody and there are cordons in place on the busy Manukau Road between Ramfurly Road and Queen Mary Ave. Part of Campbell Crescent is also closed. There will be an increased police presence while inquiries are ongoing, with more information expected shortly. A person has been flown to Auckland City Hospital in a critical condition with injuries from a reported assault in Coromandel. Police say it was a family harm incident and they are investigating. Wage growth for retail workers has experienced a noticeable slowdown. Retail NZ says it rose 1% in the last year. Chief Executive Carolyn Young says it reflects tight economic conditions.
17: It's a really difficult trading environment. There's a relatively high level of unemployment. Inflation is higher. The pressures are on consumers around their disposable income.
16: There's a call for councils to install more drinking fountains in parks. Research found increasing access to free water could make shared spaces healthier and more welcoming. Professor Nick Wilson says they don't break the bank.
18: It only costs $4,000 to $6,000 per fountain installation. They really are a very low-cost item, especially compared to the cost of operating on children to extract rotten teeth.
16: To sport, where under pressure, FIFA President Gianni Infantino will hold a crisis meeting with senior staff in Morocco. It comes after he was forced to withdraw his plans to sell stakes in the World Cup to private investors. Infantino has drawn widespread criticism, with five European associations withdrawing their support for his re-election bid. Ben Stokes says he would absolutely love to coach the England cricket team one day. The all-rounder retired from the international game during the 2-1 series defeat to the Black Caps.
7: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari good brands nahi hai.
1: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम 7.5 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुंच चुका है. फील्स लाइक 6 डिग्रीज. हाई ऑफ 11 एक्सपेक्टेड है. बाद में चलकर ओवरनाइट 1 डिग्री आज का टेम्परेचर रहेगा. फाइन वेदर लेकिन एरियाज ऑफ इवनिंग फ्रॉस्ट जो है ये जरूर आज हम एक्सपीरियंस करेंगे. सनसेट तो 5:40 पीएम पर रहेगा.
7: व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बकते हो,
19: अरे कहना क्या चाहते हो.
15: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा आपके लिए लेकर आ रहे हैं. ऑन द ब्रेकफास्ट शो आज फॉर्च्यून और साथ में हैरिंगटन लिविंग एट बेड्स आर अस की ओर से आप भी हमारे साथ बने हुए हैं. थैंक यू सो मच. तो क्या बकते हो, ऐसी कुछ स्टोरीज दैट मेक यू से कि हम क्या बक रहे हैं, मतलब क्या ऐसा सच में होता है. वेल सर्टन थिंग्स डू हैपन इन रियलिटी एंड इट रियली हिट्स यू कि यार ऐसा भी क्या हो गया कि ये सिचुएशन सामने आया. बट आज की क्या वक्त है वो स्टोरी. वेल ये जो शख्स हैं आ रहे हैं खबरों में और ऑफ कोर्स इनको काफ़ी लोग जो है ये बोल रहे हैं कि माय गुडनेस क्या मतलब इनके जहन में चला होगा उस दौरान जब ये सिचुएशन का सामना कर रहे थे. एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इतना भी क्या था, थोड़ा एडजस्ट कर लेते. बट दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज़ अबाउट अ गाय मोंटाना में यूएसए में जहाँ पर एक हाइकर है और ये आए हैं खबरों में जहाँ पर इनके बारे में ये बताया गया है कि डेविड क्लाफ्टी ये अप्रोच कर रहे थे मोंटाना का ग्रेनाइट पीक विद टू फ्रेंड्स. जब वो स्लिप हुए एंड इनकी इनके स्लिप की वजह से इनके साइड में इनका जो ट्रैकिंग पोल है ये जाकर स्ट्रक हुआ और वहाँ पर इनके शरीर को पियर्स करता हुआ फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ये जो ट्रैकिंग पोल है ये निकल गया. नाउ व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड तो जो लोकल ग्रुप के लोगों हैं इन्होंने कॉन्टैक्ट किया यूजिंग जो ग्रामीण इन रीच सेटेलाइट डिवाइस और सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिशल्स जो है इन्होंने अपडेट किया थ्रू आउट द रेस्क्यू ऑपरेशन. जबकि इनके बारे में बताया गया है, मतलब ये जो ट्रैकर है इनके बारे में बताया गया है, इनका नाम डेविड बताया गया है कि इनको अपडेट कर रहे थे एंड ही वॉज ट्राइंग टू मूव टू अ सेफर स्पेस जहाँ से इनको रेस्क्यू ऑफिशल्स आसानी से रेस्क्यू कर पाते विद द पोल स्टिल लॉज्ड इन हिज बॉडी. ये जो ट्रैकिंग पोल था वो उनके शरीर के आर पार था एंड डिस्पाइट दैट वो दरअसल ट्रैक कर रहे थे टू अ सेफर पीक जहाँ से इनको रेस्क्यू किया जाता. डेविड के बारे में बताया गया है कि डेविड और उनके कंपेनियंस ने ट्रेवल किया रफली 10 माइल्स ओवर बोल्डर्स स्नो फील्ड्स और थिक वेजिटेशन जिसके बाद चलकर इनकी जर्नी जो है ऑफ मोर देन 6 आवर्स और जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 5,000 फीट हाई एल्टीट्यूड पर इन्होंने ये ट्रैकिंग जो है ये की बिफोर दे रीच दे व्हीकल जहाँ से ये रेस्क्यू हो पाते और फिर इवेंचुअली इनको ले जाया गया एक लोकल हॉस्पिटल में जहाँ पर डॉक्टर्स ने ये पोल रिमूव किया और ये वापस few days later अपनी नौकरी पर गए. जब इनसे वहाँ के जो लोकल सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंट्स जो है इन्होंने इनको प्रोवाइड किया था वो उनको फ्री में प्रोवाइड किया गया जिसके थ्रू ये रेस्क्यू हुए. लेकिन जब इनसे पूछा गया अबाउट द पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ हेलीकॉप्टर फ्लाइट जिसके जरिए इनको रेस्क्यू किया जाता और इनको वहाँ से जल्द निकाल कर लोकल हॉस्पिटल पहुँचाया जाता तो इनको पता चला कि इनका जो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू होता इट वुड हैव कॉस्टेड हिम अराउंड 36,000 to 40,000 पर ट्रिप. टोटल बिल इनको बाद में मिलता लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस फेडरल हेल्थ ऑफिशियल्स इतना इनको चार्ज किया जाता. जब डेविड को ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि भाई आई विल मैनेज थ्रू दिस पेन लेकिन 40,000 मैं तो नहीं भरने वाला हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए बिकॉज इनके पास इतने पैसे जो है पॉसिबिलिटी थी नहीं. इंश्योरेंस का भी पंगा पड़ता जिसकी वजह से ये फैसला इन्होंने लिया कि 40,000 तो मैं नहीं पे करूँगा फॉर दिस हेलीकॉप्टर रेस्क्यू बट आई विल मैनेज थ्रू द पेन 10 miles hike kar I'll reach the vehicle and get rescued by the officials safely. जिसके बाद आई रीच द हॉस्पिटल एंड जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो मैं ले लूँगा बट नो आई एम नॉट गोना डू दिस. सो आफ्टर ही रिवील्ड द रीज़न कि क्यों इन्होंने इमरजेंसी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए नहीं कॉल किया या वो रेस्क्यू नहीं लिया, लोगों ने इनको कहा रीजनेबल है, फेयर इनफ है कि आपने फैसला लिया बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू लेट गो ऑफ सच अ बिग अमाउंट इन सच अ सिचुएशन. बट अगर आपका हेल्थ एट रिस्क हो किसी भी सिचुएशन में तो पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए. सो पीपल आर एक्चुअली हैविंग डिफरेंट व्यूज ऑन दिस, बट व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर स्टोरी, आप भी हमें बता सकते हैं 5599 पर मैसेज करते हुए. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए लेकर आ रहे हैं. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर 104.2 FM पर आप हमें फिलहाल सुन रहे हैं या फिर रोवा ऐप के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं. थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए. व्हाट्स गोइंग ऑन का ये सफर आपके लिए, जहां पर थोड़ी देर बाद वी विल हैव अ लुक हमारे आसपास हमारे कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है व्हाट्सएप ऑकलैंड के जरिए.

0: What's going on?
1: What's up, Auckland? तो चलिए सबसे पहले आपको याद दिला रहे हैं, मेघ उत्सव ये होने जा रहा है इसी सैटरडे को 8 अगस्त को माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल पर 4:30 PM टू 8:30 PM ये रहेगा। और मेघ उत्सव दरअसल एक बहुत ही वाइब्रेंट और कलरफुल मॉनसून फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है भारत में, और उसका ये सेलिब्रेशन का एक ग्लिम्स यहाँ ऑकलैंड में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इसी शनिवार को। कल्चरल परफॉर्मेंसेज रहेंगे जिनमें ट्रेडिशनल इंडियन डांस एंड म्यूजिक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऑथेंटिक इंडियन फूड आप ट्राई आउट कर सकेंगे, यहाँ फूड स्टॉल्स मौजूद रहेंगे जिनसे, और बच्चों के लिए एक किड्स कॉर्नर ये भी रहेगा, और हर उम्र के लोगों के लिए गेम्स एंड एक्टिविटीज में पार्ट लेकर इनाम जीतने का मौका भी है। सो दिस इज समथिंग दैट्स हैपनिंग फॉर यू एब्सोल्युटली फ्री, इसी शनिवार को आप इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं। दूसरी ओर न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इन्वाइट कर रहे हैं 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट के लिए 22nd and 23rd of August को एट बर्कनहेड स्काउट्स हॉल। सभी प्लेयर्स जो डिफरेंट डिफरेंट स्किल लेवल्स के हैं आप जरूर इसका हिस्सा बन सकते हैं, और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन पर जानकारियों के लिए आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं, या फिर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को 02109085067 पर कॉल भी कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट लेकर आ रहे हैं आपके लिए रामलीला, एक टाइमलेस स्टोरी एंड इटर्नल सेलिब्रेशन जो होने वाला है इसी सैटरडे 8 अगस्त को एट 32 ग्लासगो एफ पापाटोएटोए। टिकट्स आर सोल्ड आउट लेकिन स्टॉल्स आर अवेलेबल, जिस पर अगर आपको डिटेल्स चाहिए मास्टर अशोक को 02117954 पर आप बेशक कॉल कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर कि अगर आप भी यू नो भगवत गीता डीकोडेड मास्टर क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप तय करना चाहते हैं, इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर इसे और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ये मौका आपके पास है। आपके लिए एक ट्रेन वेदांता टीचर है बीआर ईशान चैतन्य ऑफ चिन्मया मिशन, ये लेकर आ रहे हैं भगवद गीता डीकोडेड मास्टर क्लास, और ये रहेगा इसी शनिवार या माफ कीजिएगा इसे शुक्रवार को यानी फ्राइडे 7 अगस्त को 7:30 PM से 9 PM न्यू लिन कम्युनिटी सेंटर मेन हॉल पर 45 टोटार एवेन्यू न्यू लिन, इसके लिए आप पहुंच सकते हैं। एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री, डिटेल्स के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए chinmaya.org.nz आपको विजिट करना पड़ेगा। वैसे आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं एंड यू वुड वांट अस टू टॉक अबाउट दोज इवेंट्स और इसकी जानकारी हम अन्य लोगों तक लेकर आए, तो इसके लिए आप हमारे पास अपने कम्युनिटी इवेंट्स के जो डिटेल्स हैं ये ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com पर आप ईमेल्स अपना जो है ये हमें सेंड कर सकते हैं। वैसे याद दिला दें आपको कि सैटरडे 22nd अगस्त को 7 PM से वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोएटोए में होने वाला है भजन जैम्स। भजन जैम्स एक ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा जहां पर आप जो ट्रेडिशनल डिवोशनल भजन है इसको एक कंटेम्प्रेरी अरेंजमेंट में एंजॉय कर सकेंगे। टैलेंटेड वोकलिस्ट्स और म्यूजिशियंस को आप एंजॉय कर सकेंगे, परफॉर्म करता हुआ देख सकेंगे एक वाइब्रेंट कॉन्सर्ट लाइक सेटिंग में। यहां पर आपके लिए फ्यूजन ऑफ भजन और कीर्तन्स ये प्रेजेंट करने वाले हैं नन अदर देन रवितेश देव अपने इनक्रेडिबल बैंड के साथ, और ये रहेगा सैटरडे 22nd अगस्त को, प्रेजेंटेड बाय साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड एंड क्यूरेटेड बाय न्यूजीलैंड कल्चरल ट्रस्ट। ये स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहें और इस बहुत ही अमेजिंग यू नो म्यूजिकल डिवोशनल नाइट का हिस्सा बनना चाहें तो टिकट्स ग्रैब कर लीजिए, दे आर $30। आप eventbrite.co.nz से टिकट्स जो है ये ले सकते हैं, या फिर जो लाइव लोकेशंस है जैसे जेस सुपरमार्केट पापाटोएटोए, वैली फ्रेश पापाटोएटोए, शिव प्रसाद इन सन्स कैल्स्टन, यहाँ से भी आप टिकट्स ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को लेकर आना चाहते हैं इस इवेंट के लिए, इफ़ दे आर 5 years एंड अंडर तो उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री एंट्री है, और स्नैक्स एंड कावा जो है वेन्यू पर सेल किया जाएगा ऑन द डे। बट रिमेंबर एक और जहां पर आप रवितेश देव जैसे कमाल के कलाकार को एक कंटेम्प्रेरी कॉन्सर्ट लाइक अरेंजमेंट में परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं विद लाइव बैंड, तो वहीं पर अपना योगदान आप दे सकते हैं टुवर्ड्स गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी एज वेल। सो eventbrite.co.nz से टिकट ग्रैब कर लीजिए, या जय सुपरमार्केट पापाटोएटोए, वेली फ्रेश पापाटोएटोए, या शिव प्रसाद इन सन्स कैल्स्टन से भी आप टिकट्स जो है ये जरूर ले सकते हैं।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए जबकि हम लेकर आ रहे हैं What's Going On में और इस घंटे थोड़ी देर बाद आज का डेली राउंड अप देयर सम वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो सामने आए हैं हमने आपको पिछले घंटे भी इसके बारे में डिटेल्स जो है ये बताए थे बट फर्दर इन्फॉर्मेशन हैज़ कम थ्रू इन रिगार्ड्स विद द क्रैश जो कि मैनिका रोड नियर एप्सम जो है यहाँ पर हुआ और इस क्रैश में रिपोर्ट किया गया है कि सोफा 5 लोग जो है ये इंजर्ड हुए हैं एक सीरियस इंसिडेंट जो है ये रिपोर्ट किया गया है एंड आफ्टर 5 पीपल हैव बीन रिपोर्टेड इंजर्ड इन this serious incident this morning 3 people were taken to the hospital with 1 person in a critical condition as well aur police ne kaha hai ki is mamle mein ek vyakti ko custody mein bhi liya gaya hai to ek petrol station wo ka hai nearby jahan par inhone kaha ki inhone dekha tha ek vyakti ko driving a badly damaged car jo ki you know kafi raftaar se ja raha tha into the station and allegedly ye inhone koshish ki thi to try and steal another vehicle as well और एक लार्ज सेक्शन ऑफ मेनिका रोड जो है से क्लोज भी किया गया है विद डिटोर्स इन प्लेस जबकि इमरजेंसी सर्विसेज जो है इस मामले को रिस्पॉन्ड कर रही है और साथ में पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है और अन्य खबरों में भी कुछ डिटेल्स सामने आए हैं जो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे इनफैक्ट न्यूजीलैंड में शॉप लिफ्टिंग के बारे में कुछ अपडेट जो है ये सामने आया है जो आज का डेली राउंड अप आपके लिए हम लेकर आएंगे उसमें फर्दर डिटेल्स आपको हम डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाले हैं बाय द वे आपको याद दिला दें हमारे अवार्ड विनिंग पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड के बारे में जो आप कैचअप कर सकते हैं चेकआउट कर सकते हैं इफ यू हैव एवर वंडर्ड कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस जब एक एम्प्लॉयर जो है कुछ लाइंस क्रॉस कर दे इन न्यूजीलैंड एज एन एम्प्लॉई आपके क्या राइट्स हैं जेन्युइनली आप किन चीज़ों के लिए एंटाइटल्ड है व्हेन यू साइन अ जॉब कॉन्ट्रैक्ट और आपके सिक लीव्स का क्या होता है एनुअल लीव्स का क्या होता है अगर ये सारी चीज़ें आपको समझनी है देन यू मस्ट हियर द जो लेटेस्ट एपिसोड है ऑफ अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूसबे क्योंकि इस एपिसोड में दे हैव हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद अभय कोहले जो कि प्रिंसिपल एडवाइजर है एम्प्लॉयमेंट सिस्टम गाइडेंस और एंगेजमेंट के और ही इज एट एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड जहाँ पर अभय जो है इन्होंने कुछ ज़रूरी बातों पर रिवील किए हैं सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड यू नो चीज़ें जो एज एन एम्प्लॉई एंड एज एन एम्प्लॉयर दोनों मामलों में हमको समझना चाहिए सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू वांट द फुल लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑडियो आप ड्राइव लिखकर 5599 पर सेंड कर सकते हैं और आपको जो लिंक है अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूसबे का ये ज़रूर मिल जाएगा तो वो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं वैसे ब्रेकफास्ट कैचअप का भी पॉडकास्ट आपके लिए अवेलेबल है और ये बेसिकली पॉडकास्ट एक ऐसा कैचअप पॉडकास्ट है जहाँ पर बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम द शो दैट यू मिस आउट इफ़ यू आर नॉट एबल टू बी पार्ट ऑफ द लाइव शो तो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और ये आपके लिए अपडेटेड होता रहता है ऑन डिफरेंट डेज तो वो आप ज़रूर सुन सकते हैं इफ़ यू नीड टू लिसन आउट टू द ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट बी एफ लिख कर भी 5599 पर आप सेंड कर सकेंगे एंड ऑटो रिप्लाई में आपको पूरा का पूरा लिंक जो है ये मिल जाएगा राइट नाउ चलिए आपके लिए कुछ और भी अपडेट्स हम लेकर आ रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स इन अ वाइल आज बॉलीवुड की कुछ और लेटेस्ट खबरें ये भी आपके नाम हम करेंगे
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
4: मैं लाऊं अपना ए गेम
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

नेहा कक्कर और साथ में रफ्तार, इनकी आवाजों को आप सुन रहे थे अलोंग विद यसर देसाई. आपके लिए ये गाना ओरिजिनली देखा जाए तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था और उसके बाद चलकर फुकरे रिटर्न्स 2017 में आई थी, उसके लिए इसको रिक्रिएट किया गया विद बिट्स एंड पीसेस ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब जो है कैप्ट इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग एज वेल. बट राइट नाउ चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपके लिए जबकि हम लेकर आ रहे हैं कुछ और अपडेट्स. अनफॉर्चुनेटली अ सैड न्यूज़, जहाँ पर बहुत ही कमाल के एक्टर यशपाल शर्मा जो है इन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्रिब्यूट पे करते हुए रिवील किया वेटरन एक्टर प्रदीप रावत के बारे में और उनकी डेथ के बारे में. रिपोर्टेडली कहा गया है प्रदीप रावत जो है ही वाज बैटलिंग विद ब्लड कैंसर और हाउएवर अभी तक तो कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन जो है ऑफ द सेम ये नहीं रिपोर्ट किया गया, बट डेफिनेटली प्रदीप रावत इज नो लॉन्गर विद अस एंड अ वेरी टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने ऑस्कर विनिंग या नॉट विनिंग ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लगान में भी काम किया था जिसमें इन्होंने एक काफ़ी ज़रूरी किरदार जो है ये प्ले किया था. और साथ ही साथ गजनी, ये फिल्म अगर आपको याद हो उसमें इन्होंने गजनी का रोल जो है ये प्ले किया था, द विलन ऑफ द मूवी जो है ये इस फिल्म में दिखे थे. बट नॉट जस्ट दैट, इन्होंने और भी बहुत सी फिल्मों में काम किया है. ही वॉज पार्ट ऑफ बी आर चोपड़ा की लैंडमार्क सीरीज महाभारत एज वेल एंड ही लेटर ऑन वेंट टू स्टार इन क्लासिक्स लाइक अग्निपथ जो 1990 में आई, सरफरोश 1999 में आई, लगान 2001 में आई. लेकिन ऑफ कोर्स इनका जो स्टारडम है ये शुरू हुआ जब इन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म गजनी में काम किया था एज द विलन ऑफ द फिल्म एज गजनी. तो अनफॉर्चुनेट न्यूज, बट यस प्रदीप रावत जो है ही इज नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड और इनके लिए काफी को एक्टर्स हैं इनके जो इनको ट्रिब्यूट जो है ये पे कर रहे हैं. दूसरी ओर आपके लिए कुछ और भी अपडेट्स जो है ये हम लेकर आए हैं. दिस इज़ अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग शो. ये शो जो है नेटफ्लिक्स पर आने वाली है और इसके बारे में कहा गया है कि ये पर्टिकुलर शो इज़ समथिंग जो लोग इंजॉय करने वाले हैं बिकॉज इट हैज़ बीन डन बाय द मेकर्स ऑफ सारा भाई वर्सेस सारा भाई. सो लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर शो इज़ रिसीव्ड और नेटफ्लिक्स पर जबकि फीचर होने वाली है तो कुछ डिटेल्स और जैसे ही हमारे हाथ में लगेंगे हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इस शो के बारे में. बट समथिंग जो कहा गया है कि नेटफ्लिक्स इज़ क्वाइट कमिटेड कि वो सपोर्ट करने वाले हैं ऐसे कुछ अमेजिंग राइटर्स को जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपना टैलेंट दर्शाने के लिए. एंड नाउ नेक्स्ट जनरेशन इंडियन राइटर्स जो है इनके लिए खास प्रोग्राम जो है ये होने वाला है विच विल बी ब्रॉट बाय नेटफ्लिक्स और वो अपॉर्चुनिटी देंगे ऐसे बहुत से राइटर्स को कि वो अपने कमाल की क्रिएटिविटी को दर्शा सके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू जिसे नेटफ्लिक्स बैक करने वाले हैं. सो दैट इज़ समथिंग अमेजिंग आई मस्ट से और अच्छा होगा फॉर ऑल दीज टैलेंटेड पीपल जिनको शायद एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है टू स्टार्ट ऑफ विद, ये फाइनली इनके लिए होगा जरूर. कमिंग अप नेक्स्ट आपके लिए आज का डेली राउंड अप 23 मिनट्स अवे फ्रॉम 10 फॉर नाउ.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट,

0: At Southern Cross Pet Insurance, we know your pets are your besties. They love cheering you up when you're down, and they're always there for you, even when you'd much rather be left alone. So show your pet bestie some love by signing up to Southern Cross Pet Insurance with the promo code BESTIE by 31st of August, and you could win one of 25 $200 prezi cards for you and your pet bestie to enjoy. Offer ends 31st of August. TCs and exclusions apply.
1: It's business month at Warehouse Stationery with big deals on business essentials. Take 20% off Jasper J Emerge office furniture and save $80 on a Brother laser printer now $299. Don't miss big deals for your business at Warehouse Stationery. Conditions apply.
2: The Qantas Global Sale is now on. Discover a world of destinations on sale, including Aussie, Asia, South Africa and more. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sale ends August 14. Terms and conditions apply.
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
4: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
5: अब हमारा क्या होगा
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
7: तो क्या करें
8: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
11: What's going on?
12: तो चलिए आज का डेली राउंडअप भी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं डेली राउंडअप में खबरों के मामले में बातें सामने आ रही हैं एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड इन मशीनरी एट अ मीट प्रोसेसिंग प्लांट ऑकलैंड ओटाहुहु में और ये बात जो है कल रात इनफेक्ट ये घटना जो है ये घटी इमरजेंसी सर्विसेज इन्हें कल देर रात बुलाया गया एट द लोकेशन जहां पर ये घटना घटी बट द पर्सन वॉज प्रोनाउंस्ड डेड एट द सीन अथॉरिटीज फिलहाल इस मामले की जांच कर रहे हैं दिस वर्क प्लेस एक्सीडेंट की जांच कर रहे हैं और जैसे कोई अपडेट्स हाथ लगेंगे डेफिनेटली आप तक डिटेल्स हम पहुंचाएंगे 5 लोगों को गंभीर हालत में पाया गया फॉलोइंग अ सीरियस इंसिडेंट इन ऑकलैंड्स एप्सम मैनिका रोड के पास दिस मॉर्निंग और कहा गया है 3 लोगों को जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया है उनमें से एक शख्स क्रिटिकल कंडीशन में है और पुलिस ने कहा है कि एक अन्य व्यक्ति को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया है एंड पार्ट ऑफ मैनिका रोड वॉज क्लोज्ड वाइल इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड दिस मॉर्निंग इसके साथ साथ शॉपलिफ्टिंग की बात अगर करें तो न्यूजीलैंड में रिटेल थेफ्ट जो है इट हैज़ रीच्ड इट्स हाईएस्ट लेवल इन मोर देन 15 इयर्स थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस जो है ये लगाए गए हैं पिछले साल कई लोगों पर फॉर शॉपलिफ्टिंग और पुलिस ने कहा है कि मैनी ऑफ दीज थेफ्ट्स इन्वॉल्व्ड रिपीट ऑफेंडर्स जो प्रोडक्ट्स की चोरी कर रहे थे इन बल्क टू रीसेल देम रादर देन ओनली वन पर्सन जो शायद यू नो द रीजन वॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे एंड दैट्स वाई दे वर ट्राइंग टू स्टील दीज आइटम्स जो कई सिचुएशन में लोगों ने एज अ एक्सक्यूज दिया भी है रिटेलर्स ने कहा है कि वायलेंस एंड अग्रेशन इन स्टोर्स आर also increasing and they are calling for stronger action but ye jo details samne aaye hain ye kafi concerning hai ki retail theft new zealand mein apne highest level mein pahunch chuka hai in more than 15 years aisa record jo hai ye samne aaya hai
13: let's go
14: straight from the heart unlock your property's true sale value with

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: तो चलिए इसी के साथ साथ अब देखते ही देखते हमारा भी जाने का समय हो चला है. आप सभी के साथ के लिए, समय के लिए थैंक यू सो वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे साथ आज के सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए. आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. जहां कहीं भी आप हैं, साथ हमारा दे रहे हैं, याद रहे हम पर हमारा साथ देते रहे, इसी तरह से हमारे साथ बने रहे. कुछ बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं. वैसे अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको तो पहले से ही पता चल जाएगा कि अच्छा कुछ तो होने वाला है. पर अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, इतना हम आपको बता दें कि थोड़ा ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके फ़ायदे की बातें आपके लिए हम ज़रूर लेकर आते हैं. और ये चीज़ें अगर आप अटेंशन देकर, यू नो, इफ़ यू पे अटेंशन टू दीज थिंग्स एंड यू आर लिसनिंग टू इट, तो आपको तो पता चल ही जाता है. बट वी डोंट वांट कि आप इससे मिस आउट करें. तो इसीलिए आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी धमाकेदार चीज़ें हम पर आपके लिए होंगी, और इनसे वाकिफ होने के लिए, इनसे फ़ायदा उठाने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, जो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे. और बाय द वे ये भी याद दिला दें कि आप अगर रोवा ऐप का इस्तेमाल करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो रोवा ऐप पर देयर इज सो मेनी मोर थिंग्स टू एक्सप्लोर. आप एनी टाइम हमारा कोई भी शो सुन सकते हैं. मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए लेकर आते हैं. 10 AM से मिड डे तक रहता है माई टाइम विद काशिका, एंड मिड डे यानी कि दिन में 12 से लेकर शाम 3 बजे तक आपके साथ केदन बने रहते हैं लंच बॉक्स के सफर में. एंड देन कम्स इन सैंडी विद कॉफी ब्रेक फ्रॉम 3 to 4 PM. लेकिन उसके बाद होता है शुरू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रूज़बे 4 to 7 PM. एंड 7 PM to 8 PM हैप्पी आवर, बैक टू बैक अमेजिंग हैप्पी म्यूजिक आप एंजॉय करते हैं. जिसके बाद मंडे टू थर्सडे आपके लिए होता है नाइट कैफे, जहां पर हर रोज कुछ डिफरेंट प्रोग्राम. मंडे को कुछ मस्ती भरे गाने, ट्यूसडे को आपके लिए जो कोक स्टूडियो के प्रोग्राम है ये हम लेकर आते हैं. वेंसडे को कुछ अमेजिंग ट्रैक्स जो है ये मिड वीक मसाला जो है ये आप एंजॉय करते हैं. थर्सडे को रोमांटिक नाइट होता है आपके लिए, रोमांटिक गाने. एंड कम्स फ्राइडे, जहां पर फ्राइडे को फ्राइडे नाइट ड्राइव में बैक टू बैक रिमिक्स सॉन्ग्स जो है ये भी आप डेफिनेटली एंजॉय करते हैं. बट डोंट फॉरगेट, वीकेंड में भी आपके लिए सैटरडे ब्रेकफास्ट 6 से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे से शाम 6 बजे तक रेडियो पब. एंड देन कम्स 6 से लेकर रात 12 बजे तक, जहां पर अगेन बैक टू बैक म्यूजिक आप एंजॉय करते हैं. संडे को शुरुआत होती है संडे ब्रेकफास्ट के साथ 6 AM to 12 PM. एंड 12 मिड डे से लेकर शाम 6 बजे तक होता है आपके लिए जस्ट चिल का प्रोग्राम. और उसके बाद आपके लिए शुरू होता है संडे नाइट मेलोडी 6 PM to midnight, जहां पर बहुत सारे खूबसूरत अनप्लग्ड सॉन्ग्स, गजल्स, 90s के हिट्स और कवर सॉन्ग्स, ये सब कुछ आपको सुनने को मिलता है. सो देयर इज अ लॉट जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, और हम स्पेशली फॉर यू ऑल. एंड उम्मीद है कि इसका मजा आप जरूर उठाएंगे हमारे साथ शामिल होते हुए. फिलहाल अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होती है ठीक सुबह 6 पर.

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिल्ली से बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप तो
4: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Bedzaras. Sleep easy for less at Bedzaras Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Coffee? The usual?
7: How about the unusual?
8: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
9: The Bedzaras birthday sale is on now with amazing savings. Like the chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in-store and online. Bedzaras, Medical and Pukekohe, celebrating 36 years of great sleep.
10: Pooja ki thali mein rakhi sajate hain. Dhagon ke judne se dil mil jate hain. माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
11: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
12: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
13: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
14: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
13: घर बेचने से पहले NZPMI के पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
14: पर डेवलपमेंट के पैसे
13: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
0: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. Five people have been injured, including one critically in Auckland's Epsom. Rebecca Hunt with the details.
16: Police were called to a serious incident on Manukau Road just after 7 this morning. Cordons have been set up between Ranfurly Road and Queen Mary Ave, with part of Campbell Crescent also closed off. One person is in custody and three people are in hospital. Two others were treated at the scene. Residents can expect an increased police presence.
15: Staying in Auckland, and a person has died in a workplace incident at a meat processing plant in Otahuhu. Emergency services were called around 10:30 last night. The person pronounced dead at the scene. They were reportedly trapped in a machine. WorkSafe has been notified and says it's making initial inquiries. And retail workers are being encouraged to seek out opportunities despite sluggish wage growth. A Retail NZ guide reveals businesses in Taranaki pay the highest on average, just shy of $31 an hour. Chief Executive Carolyn Young says it does pay to look around.
17: You could be earning over $100 an hour in hardware if you were a store manager, or you could be earning over $120 in supermarkets. So it's quite a wide variety.
15: In sport, FIFA President Gianni Infantino has called a crisis meeting in Morocco. Senior staff have been asked to attend as Infantino faces fierce opposition for attempting to sell stakes in the Football World Cup to private investors. And in rugby with Shift 4, Springboks first five, Sasha Feinberg in Gomazulu will start against Argentina in Buenos Aires on Sunday morning. He's been out for 2 months with a high ankle sprain.
18: Obviously, it was disastrous when it happened and it wasn't enjoyable, but I just made the most of the time off.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning winning is fun. Call 0800-462626.
6: The highs of 11, overnight temperature of 1, aaj ka forecast bataya ja raha hai. And it feels like 6 degrees right now. Kuch frost jo hai overnight develop ho sakti hai. 5:40 par sunset bhi bataya ja raha hai.
0: Non-stop Bollywood.
19: Jo bhi karte shiddat ke saath karte
0: hain. Hum playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
20: My Time with Kashika.
6: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में 10:03 हो चुके हैं. आपका साथ निभाने के लिए मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक आ चुकी हूँ और कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है. वैसे थोड़ी देर बाद हम ऑफिस शाउट आउट भी देने वाले हैं. एक 6-word स्टोरी आज की. आज आप कुछ फनी वाली अगर ढूंढ सकें तो वो ज़रूर बताइएगा. एंड थोड़ी देर बाद हमारा साथ निभाने के लिए हमारे एक्सपर्ट आ जाएंगे. देखते हैं उन्होंने क्या सोच रखा है हमसे आज बात करने के लिए. बट अगर आप भी कुछ बातें पूछना चाहते हैं अशोर वन के नितेश हीरा से तो मुझे ज़रूर बताइएगा. वैसे अच्छा वक्त कभी भी दिखाई नहीं देता, पर ये सच है कि दिखा बहुत कुछ जाता है. तो आपको ये वक्त क्या क्या दिखा के जा रहा है वैसे ये ज़रूर बताइए. आपको आपका बर्थडे याद दिला रहा है कि नहीं दिला रहा है? क्योंकि अगर आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो आप कर रहे हैं विद नन अदर दैन काजोल एंड जिनेलिया देशमुख. इनके साथ तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर ही रहे हैं. इनका कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ज़रूर मुझे बताइएगा. लेकिन मेरे पास कुछ सवाल अगर आ जाएं तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मैं एक्सपर्ट से पूछूँगी इन एक्सपर्ट अड्डा. आपका दिन भाई ठंड है, बहुत ठंड है, लेकिन ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा वार्म रहना है. गर्म गर्म पानी भी पीना है, मतलब वार्म वाटर, जस्ट टू कीप योरसेल्फ गोइंग.
0: बचाओ क्या,

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: सो नितेश जी के लिए मेरे पास एक सवाल है। नितेश जी फ्रॉम अशोवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं नितेश जी?
2: गुड मॉर्निंग कशिका जी, आई एम वेरी गुड, आप बताइए।
1: एकदम बढ़िया। आज एक मेरे पास सवाल था, मैंने वैसे यहाँ पूछा भी टेक्स्ट करके कि कोई टेक्स्ट प्लेटफॉर्म के जरिए बता सके, बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि एट द टाइम ऑफ क्लेम हमें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जैसे कि आप हैं, फॉर अ ट्रॉमा कवर या फिर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम हम कैसे कर सकते हैं? यू कुड प्रोबेबली बी द बेस्ट गाइड।
2: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए क्लेम के टाइम पे क्लेम का जो सक्सेस या फेलियर होता है कशिका जी, वो एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछें तो वो पॉलिसी खरीदते टाइम ही ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पॉलिसी लेते टाइम सबसे जरूरी चीज जो होती है ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर, जिसको बोलती है इंश्योरेंस कंपनी। इन सिंपल वर्ड्स ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर का मतलब है क्लाइंट की जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी अपनी हेल्थ इंफॉर्मेशन, मेडिकल इंफॉर्मेशन जो डॉक्टरों ने उनको लिखा है नोट्स में, वो क्लियरली इंश्योरेंस एप्लीकेशन में भर दे। नाउ एप्लीकेशन लेते टाइम काफी सारे लोगों के लिए वो समझना बहुत जरूरी है। लॉट ऑफ पीपल सिंपली थिंक उनके लिए जो हेल्थ कंडीशन नॉर्मल है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान गया 4 हफ्ते पहले पॉलिसी लेने से पहले, जरा सा पेट दर्द था और हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जस्ट पेन किलर दे दिया, दैट वाज नॉर्मल फॉर देम, बट वो डॉक्टर ने मेडिकल नोट्स में लिख दिया। अब एप्लीकेशन करते टाइम अगर उस इंसान ने वो पॉलिसी में नहीं बताया है कि मैं डॉक्टर के पास गया था 4 हफ्ते पहले पेट दर्द के लिए और उसने मेरे को दवाई दी थी, क्योंकि उनके दिमाग में है ये तो सिर्फ नॉर्मल है, और उसके 2 साल बाद अगर उससे रिलेटेड कुछ स्टमक से रिलेटेड, गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड कोई कैंसर कुछ इश्यू आ जाता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वो क्लेम के टाइम पे फिर क्या होगा वो आपको बताता हूँ। वो इंश्योरेंस कंपनी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगी कि भाई आप 4 हफ्ते पहले पॉलिसी से वो गए थे लेने डॉक्टर के पास कंसल्टेशन, राइट? सो व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम, उनको दोबारा से अंडरराइट करनी पड़ेगी पॉलिसी, दोबारा से असेस करनी पड़ेगी कि अगर आपने बताया होता तो पॉलिसी के टर्म्स क्या होते। उस टाइम पे आपको एक एडवाइजर जो समझता हो सारा कुछ, उसका सपोर्ट 100% चाहिए होता है एप्लीकेशन के टाइम पे भी और क्लेम के टाइम पे भी। एंड वी गेट सो मेनी केसेस जब जहाँ पे क्लेम्स डिक्लाइन हो गए या फिर अभी डिले हो रहे हैं क्योंकि क्लाइंट्स ने किसी वजह से, किसी एडवाइजर ने बोला कि ये चीजें मायने नहीं रखती हैं एप्लीकेशन टाइम पे। वो चीज समझना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। एंड क्लेम के टाइम पे जो अंडरराइटर इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है उनका फैक्चुअल रिस्पांस देना बहुत जरूरी होता है रादर देन गेटिंग इमोशनल। सो दैट इज वेयर यू नीड अ राइट प्रोफेशनल एडवाइजर विद यू।
1: एब्सोल्युटली, एंड दैट इज वेयर वी हैव यू, यू नो, एट द टाइम्स व्हेन वी एक्चुअली रिक्वायर यू। सो द मैजिक नंबर टू गिव अ कॉल वुड बी फॉर नितेश हीरा जी वुड बी 0800 77 हीरा, एम आई राइट?
2: Absolutely right.
1: Yeah. 0800 77 हीरा पर आप नितेश जी से संपर्क कर सकते हैं। नितेश हीरा अ फेमस नेम फॉर अश्योर वन, और इनकी वेबसाइट assure1.co.nz
2: करेक्ट?
1: ओके, देखिए मैं होमवर्क करके आई हूँ आज। सो थैंक यू सो मच नितेश जी फॉर योर टाइमली कॉल एंड फॉर गाइडिंग अस थ्रू, एंड वील टॉक टू यू सून।
2: एनी टाइम, माय प्लेजर।
1: थैंक यू जी, बाय बाय।
2: Bye. My time with Kashika. आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप ही तो नहीं। On vacation. A secret destination.

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover.
1: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
4: Hello. NZHL helps you get ahead on your mortgage without needing a sugar mama, faking a back injury for the payouts.
5: Oh, my back.
4: Becoming a contributing member of OnlyToes.com. Doing your own dental work. Then cashing in with the Tooth Fairy.
6: Score.
4: Selling your swimmers, staycationing in Hamilton, dumpster diving, moonlighting, scrimping, skimping, regifting, login sharing, or sucking up to your rich lip-kissing uncle. Mwah. Nope, there's a better way to have a mortgage and a life with NZHL.
7: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
1: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok, one epic trip. 5-star all-inclusive stays, breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
8: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
9: Office shout out.
10: जब मैं ऑफिस शार्ट आउट की बात करती हूँ ना, तो मेरे पास कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है फिर से. आई हैव गॉट टीना फ्रॉम द वगार क्वीन है वो, एंड वगार किचन जो है उनका माउंट रॉस्कल से सुन रही हैं, और आई थिंक किसी के ऑर्डर्स जो टेक अवे के हैं वो रेडी भी कर रही हैं. चलिए, यहाँ तक तो हम जब पहुँच ही चुके हैं तो आपके साथ मुझे कई चीज़ें होती हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और कहती हूँ कि इन सब चीज़ों से मैं आपको वंचित नहीं रखना चाहती. तो मेरे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी बस थोड़ी ही देर बाद.
8: टॉप हिट ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: I'm good.
2: Are you ready? Chatbusters.
3: थोड़ा तो हॉल बना दे.
4: So, मैं वर्क एंड इनकम सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में बात कर रही हूँ. तो द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट MSD ने प्लान किया है टू कट द नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स एट वर्क एंड इनकम थ्रू आउट द कंट्री. सो ये सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं ये एक काफ़ी थ्रेटनिंग चीज़ रहने वाली है फॉलोइंग द यू नो मर्डर ऑफ टू एशबर्टन वर्क एंड इनकम एम्प्लॉयज इन 2014. तो ये क्रू जो था अब बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी मेजर्स पे करीब $80 मिलियन लगाए जा चुके हैं और काफ़ी सारे जो है एरियाज़ में ये इफ़ेक्ट किया जाने वाला है. चलिए एक बहुत ब्यूटीफुल से ट्रैक की तरफ चलते हैं.

0: ईट बेटर लिव बेटर, लेकिन द वेट हैज़ गॉट शॉर्टर. आज हो गई है 5 अगस्त और एक्साइटमेंट डबल हो चुका है क्योंकि इमरान हाशमी का ट्रेलर फॉर आवारापन 2 ये कल रिलीज होने वाला है. एंड एक लाइव इंटरेक्शन के दौरान इमरान हाशमी ने बताया कि यू नो सम डेट्स वर लाइक टीज़र जो था बहुत ही बढ़िया था, और ऐसे में इमरान हाशमी इज़ बैक एज शिवम पंडित अलॉन्ग विद दिशा पटानी और शबाना आज़मी. इसमें बहुत अच्छी कास्ट है, थोड़ी न्यू है, बट सोलफुल म्यूज़िक लगता है जहाँ पर सबका गाना एक एक. आई थिंक अखिल सचदेव, अमाल मलिक, जीत गांगुली, मिथुन, इन सबका यू नो यूज़ किया गया है, इनके टैलेंट का यूज़ किया गया है. बट 14 अगस्त के दिन ये फिल्म जो है रिलीज़ होने वाली है विशेष के सौजन्य के जरिए, विशेष भट्ट प्रोडक्शंस के तले.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप. वेस्ट वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
3: क्या? कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा, Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: है और ये पावर चूज करता है व्हाट यू वांट टू डू, इसे किस तरह से लगाना चाहते हैं, 01 या 10। अल्टरनेटली आपको बता सकते हैं, शायद इससे ये भी हो सकता है कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो ज़ीरोस होते हैं फर्स्ट नंबर को इंक्रीज़ करते हैं, फर्स्ट नंबर की पावर को इंक्रीज़ करते हैं। सो कंसिडर द टोटल नंबर्स जहाँ पर आपको ज़ीरोस जो नज़र आ रहे हैं, इट्स गॉट अ वेरी सिम्बॉलिक मीनिंग। जैसे कि इफ़ यू आर ड्रीमिंग ऑफ 5000 और रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 और फिर एक ज़ीरो, तो ये पावर जो है आपको पता है, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया ज़ीरो लगाने से क्या क्या हो जाता है, तो ज़ीरो हैज़ इट्स ओन बिग वैल्यू। एंड इफ़ यू आर ड्रीमिंग अबाउट 00 तो वो रिप्रेजेंट करता है फीलिंग अबाउट दैट देयर इज़ बीन नथिंग लेफ्ट टू डू, जहाँ पे आपको लगता है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, तो वहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाती है, जहाँ पे आपको लगता है जेलेसी, यू नो अबाउट नोटिसिंग नथिंग इज़ लेफ्ट, ऐसा होता है। और जेलेसी जो होती है वो दूसरों को अलाउ करती है कि एक और पर्पस ढूंढती है कि बातचीत करने का। अब ये फीलिंग्स जो हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला होता है ये भी नहीं पता होता। वन डज नॉट लाइक व्हाट्स हैपनिंग एंड एक ज़ीरो तो खैर बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ये 00 कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स। वैसे इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड दी नंबर सिंबोलिज्म्स। जब हम कहते हैं 0 to 10 तो गॉड इज़ टेलिंग अस अ स्टोरी दैट इट्स अ लर्निंग ऑफ डेवलपमेंट। तो ये पावर जो है अगर आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल रियलाइज दैट ये एक एक्सपीरियंस से डिफरेंट होगा। सो लेट मी नो इफ देयर इज समथिंग एल्स वे यू आर स्टक।
1: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI. Mm-hmm.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: सो मैं आपको एक ऐसे ब्यूटीफुल से ट्रैक की तरफ लेके चलती हूँ जहाँ पर आई कैन से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लव स्टोरीज ऑफ जैसे रितेश देशमुख एंड जिनीलिया डिसूजा और ऐसे में काजोल एंड साथ में अजय देवगन की जोड़ी वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल थी। और एज इन्होंने कितनी सारी फिल्म्स थी, खास तौर पे 1992 में बेखुदी फिल्म में इन्होंने साइन अप किया था और उसके बाद बाजीगर में शाहरुख खान के ऑपोजिट आई थी, उधार की जिंदगी, ये दिल लगी सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार के साथ, एंड देन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद तो आई थिंक शी नेवर लुक्ड बैक। तो भाई चलो आपको मैं लेके चलती हूँ एक ऐसे गाने की तरफ जिस गाने के साथ यू नो वो प्यार और वो इजहार नज़र आ रहा था अजय देवगन का।

0: gentlemen.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना-देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है. कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट.
1: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
4: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. A morning of chaos in Auckland's Epsom after an incident left five people injured. One person has been arrested with cordons in place along Monaco Road. RNZ says it understands a dog was killed and that a man allegedly stole a car before crashing into cyclists. Police say an update is expected. Staying in Auckland, and WorkSafe is making initial inquiries after a death at a meat processing plant. Emergency services responded to the site in Otahuhu around 10:30 last night. The person was reportedly trapped in a machine. Retail NZ believes there's no cause for alarm despite a slowdown in wage growth. Its annual guide reveals the average hourly pay for workers in the sector has risen by just 1%, but Chief Executive Carolyn Young says there are benefits.
5: Over 50% of retailers offer staff discounts on products that they sell, and 59% offer great opportunities to be upskilled.
4: And Auckland's troubled downtown car park has been fast-tracked for redevelopment. It'd see the seven-storey building demolished and replaced with two skyscrapers, three podium buildings and a new laneway network. The panel identified issues from traffic during construction, especially on hotel pickup and drop-offs, but say this would be addressed through consent conditions. In rugby with Shift 4, the Springboks face Argentina in Buenos Aires on Sunday in their last test before taking on the All Blacks. Several players returning from injury, coach Rassie Erasmus outlining his goals.
6: Each win, each guy's getting back for match fitness. It's trying to get cohesion and the plan on the field right.
4: And police in Scotland are investigating claims that several athletes have gone missing after the Commonwealth Games in Glasgow. Four boxers from Uganda and one from Pakistan have failed to return home.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
7: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस.
8: सूचित किया जाता है कि शनील सुधाकर, अश्नील सुधाकर और रचना सुधाकर आनंद के पिता भवन कुमार सुधाकर के पति रिटायर्ड हेड टीचर माफ कीजिएगा मास्टर अनिल कुमार सुधाकर की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए 0215947551 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने. सूचित किया जाता है कि शनील सुधाकर, अश्नील सुधाकर और रचना सुधाकर आनंद के पिता भवन कुमार सुधाकर के पति रिटायर्ड हेड टीचर मास्टर अनिल कुमार सुधाकर की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए 0215947551 पर आप संपर्क कर सकते हैं.
7: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.

0: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। हाउ आर यू? 11:04 हो चुके हैं। 5 अगस्त का दिन है, आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। बाय द वे, आप अपना बर्थडे जो है शेयर करते हैं विद नन अदर दैन काजोल एज वेल एज जेनेलिया डिसूजा देशमुख, जो अपना बर्थडे दोनों आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगर आपका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं और ये अब मिड मॉर्निंग मज़ा का वक्त है, और मिड मॉर्निंग मज़ा में आपके साथ मुझे शेयर करनी है 6 वर्ड स्टोरी। आज मैंने बोला था लेट्स सी योर फनी साइड, साथ साथ कुछ रीयूज़ करने के लिए कुछ आइडिया है तो बताइए ज़रूर मुझे। लेकिन हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, हमें आप अपने साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। हम फार का जो दिन है और ऐसे में अपने वीकेंड का प्लान ज़रूर बनाया होगा। हमारे रोवा ऐप के ज़रिए आपको 60s 70s के ट्रैक सुनने हैं तो आप डेफिनेटली वो गोल्डन एरा के गाने हम रिवाइंड में सुन सकते हैं। 80s के ट्रैक्स हमारे ज्यूक बॉक्स के ज़रिए सुन सकते हैं। फीजी भजन एंड फीजी कीर्तन संग्रह जो है ये आप डेफिनेटली सुन सकते हैं। पंजाबी हित चढ़दी कला एंड राहत फतेह अली खान जी के सूफी और कव्वाली अमेजिंग म्यूजिक ट्रैक्स म्यूजिक स्टेशंस में आप सुन सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रैक की तरफ। फोर्स फिल्म, जिस फिल्म में आपने जेनेलिया डिसूजा को जॉन अब्राहम के साथ देखा था।
1: बचाओ क्या

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: दिस इज द फ्यूचर मैन.

0: एक बात तो है, ये कल से जो हवाएं इस तरह से चल रही हैं, कोल्ड स्नैप जो है एक स्नो और आइसी कंडीशंस लेकर आ गए साउथ आइलैंड में, जिसकी वजह से लाइकली सब कह रहे हैं इट विल बी प्रॉब्ली द कोल्डेस्ट डे अनयूजुअली। ये चिल टेम्परेचर जो है कल भी और आज भी 1 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। और फिर क्या होता है कि हमारी जो गाड़ियां होती हैं इनके विंडस्क्रीन जो हैं, ओ माय गुडनेस, ये तो पूछिए मत कि क्या हाल हो जाता है इनका। ये एकदम या तो दे फ्रीज ओवर बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, और बहुत इनकन्वीनियंट और पोटेंशली डेंजरस हो जाते हैं जो गाड़ी चलाने लगते हैं। आपकी विंडस्क्रीन पे आइस होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और इसको थॉ करने का मतलब है आप अपने ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, ड्रॉप ऑफ के लिए लेट हो रहे हैं। इसे निगलेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप इसके साथ साथ गाड़ी चला लें, क्योंकि एक लॉ है 2024 का, जहाँ क्राइस्टचर्च की एक वुमन थी उसको $150 ये फाइन भी हुआ था फॉर एन आईसी विंडस्क्रीन। सो क्विकली किस तरह से डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी को बिफोर योर मॉर्निंग कम्यूट, ये कह सकते हैं। तो बहुत ईजी है, इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। सबसे पहले तो अगर आप गाड़ी को अंदर लगा लेंगे, गाड़ी को अंदर पार्क करेंगे तो आपके गैरेज में, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो आइस जो आपके स्क्रीन पर आ जाती है, तो आप कैसे कर सकते हैं उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर आप स्क्रीन पर पानी जो है विंड स्क्रीन पर आप ऐड कर सकते हैं विद अ होज या बॉटल, और फिर स्क्रेपर का इस्तेमाल करें टू क्लियर द आइस। द बिगेस्ट टिप इज़ नॉट टू यूज़ हॉट वाटर, ये सडन टेम्परेचर आपके विंडस्क्रीन को क्रैक कर सकता है, डेफिनेटली कीप इट अवे। एक और चीज़ है, अपने जो वाइपर्स हैं इनको ऑफ रखिएगा इन केस दे हैव फ्रोजन इन द विंडस्क्रीन। सो ये रिप हो सकते हैं, ये क्रैक हो सकते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज अपने इंजन को स्टार्ट कीजिए और डायरेक्ट वार्म एयर जो ब्लोअर है अपने स्क्रीन की तरफ लगा दीजिएगा, और रेयर विंडो हीटर और मिरर हीटर्स जो भी आपके पास हैं उनको आपको ऑन करना पड़ेगा। और फिर विंडो को थोड़ा सा अगर आप खोल दें तो नथिंग लाइक इट। मेक श्योर दैट योर रीसर्क्यूलेट बटन जो होता है ना इज़ ऑन, सो दैट यू आर नॉट ड्रॉइंग इन कोल्ड एयर इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, रिमेंबर, है ना। अब आपके व्हीकल में एक एंटी फ्रीजिंग या डी आइसिंग स्प्रे डेफिनेटली नहीं हो, क्या पता नहीं हो। इन द मेन टाइम यू शुड जस्ट ब्रश ऑफ, स्वीप ऑफ द स्नो, या जो आपको लगता है आइसिकल्स जो बन रहे हैं आप वो स्वीप ऑफ कर सकते हैं। वंस दिस इज डन यू कैन हॉप इन टू द कार, बट डोंट ड्राइव ऑफ अनटिल द ग्लास इज क्लियर। अब आपने पानी तो उसमें ऐड कर दिया एंड सोचते हैं कि चलो लेट्स ड्राइव ऑफ, इट्स अ वेरी बैड आइडिया, क्योंकि वो फिर से रिफ्रीज हो सकता है। और ऐसे मीन टू प्लान अहेड डेफिनेटली। इफ़ यू हैव टाइम टू सिट एंड हैव अ कॉफ़ी, वाई कांट यू जस्ट सिट अपनी गाड़ी में बैठ के एंड वेट कीजिए जब तक कि स्क्रीन जो है डीप फ्रॉस्ट नहीं हो जाता। अब अपना कप कॉफ़ी हटा दीजिए एंड डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि गाड़ी चला लें। एक क्विक फिक्स जो होता है, कई बार लोग कहते हैं कि विनेगर पॉ करने से विंडस्क्रीन पर, या एक हाफ पोटैटो को अगर आप विंडस्क्रीन पर एक रात पहले अगर वाइप ऑफ कर दें तो प्रॉबेबली थिंग्स कैन हैपन, इट कुड, आई डो नॉट नो, आई कैन ट्राई दैट एज वेल। बट आप क्या करेंगे, हो सकता है आपके विनेगर से या कुछ करोसिव हो सकता है, वो क्रैक्स आ सकते हैं। सो इफ़ इट डजंट गेट वॉश्ड अवे तो डैमेज हो सकता है बाद में ग्लास। आलू का मुझे पता नहीं, क्योंकि आलू काफी एडजस्टिंग होता है।
1: ड्राइविंग योर होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहां पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो तू बना रहा था बेटा।
4: अच्छा तो
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bachche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hai.
1: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800 46 26 26 टुडे।
1: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस, टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
7: Time is running out to get ready for some extra money. If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. We sent you everything you need to know by post or email. Check your details and let us know any changes by Friday, 7th August. Do it today, because if we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in September, and no one wants that. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
8: Please use your imagination for the following ad.
9: If I won Powerball, I'd build my dream. Then I'd even things out with a massive donation to...
8: Imagine winning $6 million this Wednesday. Play in store or online.
10: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
11: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
12: IKEA.
13: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
0: This is actually funny, a six word story, जो मैंने कहा था कि चलो कुछ तो बताओ, तो आपने लिख के भेजा कि tell no one, she told everyone. Tell no one, she told everyone. तो मना किया होगा कि भाई मत बताओ, लेकिन खुद ने जाके सबको बता दिया. Alright, this is very nice. मैंने एक six word story अपनी तरफ से prep की थी और मेरी थी Monday, it's Friday minus the hope. तो अभी मैं ये कह सकती हूँ वेडनेसडे, इट्स फ्राइडे माइनस द होप. तो भाई दो दिन बचे हैं फ्राइडे के लिए, सो लेट्स जस्ट गेट गोइंग. लेकिन जब मैं कहती हूँ लेट्स गेट गोइंग, तो आपको बताना चाहती हूँ अबाउट करण औजला. अब ये इनकी बहुत बढ़िया सी कॉन्सर्ट जो है 25 अगस्त के दिन होने वाली है एट द स्पार्क अरीना. एंड इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड कि आप यहाँ पर जाना चाहते हैं इसे विटनेस करने के लिए, तो डेफिनेटली एक डबल पास जीतना चाहते हैं, हमारे फेसबुक के पेज पर आप आ जाएँ. करण औजला के पोस्ट पर आपको एक करण औजला के लिए मैसेज ऐड करना है, उन्हें टैग करना है और आपका नाम हम ड्रॉ में ऐड कर देंगे टू विन अ डबल पास. याद रहे अपने पे ये पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर को लेके 25 अगस्त को विद स्पेशल गेस्ट इकी के साथ आने वाले हैं फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ हिट सॉन्ग्स, इनक्रेडिबल यू नो इनकी एनर्जी और जो परफॉर्मेंस होती है ना, बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग होने वाली है.
13: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

कम्युनिटी में क्या हो रहा है जरूर हमें बताइए। 5599 पे आपने टेक्स्ट किया तो भाई buzz@mfm.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और आपके लिए इसी आने वाले शनिवार के दिन एट द माउंट अल्बर्ट वॉर मेमोरियल 4:30 to 8:30 होने वाला है मेग उत्सव बाय मिस्टिक। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट होगा जहाँ कल्चरल परफॉर्मेंसेस, खाने पीने के स्टॉल, किड्स कॉर्नर है वहाँ पर, गेम्स एंड एक्टिविटीज़ हैं और शॉपिंग का बहुत बढ़िया आनंद आप उठा सकते हैं। एंट्री बिल्कुल फ्री है। उसके साथ साथ न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपके रजिस्ट्रेशन को इन्वाइट करना चाहती है क्योंकि ये 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट 22nd-23rd August को बर्किनहेड स्काउट्स हॉल में करने वाले हैं। 0210908-5067 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए रामलीला और टाइमलेस स्टोरी जो है ये 8 अगस्त के दिन होने वाली है। पहले रामलीला की प्रेयर्स होंगी 5 बजे, फिर रामलीला की परफॉर्मेंस होगी 6 बजे से वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोई में। $10 की टिकट है पर पर्सन और बच्चे 5 साल से अंडर जो है बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं। तो आप टिकट्स के लिए मास्टर अशोक से संपर्क करें 0211-795-5459 के जरिए। और इसके साथ साथ अगर आप चिन्माया मिशन की एक क्लास जाना चाहते हैं अटेंड करने के लिए, भगवद गीता डिकोडेड एक मास्टर क्लास है जिसे ट्रेंड वेदांत टीचर ब्रदर ईशान चैतन्य करने वाले हैं और जिस की कमेंट्री जो है ये बेस्ड है ऑन पूज्य स्वामी चिन्मयानंद। तो ये 7th August की यानी कि दिन परसों शाम 7:30 to 9 न्यू लिन कम्युनिटी सेंटर में होगा एंड chinmaya.org.nz के जरिए आप रजिस्टर भी कर सकते हैं।

0: so sexy.
1: My time with Kashika.
2: Wow.
3: How?
2: Adbhut.
4: वैसे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए रवितेश देव जो हैं अपने लाइव बैंड के साथ करने वाले हैं. एंड दिस इज गोइंग टू हैपन ऑन द 22nd ऑफ अगस्त शाम 7 बजे एट द वैदिक सेंटर. $30 के टिकट्स हैं. अब ना आप कह रहे होंगे कि क्या क्या होने वाला है इसमें ट्रेडिशनल डिवोशन जो है एक कंटेम्प्रेरी अरेंजमेंट के साथ टैलेंटेड वोकलिस्ट और म्यूजिशियंस के साथ एक लाइव कॉन्सर्ट में कन्वर्ट कर दी जाने वाली है. और इसे क्यूरेट जो है किया है बाय नन अदर देन एनजेट कल्चर ट्रस्ट. और ये जो स्पेशल इवेंट है ये होने वाला है इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी. और इसे प्रेजेंट करें साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड. साथ में आपको बता दें बच्चे अंडर 5 साल इज फ्री. स्नैक्स और कावज वहां पे आपको मिल भी सकता है. $30 की ये टिकट है. और ये अपलिफ्टिंग डिवोशनल म्यूजिक फ्यूजन भजन कीर्तन का एक खूबसूरत माहौल होगा. eventbrite.co.nz के जरिए आप ये टिकट जाकर खरीद भी सकते हैं.
0: A secret destination.

0: ये स्प्लैटर हो गया। अब इसमें कड़ी पत्ता डालें, छोटा छोटा कटा हुआ प्याज, गरम मसाला, हरा धनिया तो है ही, वो टॉपिंग के लिए रखेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी और एक चुटकी भर अमचूर और लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी हरी मिर्च और नींबू का रस, ये लेना है। इसके बाद आपने टमाटर और नमक इसमें ऐड करना है। ये मसाला पकने दीजिए, क्रश की हुई रोटियां इसमें आप इसमें बाद में सब कुछ जब रेडी हो जाए तब ऐड कीजिए। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा। दिस इज़ रियली गोइंग टू बी इन्हेंसिंग द टेस्ट ऑफ द रोटी। और कई बार बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं मुझे ये सब्ज़ी नहीं खानी, वो सब्ज़ी नहीं खानी, तो इस तरह से चटपटी रोटी अगर आप बना के इसे खा लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। वैसे कुछ चटपटी बातें जो हुई हैं वो हुई हैं विद नन अदर दैन अभय कोले। ये प्रिंसिपल एडवाइज़र है फॉर एम्प्लॉयमेंट सिस्टम गाइडेंस एंड एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड। और इन्होंने कुछ बताया अबाउट की वी वर्क प्लेस वॉट हैपन्स अगर बिजनेस गलत होने लग जाता है। तो सैंडी और रुस्बे ने बातचीत की है उन कॉन्ट्रैक्ट्स, लीव्स, हाई प्रोफाइल बस्ट्स और साथ साथ राइट्स टू वर्क, फ्री सपोर्ट एंड सर्विस, कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड हेल्प कर सकती है, डिस्प्यूट्स एडवाइस वर्कर्स को कर सकती है और क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं और इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर राइट्स, आप माइग्रेंट हैं और आप नेविगेट कर रहे हैं न्यूजीलैंड का सिस्टम, या कोई बिजनेस ओनर है जो कोई कंप्लायंट के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक ये कॉन्वर्सेशन ज़रूर सुनिएगा 5599 पे। पूरा ऑडियो सुनने के लिए आप ड्राइव लिख के भेजें। एंड अभय कोहले के साथ ये डिस्कशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो भाई आपको बता देते हैं कि आई नो अभी तो आप इमेजिन ही कर रहे होंगे काजोल को ही, लेकिन एक बात बताऊं काजोल के बारे में. शी वाज द फर्स्ट एक्ट्रेस जिनकी एक मिनिएचर डॉल जो थी, ये हैरिट्स में लंदन में एक जो स्टोर है, वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट स्टोर्स इन द वर्ल्ड कहा जाता है, मोस्ट प्रेस्टिजियस, उसमें इनकी मिनिएचर डॉल जो है वो मिलती है. अलॉन्ग विद दैट शी वाज द फर्स्ट एक्टर जिन्होंने यू नो शाहरुख खान के साथ NASDAQ, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, और फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटराइज स्टॉक मार्केट जो है उसमें शी हैज़ प्लेड अ मेजर रोल, यानी कि शी वॉज एट द रिंगिंग द ओपनिंग बेल फॉर इट. सो दिस इज ऑल अबाउट हर. बट अभी इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है हम्पवार या बुधवार. मेरी मुलाकात आपके साथ होगी, दिन कहलाएगा गुरुवार, बृहस्पतिवार, वीरवार, जो भी से कहना चाहें. भाई आते रहिए, जाते रहिए, सुनते रहिए हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. एंड जितने लोगों ने आज इन्जॉय किया, थैंक यू वेरी मच आपने इन गानों को. एंड शर्मिला थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, I just loved it. And हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपको stars मिल जाते हैं तो फिर आपके गानों का एक music का एक you know selection अलग ही होने लग जाता है. So I hope you enjoyed today. Do look after yourselves. This is Kashika signing off from the Hum Studios. Take care. See you tomorrow.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे, ओनली ऑन हम।
6: Jen didn't think she needed a DVS system.
7: Oh, I've got insulation in that.
6: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
7: Ah, yeah.
6: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
11: Home loan ke saath thoda cash bhi paana chahte hain? Naya home loan lena ho ya maujooda loan ka review karwana ho? Squirrel aapko dilayega ek aisi zabardast deal ki aapki ho jayegi balle balle. Janiye power of the squirrel effect. squirrel.co.nz.
12: At Bunnings, we can make your paint projects easy. With a Hayden 3-piece 230mm roller kit, only $11.74. Or Sally's 1-litre sugar soap, just $5.90. Bunnings makes DIY easy. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
13: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
14: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लें।
13: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
14: पर डेवलपमेंट के पैसे
13: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
15: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
16: टाइम हो चुका है दिन के ठीक 12।
17: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
18: गुड आफ्टरनून, आई एम ग्लीन स्टुअर्ट विद द लेटेस्ट एट मिडडे। अ विटनेस हैज डिस्क्राइब